0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 मई 2026। सुबह के 5:53 और ठीक 38 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 6 बजे समय रहेगा हिंदी समाचारों का। 6:05 पर प्रोग्राम सुप्रभात लेकर हाजिर होंगे।

नूपुर। 7 बजे हिंदी समाचार प्रसारित होंगे। 7:05 पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के साथ निखिल कुमार हाजिर होंगे। 8 बजे नूपुर लेकर हाजिर होगी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। 9 बजे समय रहेगा प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने निखिल कुमार के साथ। 10 बजे का समय हिंदी समाचारों का।

सुबह 10:05 पर समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक का, जिसे लेकर आपके साथ होगी निहारिका। 11 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 11:05 पर समय रहेगा बॉलीवुड ट्रेल्स का कंचन के साथ। 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक लेकर आपके साथ रहेंगी निहारिका। 1 बजे समय रहेगा हिंदी समाचारों का।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से गणना सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग ने सुव्यवस्थित मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ये मतगणना असम की 126, केरलम की 140, तमिलनाडु की 234 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए होगी। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य में इस महीने की 21 तारीख को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए

अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल झारखंड के रांची में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से न्यायिक व्यवस्था में चुनौतियों, सुधारों और अधिवक्ताओं की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान श्री मेघवाल ने अधिवक्ताओं से न्याय प्रणाली को सुलभ और सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के समापन समारोह में भाग लेकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। होर्मुज की खाड़ी में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ और असंबद्ध देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रिमझिम रिमझिम ये बरसात हो रही है और आप और हम हैं आकाशवाणी रेनबो के इस सफ़र में और जुड़ चुके हैं इस सफ़र में एक दूसरे के साथ। और बारिश ये जो हो रही है, कई जगहों पर रात से बारिश हो रही है और अभी थोड़ी सी कई जगहों पर बूंदा बूंदी है। और आप जब निकलेंगे, सुबह की शुरुआत हो गई है, सफ़र पे हम सबको निकलना है, तो ज़रा ध्यान से सोच समझ कर निकलिए, पूरी तैयारी के साथ निकलिए। और फिर जब सफ़र पर निकलते हैं तो तैयारी तो पूरी है तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है। वैसे भी कहते हैं कि जब मौसम बदलता है तो मूड भी बदलता है, तो मौसम अच्छा हो गया है, बारिश हो रही है और धूप से गर्मी से थोड़ी सी राहत हम सबको ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर गाने हम आप और सुबह सुबह क्या आपको चाय पकौड़े याद आ जाते हैं जैसे ही, पता नहीं क्यों ये जो बरसात होती है, क्योंकि मूड अच्छा सा होने लग जाता है ना।

फिर हम सोचते हैं कि जो ठंडी ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही है, और उस बीच में आप अपने अपनों के साथ बैठकर क्यों ना आनंद लें चाय पकौड़ों का, और फिर हम खो जाते हैं, पहुंच जाते हैं पुरानी यादों में, वो बचपन की यादें, वो दोस्तों के साथ, और जब बारिश हो झमाझम और घर में पकौड़ों की तैयारी, मम्मी को बोल देना बस मम्मी ये बना दीजिए, और उसके बाद अब तो आप खुद ही बहुत अच्छे से सब कुछ बना लेते हैं और ऑफर कर देते हैं सबको। तो कुछ अगर मन कर रहा है तो ज़रा इनिशिएटिव आप खुद लें और ख़ुद से बनाएं, और घर में जितने मेंबर्स हैं सबको बहुत प्यार से खिलाएं, और जुड़े रहें हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में। आप सभी सुन रहे हैं सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ।

कोयल सी तेरी बोली। ये जो कोयल की बोली होती है वो कैसी होती है? बहुत ही मीठी होती है, मधुर होती है और अपनी ओर खींच लेती है, आकर्षक होती है, मनमोहक होती है और ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में जो है ज़्यादातर सुनाई देती है। तो कोयल की बोली की अगर हमने बात की है, लेकिन ये जो बोली है ना बहुत मायने रखती है। आप किस तरीके से बोलते हैं, कैसी बातें करते हैं, किस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं और आपकी ये जो बोली है ना वही आपको लोगों से जोड़ती भी है, उनके पास भी ले जाती है और दूर भी करती है। तो कोयल की ये जो बोली है ये तो बहुत ही मीठी है, लेकिन आपकी बोली कैसी है? आप जब लोगों से जुड़ते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि आपका स्वभाव कैसा भी हो, व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए, उसको आप हमेशा अच्छा ही रखिए। क्योंकि जिसके स्वभाव में प्रेम रचा बसा है वो जो भी सोचता है प्रेम में ही सोचता है, शांति से सोचता है। और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जो भी लोग आते हैं उनको भी वो प्रेम और शांति का एहसास होता है ना? और सभी के साथ हमें विनम्रता से और करुणापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो आज हम इसलिए यही बात कर रहे हैं कि स्वभाव आपका कैसा भी हो, व्यवहार अच्छा है तो लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। और जब हम कहते हैं ना कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसलिए कि हम अच्छे हैं, तभी उन्होंने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया है। बात करते रहेंगे आपके साथ, आप जुड़े रहे हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफर में। मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ और आप सुन रहे हैं सुप्रभात। सुबह का ये वक्त आप और हम, और साथ ही कृतज्ञता से हम सब भरे हुए हैं। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद हर एक दिन के लिए। और हर एक दिन आप उठते हैं और उस दिन को अपने लिए खास बनाते हैं। तो आज क्या है जो आपने तय किया था अपने लिए? सारी बातें हैं ना आपके जहन में, तो बस सब कुछ कर लीजिएगा खुशी खुशी। और किसी भी तरह के प्रेशर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम प्रेशर में होते हैं ना तो हम वैसा कर ही नहीं पाते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो थोड़ा सा उठिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और बस अपने साथ जो लोग हैं उनका थोड़ा सा सपोर्ट करें, उनका थोड़ी सी उनकी मदद करें उनके काम में, घर के काम में। और उसके बाद बस देखिए, जब आप किसी को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो कैसे सब कुछ आपके पास लौट कर आता है। जो हम देते हैं ना वही हमारे पास लौट कर आता है। तो इसलिए किस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, आपकी बोली कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, क्या आप सबसे साझा करते हैं, सब कुछ बड़ा सोच समझ कर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी सफ़र में।

आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में आप सुन रहे हैं सुप्रभात। और कितनी अजीब बात है ना कि हम सब वो व्यवहार भूल जाते हैं जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, लेकिन हमें हमेशा वो याद रहता है जैसा लोग हमारे साथ करते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं कि जैसा हमने दिया है वैसे ही हमको लौट कर मिल रहा है। तो जो हमारा व्यक्तित्व है हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। सोच हमारा मन है और व्यवहार हमारा कर्म। हमारे स्वभाव से हमारी पहचान बनती है। अब हमारा स्वभाव जैसा होता है हमारा मन भी वैसा होता है और हम व्यवहार भी वैसा ही करते हैं। अब कहते हैं कि जो हम बचपन से जिस तरह का हमारा स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता। अगर बदल सकता होता तो जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं ये सब ना होती, है ना। सोच बदल जाए, हम एक दूसरे को समझ जाए तो ये सब कुछ बहुत आसान हो जाता है ना। तो स्वभाव बदलना कई बार मुश्किल है, लेकिन हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ज़रूर ला सकते हैं। हम उसमें बदलाव ला सकते हैं, उसको सकारात्मक बना सकते हैं। और जैसे ही ये सकारात्मक बनता है तभी हमारा व्यक्तित्व निखर उठता है। इसलिए स्वभाव चाहे कैसा भी हो व्यवहार हमेशा सही रखें, क्योंकि जैसे हम हैं जिस तरह का हमारा आचरण है उसी को देखकर लोग हमसे जुड़ते हैं। अब हम अपने व्यवहार से किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं, है ना। जितना हम लोगों से अच्छे से बात करते हैं उन पर प्यार लुटाएंगे वही लौट कर आपको मिलेगा। और जब आपका व्यवहार अच्छा होता है ना तो कैसे हम ख्याल रख सकते हैं इस बात का कि आप जो भी बोलें थोड़ा सा सोच समझ कर बोलें, है ना। क्या बोलने जा रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा सोच लें। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं ना वो भी ख़त्म हो जाएंगी। सबसे आपके अच्छे से रिश्ते बने रहेंगे, है ना। क्योंकि हम लोगों के एक्सप्रेशन देखते हैं ना, जब हमारे साथ कोई बात करता है तो हम देखते हैं उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, और वो हमें उसी से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि कौन किस तरह का इंसान है। तो ऐसा नहीं है कि हम सब एक दूसरे को यहाँ पे जज कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए कुछ चीज़ों को आसान बना सकते हैं। हो सकता है कि हमारा स्वभाव बहुत ही कठोर हो, सब अलग अलग तरह के इंसान होते हैं और कई बार हम नहीं समझते कि अंदर से कौन कैसा है। लेकिन जब हम किसी से जुड़ें, हमारा मूड उस समय किसी भी तरह का क्यों ना हो, लेकिन जब आप किसी से जुड़ें तो अच्छे से बात करें, तरीके से बात करें, सलीके से बात करें, नम्रता रखें। और वो कहते हैं ना कि जब भी हम बड़ों से बात करते हैं तो हमारा व्यवहार विनम्र होना चाहिए, दोस्तों के साथ मजाकिया होना चाहिए, और बच्चों के साथ जब हम होते हैं तो हमें कुछ देर के लिए बच्चा बन जाना चाहिए, है ना। और हम सब भूल जाते हैं ये सब करना तो इसलिए थोड़ा सा ये सब करें और फिर देखिए सबका

आपके लिए भी कैसे बदलता है, जब आपका थोड़ा सा लहजा बदलता है, भाषा बदलती है, तो सब कुछ बदलने लग जाता है। तो इसलिए जैसे हम लोगों से जुड़ते हैं उनके हिसाब से हमें अपना व्यवहार रखना चाहिए। कोशिश कीजिए कि कटु शब्दों से आप बचें और हमेशा हमेशा अच्छा बोलें, साफ बोलें, सुंदर बोलें। ये जो शब्द है ना, ये बहुत अहम रोल निभाते हैं। और फिर आपका अगर व्यवहार है, आप जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं, तो और भी वो आपके लिए चीज़ों को आसान बना सकता है। क्यों ज़रूरी है कि हम बस अपनी ही जो एक है धुन में रहें? कि धुन में रहना अच्छी बात है, यहाँ पर इसको समझिए इस तरह से कि आपको लगता है कि उसने मुझसे ऐसे कैसे बात कर दी, मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा। ठीक है, अगर उस किसी ने कुछ कहा भी तो आप विनम्र हो जाइए। आपको अपना व्यवहार सही रखना है और बहुत अच्छा लगता है जब आप सबसे अच्छे से बात करते हैं ना, तो आपको अच्छा लगता है। तो स्वभाव कैसा भी हो आपका, थोड़े से कठोर ही क्यों ना हो आप, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो सब कुछ सुंदर है। और फिर जैसे आप होते हैं तभी तो बस आपको लगता है। कहते हैं ना कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपको इसलिए अच्छा लगा उनसे मिलकर क्योंकि आपने उनको जो दिया वही आपके पास लौट कर आया, इसलिए सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगा। ये एनर्जीज, ये वाइब्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। और यहाँ पर आप हमसे जुड़े हुए हैं इसी सफ़र में जिसका नाम है सुप्रभात। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कैसा भी हो, व्यवहार हमेशा सही और मर्यादित रखें। व्यवहार ही वो आईना है जिसमें लोग आपका व्यक्तित्व देखते हैं, क्योंकि स्वभाव हम आपके बचपन से जन्म के साथ ही जैसा है वैसा हो सकता है, लेकिन व्यवहार जो है वो एक आपका बहुत ही सोचा समझा या हम कहते हैं कॉन्शियस सचेत चुनाव है जो रिश्तों को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। तो हम अपना अगर व्यवहार सही करते हैं तो हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। मधुरता है अगर हमारी वाणी में, बातचीत में अगर विनम्रता रखते हैं तो हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। सकारात्मकता अगर हमारे अंदर है तो वो नज़रिया अगर होता है ना तो वो आप लोग आपके पास आते हैं, और जहाँ आप एक बार दो बार तीन बार नकारात्मक बातें कर सकते हैं लेकिन जब वो आपके व्यवहार में ज़्यादा हो जाता है ना तो लोग आपसे दूर होने लग जाते हैं। और एक बहुत ही ख़ास बात कि जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना होना, वैसा व्यवहार कभी दूसरों के साथ ना करें। और सबसे एक और ख़ास बात कि अपने गुस्से पर, अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखें। सही व्यवहार ही असली व्यक्तित्व की पहचान है, इसलिए ये ना कहें कि मेरा तो नेचर ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है। नहीं, आप किससे से व्यवहार करते हैं ये मायने रखता है, और व्यवहार के ज़रिए आप सबसे जुड़े रह सकते हैं और सबके दिलों में अपने लिए जगह बनाए रख सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में सुप्रभात सुन रहे हैं आप।

आकाशवाणी रेनबो के सफर में आप सुन रहे हैं सुप्रभात, और आज हम बात कर रहे हैं कि स्वभाव आपका कैसा भी क्यों ना हो, व्यवहार हमेशा सही रखें, वो सही होना चाहिए। ये बहुत ही एक गहरा और व्यवहारिक जीवन मंत्र है कि स्वभाव चाहे जैसे

बिल्कुल, जब कदम बढ़ाए हैं तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, और साथ साथ चलते चलते ये सफ़र जो है वो बहुत ही खूबसूरती से कट जाएगा। और इस सफ़र में भी बहुत कुछ है आपके लिए ख़ास। सुप्रभात में बस इतना ही, लेकिन आकाशवाणी रेनबो पर क्या क्या है, कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आप सुनेंगे कुछ ही देर में, मैं बिल्कुल आपको बता देती हूँ। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, जिसमें आपके साथ होंगे निखिल कुमार, और उसके बाद गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के दूसरे सेगमेंट में एक बार फिर आपसे जुड़ूंगी मैं, आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ। और उसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने, इसमें भी आपके साथ होंगे निखिल कुमार। उसके बाद समय रहेगा हमारे अगले कार्यक्रम का, जो कि है मैचलेस म्यूजिक आवर, इसमें आपके साथ होंगे निहारिका। और उसके बाद 11:05 से लेकर आप 12 बजे तक सुनेंगे बॉलीवुड की खबरों पर आधारित हमारा कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स, कंचन कानन होंगे आपके साथ, और प्लेट कूल उसके बाद सुनेंगे आप प्रोग्राम, निहारिका आपका साथ देंगे इस कार्यक्रम में। रेनबो हेल्पलाइन आप सुनेंगे 1:05 से लेकर 2 बजे तक, कंचन कानन होंगे आपके साथ इस प्रोग्राम में। और आज का विषय रहेगा केंद्रीय विद्यालय एडमिशन प्रोसेस रूल्स कोटा एंड प्रायोरिटी कैटेगरीज। उसके बाद आप सुनेंगे 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आशियाना, और इसमें आपके साथ होंगी ज्योतिका सिंह। और उसके बाद समय है रेडियो डॉक्टर का, इसमें आपके साथ होंगी मीना जैन, और आज का विषय है हीमोफीलिया डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। उसके बाद आप सुनेंगे अल्फा जैन प्रोग्राम ज्योतिका सिंह के साथ, और मीना जैन सुनेंगे आपके साथ सिटी लाइट्स में सिटी की खबरों के साथ। और उसके बाद मुक्ति सैनी आपके साथ होंगी प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में, और उसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक में आपके साथ होंगी शालिका कपूर। और उसके बाद म्यूजिक मस्ती में एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मुक्ति सैनी, और गीतांजलि शर्मा आपके साथ होंगी प्रोग्राम आपकी याद आती रही में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। और उसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक में एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगी शालिका कपूर और मिष्टी गुप्ता, और उसके बाद आप सुनेंगे रंगे महफिल गीतांजलि शर्मा के साथ। कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप जुड़े रहे हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में जिसका नाम है आकाशवाणी रेनबो। में मैं हूं आपके साथ नूपुर, और सुप्रभात में बस इतना ही, अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 85% से अधिक मतदान हुआ।
1: तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में फैले 234 निर्वाचन क्षेत्रों में ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण मतदान हुआ, क्योंकि बिना किसी गड़बड़ी के 85.10% मतदान दर्ज किया गया था। भूटान, मिस्र, मॉरिशस, मोल्डोवा, इंडोनेशिया, बेनिन, श्रीलंका, पेरू, घाना और नामीबिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के 20 प्रतिनिधियों और राजनयिक अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। आज सुबह 8:30 बजे के बाद 4,87,98,833 मतदाताओं के फैसले और 4,023 उम्मीदवारों के भाग्य का पता चलना शुरू हो जाएगा। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फालता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
2: जनादेश 2026।
0: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
0: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
0: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
0: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
0: नागालैंड में मोकोकचुंग जिले के कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी आज मतगणना होगी। मतगणना उपायुक्त कार्यालय में 3 चरणों में की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन तक चलने वाली उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग रहा है। इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई थी। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हो रहे हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्स आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक के साथ शुरुआत हो चुकी है इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे निखिल। जब हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको हम ये जानकारी देते हैं कि इतिहास के पन्नों में क्या क्या आज के दिन दर्ज है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि आज के दिन ही यानी कि 4 मई 1780 को अमेरिकी कला और विज्ञान अकादमी की स्थापना की गई थी। वर्ष 1846 में आज का दिन था जब अमेरिकी प्रांत मिशिगन में मृत्युदंड को आधिकारिक रूप से खत्म किया गया था। वर्ष 1854 में भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। और आपको बता दें कि वर्ष 1896 में लंदन डेली मेल का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। वर्ष 1924 में आज का दिन था जब पेरिस में

आठवें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी और वर्ष 1945 में आज के दिन ही जर्मनी की सेना ने नीदरलैंड्स, डेनमार्क और नॉर्वे में सरेंडर किया था और वर्ष 1959 में आज के दिन ही पहला ग्रैमी अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 1980 में कोल माइंस डे की घोषणा की गई थी और वर्ष 1989 में आज के दिन ही अमेरिकी अंतरिक्षयान FTS-30 का प्रक्षेपण किया गया था और वर्ष 2007 में आज के दिन ही बैंकॉक में ग्लोबल वार्मिंग पर एक बैठक को संपन्न किया गया था। तो ये थी ऐसी प्रमुख घटनाएं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी खास पहचान दर्ज की हुई है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपके दोस्त आर्ष निखिल के साथ में। एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल से ट्रैक को।

बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आप सुन रहे थे आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर। अब समय है कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम याद कर रहे हैं राम देनी सिंह को, जो बिहार से आने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। सारण के दिघवारा प्रखंड का मल खाचक गाँव, जहाँ पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बिहार में इंकलाब, जिंदाबाद, वंदे मातरम और भारत माता की जय का जय घोष कर फांसी के फंदे को चूम कर झूल जाने वाले कोई नहीं सारण का शेर ठाकुर रामदेनी सिंह थे। और ऐसा कहा जाता है कि वे बिहार के पहले स्वाधीनता सेनानी थे जिन्हें फांसी की सजा हुई थी। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं पंडित किशन महाराज को, जो कि जाने माने तबला वादक रहे हैं और बनारस घराने से संबंधित थे। आपको बता दें कि उन्हें कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए 1973 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज उनकी भी जयंती है। किशन महाराज तबले के उस्ताद होने के साथ साथ मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के कवि और ज्योतिष के मर्मज्ञ भी थे। और उन्होंने अपने इस तबला वादन के करियर की शुरुआत की, आपको बता दें बहुत ही कम उम्र से ही उन्होंने सीखना शुरू कर दिया था। और अपनी इस यात्रा को शुरू करने के कुछ साल के अंदर ही उस्ताद फयाज खां, पंडित ओंकार ठाकुर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, पंडित भीमसेन जोशी, वसंत राय, पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान जैसे बड़े नामों के साथ में संगत की थी। और कई सारी महफिलों में उन्होंने एकल तबला वादन भी किया था। फिलहाल एक और ट्रैक आपके लिए प्ले करते हैं, इसे आप सुनिए रेनबो पर।

और श्रोता आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं त्यागराज को, जिनकी आज जयंती है। वे भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता तथा भक्ति मार्ग के कवि थे। उन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की और सर्वश्रेष्ठ जो उनके गीत थे वो अक्सर धार्मिक आयोजनों में आज भी गाए जाते हैं। त्यागराज ने समाज और साहित्य के साथ साथ कला को भी समृद्ध किया और उनकी विद्वता उनकी हर कृति में झलकती है। हालांकि पंचरत्न कृति को उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि त्यागराज के जीवन का कोई भी पल श्री राम से जुदा नहीं था। वे अपनी कृतियों में भगवान राम को मित्र, मालिक, पिता और सहायक बताते हैं। उनकी मुख्य रचनाओं की बात करें तो निधि चल सुखम, प्रहलाद भक्ति विजय, नौका चरितम, पंचरत्न, दिव्य नाम कीर्तनम जैसी रचनाएं हैं जो आज भी खूब पसंद की जाती हैं। फिलहाल ये ट्रैक आपके लिए, इसे एंजॉय कीजिए।

अभी आपने सुना एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर। और श्रोताओं को बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं दलीप कौर तिवाना को, जिनकी आज जयंती है। वे पद्मश्री, साहित्य अकादमी और सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित जानी मानी पंजाब की प्रतिष्ठित और बहुचर्चित अग्रज लेखिका रही हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने अपनी मातृबोली यानी पंजाबी भाषा में 2 दर्जन से अधिक उपन्यास, अनेक कहानी संग्रह, कई आलोचनात्मक पुस्तकें, एक आत्मकथा जिसका नाम था नंगे पैरों का सफर और एक साहित्यिक स्वजीवनी पूछते हो तो सुनो रची हैं। इनकी रचनाएं कई भाषाओं में अनुवादित भी हुई और लोकप्रिय हुई। और आपको बता दें कि उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था और कथा कहो उर्वशी के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था। और उन्होंने कई सारी रचनाएं ऐसी की जो एक आम लोगों का जो जीवन होता है उससे रिलेटेड उनका लेखन रहा है और यही वजह थी कि उन्हें काफ़ी पसंद किया गया। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया और लगातार पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला से भी वो जुड़ी रही थी। उन्होंने ग्रामीण जीवन, स्त्री अनुभव, सामाजिक असमानता और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को बहुत ही गहराई से अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया था। एक और बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, इसे आप एंजॉय कीजिए। FM रेनबो 102.6 पर।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: हर्षद, आपको बता दें कुछ ही देर बाद शिवेंद्र आपके साथ में होंगे लेकर के तमाम खेल खबरों को, और मैं आपसे लूंगा कुछ देर के लिए अनुमति। आप बने रहें रेनबो पर।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टैम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स
4: नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों, शिवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। एक नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। खेलों की दुनिया, जैसा हम लगातार आपसे कहते आए हैं स्पोर्ट्स पल्स में, स्पोर्ट्स पल्स खेल दुनिया की हर धड़कन को करीब से महसूस करने की, शिद्दत से महसूस करने की, आपके साथ शेयर करने की हमारी कोशिश का नाम है। और खेलों की दुनिया हमेशा की तरह जीवंत बनी हुई है, रोमांच से भरपूर, एक से बढ़कर एक मुकाबले हो रहे हैं। और IPL की जरूर हम बात करेंगे। इस जो टूर्नामेंट चल रहा है, एक महीने से ज्यादा पुराना हो चुका है और प्लेऑफ की दौड़ इस टूर्नामेंट में शुरू हो चुकी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट बन चुका है। जो ग्लोबल क्रिकेटिंग कैलेंडर है उसमें कमर्शियल वायबिलिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है, रोमांच बहुत ही ज़बरदस्त है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमें देखने को मिल रही है और नित नए आयाम प्रतिमान कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग में, यानी IPL में, क्रिकेट के टूर्नामेंट में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है जो कि विश्व कप में खेलने के लिए जाएगी और वहां पर इंग्लैंड और वेल्स में ये टूर्नामेंट होने वाला है। 12 जून से शुरुआत हो रही है, 14 जून को भारत पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। इंग्लैंड और वेल्स में ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, दरअसल वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सामने एक सुनहरा अवसर है एक और विश्व कप अपनी झोली में करने का। हम सभी जानते हैं, लगातार इस प्रोग्राम में हम जिक्र करते रहते हैं, DY पाटिल स्टेडियम में नवंबर 2025 में उस दिन का जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम को हरा करके पहली बार जो वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था, यानी 50-50 ओवर के संस्करण का खिताब जीता था। और हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई थी और वहां पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। उसी साउथ अफ्रीका की टीम जिसको कि भारत ने पराजित किया था 50-50 ओवर के संस्करण के फाइनल मुकाबले में, उस साउथ अफ्रीकन टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को, भारतीय महिला क्रिकेट टीम को करारी शिकस्त दी और 5 T20 मुकाबलों की श्रृंखला में भारत को 1-4 के स्कोर से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब वो श्रृंखला पीछे छूट चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का, जो कि खेलती हुई नजर आएगी इंग्लैंड और वेल्स में विश्व कप में। और इस विश्व कप से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम 3 T20 मुकाबलों की श्रृंखला

0: मिनी सीरीज भी खेलेगी इंग्लैंड में ही, जिसका पहला मैच 28 मई को चेम्सफोर्ड में खेला जाएगा इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के साथ, दूसरा मैच शनिवार 30 मई को खेला जाएगा ब्रिस्टल में होगा ये मैच, और तीसरा मैच टॉन्टन में 2 जून को खेला जाएगा, और उसके बाद 12 जून को भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो ऐलान हुआ है, हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान है, स्मृति मंधाना वाइस कैप्टन होंगी, शेफाली वर्मा, जेमेमा रोड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष विकेटकीपर बल्लेबाज, भारती फुलमाली, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा को पहली बार टीम में जगह मिली है, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रेयांका पाटिल और राधा यादव। 14 जून को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से एजबेस्टन में, 17 जून को भारत नीदरलैंड से खेलता हुआ नजर आएगा, 21 जून को भारत दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा ओल्ड ट्रफर्ड में, 17 जून को नीदरलैंड से हेडिंगले में मुकाबला होगा, 25 जून को भारत बांग्लादेश से खेलेगा ओल्ड ट्रफर्ड में, और 28 जून को भारत ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा लॉर्ड्स में, ये मैच खेला जाएगा। ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नीदरलैंड है, और ग्रुप बी में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की टीमें हैं, यानी कुल मिलाकर के 12 टीमें हैं, 6-6 टीमों के 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप की टॉप पर रहने वाली 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, और कुल मिलाकर के एक बेहतरीन टूर्नामेंट यह साबित होने वाला है। पहले 3 T20 मुकाबलों की श्रृंखला इंग्लैंड के साथ मिनी सीरीज होगी, जो भारतीय टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड में जाएगी, उसके बाद वर्ल्ड कप खेलेगी टीम, और उसके बाद एक टेस्ट मैच भी होगा, 1-odd टेस्ट मैच, जो कि लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो अगला अंतर्राष्ट्रीय एंगेजमेंट है वो बड़ा लंबा होने वाला है, मिड मे से लेकर के जुलाई के पहले दूसरे सप्ताह तक भारतीय टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड में ही रहेगी। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में जो हुई वहां पर ऑफकोर्स भारत को हार से 2-4 होना पड़ा, कुछ कमजोरियां थी उनको टीम ओवरकम करने की कोशिश करेगी, और तैयारी चल रही है कि इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप में धमाकेदार परफॉर्मेंस भारतीय टीम देने में कामयाब हो। हरमनप्रीत कौर, जो हाल ही में श्रृंखला हुई थी साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में और भारतीय टीम की जो आगामी प्राथमिकताएं हैं उसके बारे में बताते हुए क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं।
1: T20 फॉर्मेट में इट्स अ हार्ड जॉब फॉर बॉलर्स, थोड़े विकेट भी बैटर फ्रेंडली रहते हैं, बट स्टिल दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट। दिस वाज द ओनली सीरीज वेयर यू नो हमारा बॉलिंग ज्यादा नहीं क्लिक कर पाया, बट लास्ट T20 के बाद वी हैव ऑन ऑलमोस्ट एवरी T20 सीरीज, दिस वाज द ओनली सीरीज वेयर वी डिडंट डू वेल। बहुत सारी लर्निंग्स थी, हमें एरियाज पता चले यहाँ पर हम लोग एज ए टीम वी कैन इम्प्रूव। टर वीक वी आर गोइंग टू हैव अनदर कैंप वेयर वी ट्राई टू कवर जहाँ जहाँ जो जो एरियाज हमें लग रहे हैं कि हमें और थोड़ा सा यू नो हार्ड जाना पड़ेगा, तो वी विल ट्राई टू यू नो फिक्स ऑल आर थिंग्स जो हमें लग रहा है एज ए टीम वी हैव टू डू, एंड होपफुली वर्ल्ड कप से पहले वी आर गेटिंग अ वेरी गुड सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, वहां पर हम लोग ट्राई करेंगे कि अपना विल गेट दैट रिदम बैक, कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द वर्ल्ड कप, एंड होपफुली वर्ल्ड कप एंटर करने से पहले हम लोग जितने भी हमारे एरियाज है यहाँ पे हमें लग रहा है कि एज ए टीम वी हैव टू इम्प्रूव, विल ट्राई टू कवर ऑल दोस एरियाज।
0: जी हाँ, तो हरमनप्रीत कौर जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं, जो मिनी सीरीज होगी उसमें, जो महिला T20 विश्व कप होगा इंग्लैंड और वेल्स में उसमें, और उसके बाद जो टेस्ट मैच खेला जाएगा वहां पर भी इंग्लैंड के साथ, उस मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर को ही सौंपा गया है, और उम्मीद करें कि जैसा हरमन इशारा कर रही थी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अगर उनकी आर्मरी में कुछ चिंक्स नजर आए हैं, कुछ कमियां नजर आई हैं, तो उनको ओवरकम करने में टीम कामयाब होगी। चलते हैं बैडमिंटन की दुनिया में, भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप में सेमीफाइनल में उसको हार से 2-4 होना पड़ा, और डेनमार्क में टूर्नामेंट खेला जा रहा था वहां पर बैडमिंटन टीम ने बहुत ही बेहतरीन दमदार यादगार प्रदर्शन किया, लेकिन फ्रांस से भारत को सेमीफाइनल में हार से 2-4 होना पड़ा। पहले जो 3 सिंगल्स मुकाबले थे उसमें भारत का कोई भी खिलाड़ी जीत नहीं सका, क्योंकि दरअसल शुरुआत खराब उस लिहाज से हो गई थी सेमीफाइनल से पहले कि लक्ष्य सेन इंजर्ड होकर के मुकाबले से बाहर हो गए थे, और इसलिए आयुष शेट्टी को पहला मैच खेलना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लक्ष्य सेन कोहनी की चोट के कारण मुकाबले से बाहर हो गए थे सेमीफाइनल से, और फ्रांस ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी रखा। ग्रुप स्टेज में उन्होंने 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराया था, भारत को 3-0 से फ्रांस ने पराजित किया। आयुष शेट्टी अपना मैच हारे, किदांबी श्रीकांत अपना मैच हारे, HS प्रणय भी अपना मुकाबला हार गए, और फाइनल मुकाबला जो थॉमस कप का खेला गया चीन और फ्रांस के बीच खेला गया। वहां पर चीन ने 3-1 से जीत दर्ज की। चीन ने 12वीं बार थॉमस कप का खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की है। 14 बार का चैंपियन है इंडोनेशिया और 12 बार ये टूर्नामेंट अब चीन ने जीता है। महिला वर्ग में ऊबर कप खेला जा रहा था, जहां भारतीय टीम ज्यादा आगे नहीं जा पाई थी। ऊबर कप

0: में कोरिया ने चीन को हरा करके खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की। 1948 में शुरू हुआ था ये टूर्नामेंट थॉमस कप, और 1982 से, तब 3 साल में एक बार होता था, 1982 से, माफ कीजिएगा, 1982 से पहले हर 3 साल पे ये टूर्नामेंट होता था, और अब 2 साल पे, यानी बायनुअल टूर्नामेंट है, और 2026 में ये टूर्नामेंट हुआ है। इसके बाद 2028 में अगली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। भारत सेमीफाइनल में हारा है, टूर्नामेंट के इतिहास में भारत का ये दूसरा पदक है। 2022 में भारत ने थॉमस कप का खिताब जीता था। 1984 के बाद साथियों पहली बार ऐसा हुआ जबकि डेनमार्क के अलावा कोई यूरोपीय टीम इस टूर्नामेंट के, यानी थॉमस कप के सेमीफाइनल में पहुंची। 1984 में इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी और चौथे स्थान पर रही थी। थॉमस कप की एक और खासियत यह है कि यहां पर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा जाता है, कांस्य पदक मिलता है, तो भारतीय टीम को कांस्य पदक हासिल हुआ है। चीन ने 14 बार खिताब जीता है, इंडोनेशिया ने 11 बार खिताब जीता है, और उसके अलावा मलेशिया ने 5 बार टूर्नामेंट का खिताब जीता है। 1 बार जापान ने 2014 में, 2016 में डेनमार्क ने, 2022 में भारत ने खिताब जीता है। तो कुल मिलाकर के चीन और इंडोनेशिया और मलेशिया का ही दबदबा रहा है। बैडमिंटन की बात के बाद अब चलते हैं टेनिस कोर्ट पर। इटली के यानिक सिनर ने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर ज़ेरेव को पराजित किया 6-1, 6-2 से। 57 मिनट तक चला ये मुकाबला। लगातार 5वां मास्टर्स 1000 टाइटल है, लगातार 9वीं जीत है अलेक्जेंडर ज़ेरेव के खिलाफ। 9 ATP मास्टर्स फाइनल में पहुंचने वाले यानिक सिनर चौथे और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच ने यह कारनामा करके दिखाया था। आज से रोम ओपन की शुरुआत हो रही है, और हम सभी जानते हैं कि 24 मई से फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट खेला जाने वाला है पेरिस में रोला गैरों की लाल बजरी पर, और वहां पर भी यानिक सिनर मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनके जो तगड़े प्रतिद्वंदी हैं कार्लोस अल्काराज़, उन्होंने चोट के कारण टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। फिलहाल मैड्रिड ओपन जीतने के बाद यानिक सिनर क्या कह रहे थे, अपनी जीत को कैसे उन्होंने शब्द दिए, आइए सुनते हैं।
1: I think he was a bit tired today. He didn't play his best tennis. Obviously, I tried to stay very calm in important moments. Breaking very, very early first set, very early second set helps a lot against someone like Sasha. And obviously, very, very happy. An amazing tournament again for me, and obviously also for my team again. You know, I'm very happy because we have a lot of discipline, a lot of sacrifices and daily routines, which makes the way that I am capable to do stuff like this.
0: जी हाँ, तो यानिक सिनर कह रहे थे कि ये बहुत ही खुशनुमा उनके लिए टूर्नामेंट रहा, उम्मीद करेंगे कि आगे के जो टूर्नामेंट हैं वो भी उनके लिए बेहतरीन साबित हो, और सबसे इम्पोर्टेंट वो अपनी फिटनेस बनाए रखें। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्दी से वापस आएंगे।
2: इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
0: एक बार फिर से आपका स्वागत स्पोर्ट्स पल्स पे। बात कर लेते हैं आईपीएल की, जिसका जिक्र हमने प्रोग्राम की शुरुआत में किया था। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कल मुकाबला खेला गया, जहां पर केकेआर ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बनाए 165 रन और केकेआर ने 169 रन बना लिए 3 विकेट के नुकसान पर। लगातार तीसरी जीत दर्ज की कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और केकेआर के कप्तान हैं अजिंक्य रहाणे, बहुत ही धीर गंभीर और बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। जीत के बाद क्या कह रहे थे अजिंक्य रहाणे?
3: Very good game. They were 9 over 100 odd, and then looked like they will get around 190-200. It was a good wicket to bat on. I thought the 190-200 would have been really challenging to chase. Credit goes to our bowling unit, especially the spinners, how they bowled middle overs. They kept on taking wickets. So this format is all about that. Those small movements is really important. Really happy with the win.
0: या जीत किसको खुशी नहीं देती, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, उसे ही शब्द देते हुए अजिंक्य रहाणे। और आईपीएल में कल जो दूसरा मुकाबला खेला गया गुजरात टाइटंस और पंजाब सुपर किंग्स की टीमों के बीच, और ये मुकाबला अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जहां पर पंजाब ने बनाए 163 रन 9 विकेट के नुकसान पर। गुजरात टाइटंस ने 167 रन बना लिए 6 विकेट के नुकसान पर और 4 विकेट से जीत दर्ज की। हालांकि लास्ट ओवर में जाकर के इस मुकाबले का फैसला हुआ, इस जीत का फैसला हुआ, और जाहिर सी बात है शुभमन गिल टीम के कप्तान गुजरात टाइटंस के इस जीत से बहुत प्रसन्न नजर आए।
4: I think in changes like these, we would have liked to not take it as deep as it went, but 2 crucial points. This is not the kind of wicket where we'll run through the opposition or we'll chase in 15 or 16 overs. So we thought, you know, maybe one over before or a couple overs before, there was a talk if someone is set, they should go deep. It was important for the batsman who is set. Luckily, we had Washi, you know, he finished the game for us.
0: जी हाँ, वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत ही शानदार खेल का

0: प्रदर्शन किया और उन्होंने आखिरी ओवर में अपने नर्व्स पर कंट्रोल बनाए रखा और टीम को जीत दिलाने में मदद की और गुजरात टाइटंस ने कल का मुकाबला जीता। तो केकेआर ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की और गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट से पंजाब की टीम को हराया। इंटरेस्टिंगली पंजाब की टीम अभी भी पॉइंट टैली में टॉप पर बनी हुई है हार के बावजूद। इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात कर लेते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना हुआ ओल्ड ट्रफर्ड पर लिवरपूल की टीम से। लिवरपूल की टीम इस समय मुश्किलों में नजर आ रही है, हालांकि थोड़ी वापसी की कोशिश हो रही थी लेकिन कई खिलाड़ी इंजर्ड थे और कल टीम को 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यूनाइटेड की जीत के साथ ही ये कंफर्म हो गया है कि अगले सीजन में वो चैंपियंस लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक बहुत बड़ी ये सफलता कही जा सकती है। बर्नमथ ने क्रिस्टल पैलेस को 3-0 से पराजित किया। लीड्स ने बर्नली को 3-1 से हराया। ब्रेंटफोर्ड ने वेस्टहैम को 3-0 से पराजित किया। न्यूकासल ने ब्राइटन को 3-1 से हराया। वोल्वरहैम्पटन वांडर्स और सन्डरलैंड के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। आर्सेनल ने फुलहैम को 3-0 से पराजित किया और ऑफकोर्स आर्सेनल इस समय टाइटल की दौड़ में सबसे आगे बने हुए हैं। आज चेल्सी का मुकाबला नॉटिंगहम फॉरेस्ट से होगा। एवर्टन खेलेंगे मैनचेस्टर सिटी से और टॉटनहम हॉटस्पर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कल रात को जीत दर्ज की है। बर्थडेज की बात करें 4 मई आज के दिन ज्योति रंधावा और रॉरी मैकलरॉय 2 जाने माने गोल्फर्स अपना बर्थडे मना रहे हैं। 5 मई को यानी कल एरिना सबालेन्का अपना बर्थडे मनाएंगी टेनिस खिलाड़ी। साथ ही शूटर समरेश जंग भी अपना बर्थडे मनाते हुए नजर आएंगे। 6 मई को गगन नारंग भारत के पुराने शूटर ओलंपिक पदक विजेता उनका बर्थडे होगा। आप सभी को बर्थडे की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। शिवेंद्र को अनुमति दे, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।
1: Hima Das has done it. India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series.
2: Sports Pulse.

हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट। और जरूरी है रहना आपका स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स, और हमारे स्टार्स फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहे, बस यही दुआ रहती है। और इसी दुआ के साथ मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ स्वागत कर रही हूं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के सफर की शुरुआत हो चुकी है आकाशवाणी रेनबो पर, और साथ ही साथ आप भी सफर पर निकलने की तैयारी में हैं। और जब सफर पर निकलते हैं तो मैं हर बार कहती हूँ कि हम पूरी तरह से अच्छे से तैयारी करते हैं ना, तो जब आप भी सफ़र पर निकल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है मौसम का हाल, और ताकि आप प्रिपेयर रहें हर तरह से, हर लिहाज से। तो अधिकतम तापमान रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। और बारिश तो हुई है, संडे को भी हुई थी, कल रात भी बारिश हुई, और अभी भी मौसम सुहावना है और हवाएं चल रही हैं तेज़, ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है, और एक बहुत ही रिवाइव और रिफ्रेश आप महसूस कर रहे हैं। इस तरह की आपको पूरी फीलिंग आ रही है और फीलिंग दे रही है, और साथ ही साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे आज पूरे दिन, और दोपहर के बाद भी हल्की बारिश होने की संभावना है, तो इसलिए अम्ब्रेला ज़रूर लेकर जाइएगा। और उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, आपको जो भी काम करने हैं, आप बाहर निकले हैं, और ट्रैफिक अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी देर में, और ज़रूर आपको बताएंगे कि किन रूट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि बारिश हुई है तो आपके जो चेहरे पर मुस्कान है कि ठीक है, गर्मी से थोड़ी राहत है, तो ये राहत बिल्कुल आपको मिलेगी और बनी रहेगी अगले सप्ताह तक, क्योंकि तेज़ धूप

नहीं होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होगी। हाँ धूप होगी ज़रूर, बिल्कुल गर्मी का ये मौसम है, लेकिन तेज़ धूप नहीं है, तो एक हफ्ते की थोड़ी सी राहत ज़रूर है। और यहाँ पर बातें बहुत सारी आपसे जुड़ी हुई, आपके लिए खास। क्या हैं वो सारी बातें, खबरें, बिल्कुल आपको बताएंगे इसी सफ़र में। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं हूँ आपके साथ नुपुर।

और अगर आप भी एक शहर से दूसरे शहर सफ़र तय करते वक्त फास्ट टैग जो है अपने हाथ पर हाथ में पकड़ कर रखते हैं और या फिर डैशबोर्ड पर रखकर टोल पार करते हैं, तो अभी ज़रा सा संभल जाइए, इस आदत को बदल लीजिए और जो फास्ट टैग है, जी हाँ, उसको अपनी गाड़ी के सामने वाले शीशे के अंदर की ओर से चिपका लीजिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए ज़रूरी है और ये इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि टोल पर लगे सेंसर उसे आसानी से पढ़ सके। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको हाथ में पकड़ लेते हैं या डैशबोर्ड में रख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, फास्ट टैग को सही जगह पर आप नहीं लगाते हैं, तो उसे अमान्य टैग माना जाएगा और साथ ही जो आपका फास्ट टैग है उसको बंद किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपको तकलीफ़ तो होगी होगी अगर उसको बंद कर दिया गया तो, और दूसरा आपको डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इसलिए जहाँ उसको लगाना चाहिए ताकि सही से जहाँ उसकी जगह है उसको वहीं पर लगाए, ताकि जो उसको सेंसर है वो सही से पढ़ सके। और ये जो नियम है इसको बहुत ही सख्त कर दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, तो इसलिए ज़रा ध्यान से सफ़र करें बिल्कुल सावधानी के साथ, और सारी जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। इससे लाइफ जो है ना वो इजी होती है। समझे ये बात, समझ जाइए। सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ।

और आपका हर सफ़र हो आसान, इसकी पूरी है पूरी है पूरी है प्लानिंग। और प्लानिंग करते हैं जब कुछ सोचते हैं, तभी तो हम काम कर पाते हैं। तो सफ़र आपका बिल्कुल आसान हो, आप किसी भी यात्रा पर निकले हैं, यात्रा कर रहे हैं, अगर आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो आने वाले कुछ ही टाइम में यहाँ पर आपको यात्रियों या जो यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए शिविर बनाने का निर्णय लिया गया है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दोनों ओर यात्री सुविधा शिविर बनाने की का डिसीजन जो है ये लिया गया है। और बहुत भीड़ रहती है और मेट्रो भी है वहाँ पे, मेट्रो कनेक्टिविटी के कारण काफ़ी भीड़ रहती है। तो उन सबको देखते हुए आपका जो सफ़र है वो बिल्कुल सुविधाजनक हो, सुविधा से भरा हो, उसके लिए ये जो स्टेप है उसको लिया जा रहा है। तो पहले क्या होगा कि यात्री जो है पहले इन शिविर जो शिविर बनाए जाएंगे वहाँ पर ठहरेंगे, उसके बाद जब उनकी ट्रेन आने का समय होगा तब वो प्लेटफॉर्म की ओर जाएंगे। तो तीन जो है जोन है उनको बनाया जाएगा और आपकी यात्रा को इस तरह से डिवाइड किया जाएगा कि टिकट से पहले की एक अलग जोन होगी, टिकट काउंटर है, उसके बाद टिकट के बाद का की जो जोन है वो, और उसके बाद जो अंतिम जोन है वो ही यात्रियों को सीधे प्लेटफॉर्म तक लेकर जाएगी। तो है ना एक अच्छी बात, ताकि आपका सफ़र रहे बिल्कुल आसान। और साथ ही साथ जो कार है, ऑटो है, और अगर आप अपने किसी भी व्हीकल से आते हैं तो उनकी भी पार्किंग की अलग अलग व्यवस्था की जाएगी, ताकि आप किसी भी तरीके से कहीं जाम में ना फंसें। तो अच्छी है ना बात, पूरी पूरी पूरे आपके सफ़र की पूरी परवाह है। और आप भी थोड़ा सा अपने लिए परवाह दिखाएं, जब भी सफ़र पर निकलें तो पूरी तैयारी के साथ निकलें। और ऐसा ना हो जब सफ़र पर निकलते हैं कि हमें पता है कि हमें एक घंटा लग सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको एक घंटा लगे। तो इसलिए हमेशा कुछ समय और लेकर आपको चलना चाहिए, ताकि आप बिफोर टाइम पहुँचे और आपकी ना तो ट्रेन छूटे ना बस छूटे, और आप बस आराम से अपने सफ़र को एंजॉय करें। क्योंकि जब भी मैं ऐसे बात करती हूँ ना, तो मुझे हमेशा याद आ जाता है जब हम ट्रेवल करते थे बस से, और वहाँ लिखा होता था कि जल्दी के लिए कहना नहीं, लेट आप है हम नहीं। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि आपकी बस ही ना छूट जाए और ट्रेन ही ना छूट जाए, आप टाइम से पहुँचे, इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा मार्जिन ज़रूर लेकर चले और अपने हर सफ़र को सुहावना बनाएं। जुड़े रहे हमारे साथ, सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

पुरानी दिल्ली की गलियों में आप खूब घूमे हैं और बहुत सारी यादें हैं जो आपके जहन में हैं, तो फिर उनको एक और बार जीने का आपको मन है तो बिल्कुल एक बहुत ख़ास मौका है आपके पास। आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं, अपने घर में अगर बच्चे हैं तो उनको भी लेकर जा सकते हैं। उनके लिए बहुत ही ख़ास मौका है क्योंकि हम सबको ही कहानी सुनना पसंद है। कहानी सुनाना एक आर्ट है और सुनकर एक्ट करना काफ़ी मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अब बच्चों की छुट्टियाँ भी होने वाली हैं तो आप उनको लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं और इस वर्कशॉप का हिस्सा उन्हें बना सकते हैं। यहाँ पर क्या ख़ास है वो ज़रा जानते हैं। पुरानी दिल्ली की गलियों में आप घूमेंगे, गपशप करेंगे और ये जो टैलेंट ग्रुप है इसके साथ आप जाएंगे ऐतिहासिक इमारतों पर, बाज़ार मोहल्लों में आप घूमेंगे, गलियों में घूमेंगे और फिर वहाँ पर जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे आप कई किस्से सुनेंगे, है ना। और वो जो किस्से हैं आप उनको बटोरेंगे और फिर बटोर कर आप क्या करेंगे, आप भी तो कम नहीं हैं किस्से कहानी सुनाने में। आपके पास भी तो कोई बात हो तो कैसे मम्मी को घर आके पूरी कहानी सुनाते हैं, है ना। और क्या पूरी कहानी वैसी होती है जैसे हुआ होता है, कुछ तो आप अपनी तरफ से भी उसमें ऐड करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पे सुनेंगे किस्से तो उसके बाद आप अपने सुने किस्सों को संग जोड़कर एक मज़ेदार नाटक बनाएंगे और वर्कशॉप के आखिर तक जश्न किस्से कहानी के साथ आप मंच पर उतरते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आपको भी एक्टिंग अच्छी लगती है और एक्ट करना अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं और कौन सा एज ग्रुप है, तो ग्रेड 6 से लेकर 12 तक का जो बच्चे हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 10 मई से इसकी शुरुआत होगी और 15 दिन का जो है ये वर्कशॉप चलेगी और जून के अंत तक आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और 1784 तुर्कमान गेट और 1328 मालीवाड़ा नई सड़क, यहाँ पर इसकी शुरुआत हो रही है तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और कुछ अलग है और इसको भी एक्सपीरियंस करें, अपने बच्चों को लेकर जाएं और ज़रा घूमें और फिर से पुरानी दिल्ली की गलियों में घूमें, गपशप करें, सैर करें और फिर एक बार अपनी कहानी के साथ मंच पर उतर जाइए। जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफर में। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
7: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक, रेनबो 102.6 पर।

और जब गाने सुन रहे होते हैं ना, तो सिर्फ गाने ही मत सुना कीजिए, गाने के साथ साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा कदम यूं ही थिरका लिया कीजिए और हैंड मूवमेंट्स कर लिया कीजिए। और जो आप कहते थे कि आपका जो डांस है वो आपकी हॉबी रही है, और अब आपको क्या हो गया है कि मतलब आपको, आप इतने बिजी हो गए हैं कि आपको याद ही नहीं आता कि आप इतना अच्छा डांस करते हैं, और आप बहुत सारी स्किल्स हैं आपके अंदर, और आप वो सारी चीज़ें करना आपने छोड़ दी हैं। तो ज़रा उनकी ओर बढ़ जाइए, और उनकी ओर बढ़ने से ना एक पता है क्या ख़ास बात होगी कि जब कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है और आप उससे जुड़े रहते हैं ना, तो बहुत जो तनाव है, जो एक कुछ परेशानी है, उसको ना आप बहुत जल्दी से भूल जाते हैं। वो आपको स्ट्रेस में ही नहीं जाने देता, आप उसी में लगे रहते हैं। और कोई भी स्किल है, फिर आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, करते रहते हैं, कुछ हर दिन नया सीखते हैं। तो जब गाने भी सुने तो फिर थोड़े से एक्सप्रेशंस दें, थोड़ी सी गर्दन को हिलाएं, थोड़े से मूवमेंट करें, और जो करना आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करें। और ज़रूर करें, 30 मिनट तक आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, व्यायाम करें, योग करें, जो आपको करना अच्छा लगता है वो करें। अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, हरी सब्ज़ियाँ खाएँ, फल खाएँ, मौसमी फल खाएँ, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, और मेडिटेशन करें, और ये जो तनाव है ना, बस वो ना लें, इसको कम करें। हालांकि बहुत मुश्किल है, आप बहुत कुछ काम में उलझे होते हैं, और ये जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल हमारा बदल रहा है, और ये जो तनाव बढ़ रहा है, और हम जब तनाव में होते हैं ना, तो उसको कम करने के लिए हम कुछ भी खा लेते हैं। हम ऐसा कुछ खाते हैं जो हमारे स्ट्रेस को कम कर दे, हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये खाने से ना हमारा मूड अच्छा हो जाएगा, और फिर आप खाते भी वही हैं जो हेल्दी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अभी कुछ आंकड़े ऐसे बताते हैं, हृदय रोग संस्थान के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि तनाव की वजह से 16% से ज़्यादा जो हार्ट से जुड़े मामले हैं वो बढ़ गए हैं। तो इसलिए इस ओर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि 50 के बाद या 60 के बाद इस तरह की समस्या होती है, लेकिन अब ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि 35 से 50 साल की उम्र के जो लोग हैं वो इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे सोना, टाइम पर उठना, अपने जो टारगेट्स हैं उनको टाइम पर ख़त्म करना ज़रूरी है। जब आप उनको टाइम पर नहीं ख़त्म करते तो उसका भी एक स्ट्रेस आपको हो जाता है ना। तो इन सब से बचें, और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ा सा एक रूटीन अपने लिए बनाएं, और उसमें भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि वो रूटीन बन गया, आप फॉलो नहीं हो रहा, फिर उसका स्ट्रेस है। नहीं, धीरे धीरे करके ही आप किसी आदत में खुद को ढाल पाते हैं। वक्त लगता है, लेकिन कोशिश की जा सकती है, शुरुआत की जा सकती है। तो ये शुरुआत कीजिए, और अपना जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसकी जाँच कराते रहें, और अच्छी नींद लें। और ये जो स्क्रीन टाइम है ना, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे, ठीक है। जो करना है ना, सिर्फ उसी ओर कदम बढ़ाइए। ये ज़िंदगी बेहद बेहद खूबसूरत है, और आप इसे अपने लिए और भी खूबसूरत बना सकते हैं। आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, और मैं हूँ आपके साथ नूपुर कुलश्रेष्ठ।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही देर में। निखिल कुमार होंगे आपके साथ इस कार्यक्रम में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, और उसके बाद कार्यक्रम में जुड़ेंगे आपके साथ निहारिका, और प्रोग्राम है मैचलेस म्यूजिक आर, और उसके बाद बॉलीवुड की खबरों के साथ आपके साथ सबका साथ देंगी बॉलीवुड रील्स प्रोग्राम में कंचन कानन, और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:05 से लेकर 12 बजे तक। तो बिल्कुल ये जो सफ़र है इसको अपने लिए बहुत ही ख़ास बनाएं, और गानों का साथ और बहुत सारी जानकारी के साथ आप हमेशा जुड़े रहते हैं आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में। आप इस सफ़र में सिर्फ मैं इजाज़त ले रही हूँ आपसे, आप जुड़े रहिए, इसका हिस्सा बने रहिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में बस इतना ही, आकाशवाणी रेनबो का ये सफ़र बिल्कुल जारी है। मैं नूपुर कुलश्रेष्ठ अब आपसे लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: बना दे घर, दिला दे घर।
2: Oh my God, this is original.

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने। FM Rainbow

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना के अब तक के रुझान इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 116 के रुझान मिल रहे हैं। प्रारंभिक रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी बढ़त बना ली है और वो 73 सीटों पर आगे है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 38 सीटों पर आगे चल रहा है, अन्य 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, यहां 21 मई को मतदान होगा।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
0: असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 88 के रुझान मिल रहे हैं। प्रारंभिक रुझानों के अनुसार भाजपा गठबंधन ने काफ़ी बढ़त बना ली है और वो 69 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस गठबंधन 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। केरलम में विधानसभा की 140 सीटों में से 112 के रुझान मिल रहे हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने अच्छी बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 77 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वामपंथी गठबंधन एलडीएफ 32 सीटों पर आगे है। भाजपा गठबंधन भी 3 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में से 79 के रुझान मिले हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार सभी गठबंधनों में कांटे की टक्कर चल रही है। AIADMK गठबंधन 32 सीटों पर आगे चल रहा है। DMK गठबंधन 20 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। अन्य 27 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 8 का रुझान मिला है। AINRC 5 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस गठबंधन 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 1 सीट पर आगे है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। उमरेठ से भाजपा उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार बढ़त बनाए हुए हैं। बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती आगे हैं। दावणगेरे दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार श्रीनिवास टी दास करियप्पा बढ़त बनाए हुए हैं। राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजी राव करदिले आगे हैं। बारामती से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनीत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। अजित पवार की इस साल जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। त्रिमुरा में धर्मनगर में भाजपा उम्मीदवार जाहोर चक्रवर्ती आगे चल रहे हैं। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि ये दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि तीर्थयात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया। होर्मुज में फंसे जहाज़ों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभाव

प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। श्री ट्रंप ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। यूरोपीय देशों के नेता दो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों के लिए आर्मेनिया पहुंच रहे हैं। आज 30 से अधिक यूरोपीय नेता यूरोपीय राजनीतिक समुदाय सम्मेलन ईपीसी में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। संगोष्ठी में देश भर से एमएसएमई, निजी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां, स्टार्टअप और सैन्य कर्मियों सहित कई प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पड़ोसन फिल्म का ये गाना ऑन मैचलेस म्यूजिक आवर। वेल, हमारे पास भी आपसे कहने के लिए बहुत सारी प्यारी बातें हैं। इस बार मैं आपको ट्रैफिक के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहली प्यारी बात तो वही है कि इफ़ यू आर हेडिंग फ्रॉम पालिका भवन टूवर्ड्स भिकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन और इवन फर्दर दैन दैट टूवर्ड्स द एम्स हॉस्पिटल कैंपस, वेल यू आर गोना फाइंड अ लॉट एंड लॉट ऑफ ट्रैफिक। इट्स ऑल चॉको ब्लॉक एंड ट्रैफिक सीम्स टू बी मूविंग एट स्नेल स्लो पेस, सो यू माइट वॉन्ट टू टेक different or an alternative route, and if you're already stuck there, well, good luck my friend. It is going to be like a 40 minute or maybe a 45 minute delay that's going to be on your way, so you might get delayed for any meetings or even if you're heading towards office. Other than that, Kidwai Nagar seems to be slightly jammed as well, so near INA market there was a little traffic reported a short while ago. It may have cleared up until now, but a short while ago that was also slightly jammed. Not as much, but you might face some delays if you're heading towards that area as well. So you might want to take care of that. And in case you're on the roads and you have something to tell us about the traffic situation in the city of Delhi, well, right away on 9868107070, we'll be awaiting your messages and we'll be awaiting to hear from you. And in the meantime, time for a short, simple and sweet commercial break, followed by some great music coming your way, of course, on the Matchless Music Hour. Stay tuned.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: रहा है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये लड़का हाय अल्लाह फ्रॉम द फिल्म हम किसी से कम नहीं रिलीज्ड इन द 1970s एंड इन द 1970s देयर आल्सो केम द कॉन्सेप्ट ऑफ मसाला फिल्म्स. सो मसाला फिल्म्स आर लाइक द हाईलाइट ऑफ इंडियन सिनेमा बिकॉज लाइक इंडियन स्पाइसेस एंड इंडियन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। अब तक के रुझान इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से काफी आगे निकल गई है। अब तक के रुझानों में विधानसभा की 293 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों पर आगे है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 69 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 6 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहां 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से ताजा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा के पास। कल्याण, मतगणना के 3 घंटे बीत चुके हैं, पश्चिम बंगाल में ताजा स्थिति क्या है?
1: देखिए कनकलता, अभी बहुत सारे सीटों में, जैसे कि आप देख रहे हैं, 100 से ज्यादा सीटों में अभी बीजेपी लीड में है और टीएमसी बहुत पीछे पड़ा हुआ है। और भवानीपुर जो इम्पोर्टेंट सीट है, जिसमें चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कॉन्टेस्ट कर रही है, उसमें शुभेंदु अधिकारी लीडिंग में है और शुभेंदु अधिकारी दूसरे सीट में जो लड़ रहे हैं।

0: नंदीग्राम में दोनों ही सीटों में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का भी लीड में चल रहा है, और पूर्व वर्धमान जो डिस्ट्रिक्ट है जो टीएमसी का घर है उसमें भी बहुत सारे सीटों में बीजेपी आगे चल रहा है, और बांकुरा पुरुलिया में भी कांटे का टक्कर चल रहा है, और तीनहाटा जो एक इम्पोर्टेंट सीट है उसमें बीजेपी कैंडिडेट अभी आगे चल रहा है।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। असम में विधानसभा की 126 सीटों के रुझानों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है। भाजपा 76 सीटों पर आगे है जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार केवल 24 सीटों पर आगे चल रहे हैं। असम गण परिषद 9 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे हैं जबकि कांग्रेस के गौरव गोगोई जोरहाट सीट पर पीछे चल रहे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन 94 सीटों पर आगे है जबकि सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन एलडीएफ केवल 44 सीटों पर आगे चल रहा है। एक सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन धर्मादम सीट पर पीछे चल रहे हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटों में से 218 सीटों के रुझान मिले हैं। अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के 100 सीटों पर बढ़त के साथ अन्य दलों से आगे चल रही है। एआईएडीएमके 64 सीटों पर आगे है जबकि सत्तारूढ़ डीएमके 37 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन अपनी अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 18 सीटों के रुझान मिले हैं। एनडीए गठबंधन 7 सीटों पर आगे है, कांग्रेस ने 3 सीटों पर और डीएमके 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी चल रही है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। उमरेठ से भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार बढ़त बनाए हुए हैं। बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेथी आगे हैं। दावणगेरे दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार श्रीनिवास टी दास करियप्पा बढ़त बनाए हुए हैं। राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले आगे हैं। बारामती से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। अजित पवार की इस साल जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। संगोष्ठी में देशभर से एमएसएमई, निजी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां, स्टार्टअप और सैन्य कर्मियों सहित कई प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि यह क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स के साथ मैं कंचन हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए ना, दिल्ली में मौसम इतना अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी गर्मी से थोड़ी सी राहत तो ज़रूर मिली होगी। फिल्मी खबरों को समेट कर हम आ जाते हैं एफएम रेनबो पर। ये बॉलीवुड है साहब, जहां कौन सी फिल्म रिकॉर्ड तोड़ दे और कौन सी फिल्म ऑडियंस के लिए तरस जाए कोई नहीं जानता। तभी तो एफएम रेनबो पर हम लेकर आते हैं बॉलीवुड ट्रेल्स।

प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और इस प्रोग्राम में बॉलीवुड सरताज के सवाल का आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है और फिल्म से जुड़ा एक आसान सा सवाल आपके लिए होता है और जो सबसे पहले सही उत्तर हम तक पहुंचाते हैं ना वो बन जाते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। तो आज का सवाल बहुत ही ध्यान से सुनिए और आपको बताना है कि फिल्म दंगल में आमिर खान की पत्नी के रोल में कौन सी अभिनेत्री हैं। जल्दी से अपना उत्तर अपने नाम के साथ हम तक पहुंचा दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। मैं आपके साथ कंचन, सुनते रहिए फिल्म रेनबो, दिल से दिल तक।

आकाशवाणी के FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। वैसे आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म को लेकर शुरू में काफी बज रहा और बेटे की फिल्म को लेकर आमिर ने भी खूब प्रमोट किया, लेकिन आमिर की मेहनत जो है ना बिल्कुल भी रंग नहीं ला रही है, ऐसा तो शुरुआत में दिख रहा है। दो दिनों में फिल्म का हाल जो है वो बहुत ही खराब रहा, कलेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता है। साई पल्लवी का काम बहुत ही अच्छा है फिल्म में, गीत संगीत जो है वो दिल को छूने वाला है, संवेदनशील फिल्म है, प्यारी सी फिल्म है, बेहद साफ सुथरी फिल्म है, बच्चों के साथ अपने पूरे परिवार के साथ फिल्म देखी जा सकती है, लेकिन फिर भी ये फिल्म जो है ना ऑडियंस को खींचने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रही है। तो क्या दर्शकों की जो चॉइस है वो कुछ बदल रही है, या फिर रोमांटिक फिल्म में भी संवेदना की जगह ऑडियंस कुछ अलग खोज रहे हैं? और ये देखा गया है कि कुछ फिल्म जो है शुरुआत में बिल्कुल नहीं चल पाती है, अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाती है, लेकिन कुछ सप्ताह के बाद फिल्म अच्छी चल पड़ती है। अब थोड़ा इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि जुनैद खान की फिल्म एक दिन का बॉक्स ऑफिस पर सचमुच क्या हाल होता है। वैसे फिल्म एक दिन से अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गीत FM रेनबो पर।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो पर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम में बॉलीवुड सरताज के सवाल का इंतजार आपको बेसब्री से रहता है। वैसे हम सवाल आपके लिए पहुंचा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे जिन श्रोताओं ने थोड़ा देर से रेडियो ट्यून किया है, उसके लिए फिर से बता देते हैं कि आपको बताना है कि फिल्म दंगल में आमिर खान की पत्नी के रोल में कौन सी अभिनेत्री हैं। जल्दी से अपना उत्तर हम तक पहुंचाइए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

स्टार श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी बॉलीवुड में अपना नाम बनाने में जुटी हुई हैं और पलक पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी रही हैं, मगर उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा पर्सनल लाइफ जो है ना वो चर्चा में रहती है। और ऐसी अफवाहें हैं कि वो सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान को डेट कर रही हैं। वैसे पलक और इब्राहिम खान एक साथ कई बार देखे जा चुके हैं, वेकेशन पर भी साथ में स्पॉट किए जा चुके हैं, लेकिन अपने रिश्ते को अभी तक ऑफिशियल नहीं कर पा रही हैं पलक तिवारी। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और हमने आपको पूछा था कि फिल्म दंगल में आमिर खान की पत्नी की भूमिका में कौन सी अभिनेत्री हैं, तो आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे उत्तर, कुछ सही कुछ गलत उत्तर हम तक पहुंच रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, सुनते रहिए फिल्म रेनबो, दिल से दिल तक।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेंट,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

जी, बॉलीवुड में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। वैसे पठान फिल्म के बाद शाहरुख खान लेकर आ रहे हैं फिल्म किंग, जो कि क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है। और इस फिल्म में खास बात यह है कि वो अपनी बेटी सुहाना खान को लॉन्च कर रहे हैं। तो और अभिषेक बच्चन जो है वो खलनायक की भूमिका में होंगे, तो देखना।

आकाशवाणी के FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, और अब बारी है कि बॉलीवुड सरताज की हम घोषणा करें। वैसे बहुत सारे उत्तर हम तक पहुंच गए हैं। विजय कुमार जी मेरठ से कहते हैं, नीना गुप्ता जी, विजय कुमार जी ये तो बिल्कुल गलत उत्तर है। तरुण कोहली जी सूरज कुंड से सही उत्तर हम तक पहुँचा रहे हैं। रोहित श्रीवास्तव जी का भी सही उत्तर है, और उसके बाद दर्पण कुमारी विलेज श्यामनगर से कह रही हैं, सही उत्तर हम तक पहुंचा रही हैं। पवन गाज़ियाबाद से, उन्होंने भी सही उत्तर हम तक पहुंचाया है। मोहम्मद आसिफ मीर श्रीनगर से, वो कह रहे हैं मल्लिका सरावतिया जी, बिल्कुल गलत उत्तर है। और मोहम्मद फुरकान ने भी सही उत्तर, उन्होंने भी गलत उत्तर हम तक पहुंचाया है। और ऋषु कटारिया, पवन कटारिया जी ने सही उत्तर हम तक पहुंचाया है, और साथ ही जाहिद अहमद मुजफ्फरनगर से सही उत्तर पहुंचा रहे हैं हम तक। और हमारे बॉलीवुड सरताज जो हैं वो हैं तरुण कोहली जी। लेकिन तरुण कोहली जी, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आपको बॉलीवुड सरताज बनने पर हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। साक्षी तंवर जो कि टीवी स्टार थी 90 के दशक में, और उन्होंने इस फिल्म में ज़बरदस्त भूमिका निभाई, आमिर खान की पत्नी की भूमिका और चार बेटियों की माँ की भूमिका में वो दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गई। तरुण कोहली जी हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। तरुण जी, आपको बॉलीवुड सरताज बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जुड़े FM रेनबो के साथ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

FM रेनबो के साथ यूं ही गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, जाहिद अहमद, जहांगीर, हरीश गौड़, प्रदीप बंसल, बसंत तोमर जी, प्रवीण चौहान जी और धर्म भाटिया जी ने भी सही उत्तर पहुंचाया है प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में। मैं कंचन अभी लेती हूँ विदा, जुड़ेंगे फिर से 1:05 पर प्रोग्राम हेल्पलाइन लेकर। जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े FM रेनबो के साथ, जुड़े रहिए यूं ही बहुत ही प्यार से, बहुत ही दिल से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 184 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 94 सीटों पर आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भवानीपुर सीट पर आगे हो गई हैं। वामदल 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, अन्य 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, जहां 21 मई को मतदान होगा। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 99 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 2 सीट पर आगे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 96 सीटों पर आगे है। एलडीएफ 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में

0: विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके 109 सीटों पर आगे है। एआईएडीएमके गठबंधन 73 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। डीएमके गठबंधन 52 सीटों पर आगे है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास। सुशील, कहा जा रहा था कि टीवीके के विजय इन चुनावों में एक्स फैक्टर साबित होंगे और वही होता दिख रहा है। जीत के प्रति आश्वस्त टीवीके ने सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा और अब क्या लग रहा है कि विजय एमजी रामचंद्रन के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं?
1: देखिए कनक, विजय की ये जो विजय है राजनीतिक मैदान में वो जबरदस्त है। जिसे आप कहते हैं कि फिल्मी पर्दे पर ब्लॉकबस्टर रिलीज होती है, वैसे इस बार के राजनीतिक मैदान में, इस बार के चुनाव में उनकी ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है और जबरदस्त सफलता मिल रही है। जो आपने तुलना की एमजीआर से, एमजीआर के बारे में कहा जाता है वो एक विचारधारा से, एक राजनीतिक आंदोलन की उपज थे, लेकिन विजय को ये बात उनसे अलग करती है क्योंकि वो किसी राजनीतिक आंदोलन की उपज नहीं है, लेकिन उनका एक करिश्मा है, युवाओं में उनकी एक अपील है, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं। तो इस तरीके से विजय का एक अपना करिश्मा और जो सरकार के खिलाफ एक माहौल था, जो सरकार के खिलाफ लोगों की इच्छा थी, एक बदलाव की जो इच्छा थी, वो बदलाव हमें विजय के रूप में सत्ता के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से देखें तो वो थोड़ा सा जो जादुई आंकड़ा है 118 का, उससे कुछ पीछे रह सकते हैं, लेकिन अभी ये आने वाले कुछ वक्त समय में स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिल पाती हैं। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 24 के रुझान मिल गए हैं। एआईएनआरसी 15 सीट पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 3 सीट पर आगे हैं। चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके साथ ही अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
0: इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डॉक्टर गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि तमिलनाडु में परिणाम डीएमके पार्टी के पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित रहेगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी जारी है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों से इन सूचकांकों को मजबूती मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 808 अंक उछलकर 77,721 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। सबसे पहले सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से सत्तासीन सुश्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार का जाना रुझानों में तय नजर आ रहा है। विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 191 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं।

0: तमिलनाडु में कोलातूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन चेपक तिरुवल्लिकेणी सीट पर आगे हो गए हैं। अभिनेता और टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय पेरुम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। केरल में धर्मादम सीट से मुख्यमंत्री और सीपीएम उम्मीदवार पिनराई विजयन ने बढ़त बना ली है। निमोम सीट से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं। एक सीट AINRC, एक सीट भाजपा और एक सीट डीएमके ने जीती है। AINRC 8 सीट, भाजपा 1, कांग्रेस गठबंधन 1, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 1 और अन्य 3 सीटों पर आगे हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। भाजपा का राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना तय है। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है, जो 98 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य उम्मीदवार 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने एनडीए के लिए 100 से करीब सीटें जीतने का भरोसा व्यक्त किया था पहले ही, जो सही साबित हो रहा है, क्या कहना है आपका?
1: जी, आप सही बोल रहे हैं कि एनडीए जो है लगभग 100 की सीटें जो है ना वहां पर आगे चल रही है यहाँ पर। और मेजर सीट्स की बात करें जहां पे कॉन्टेस्ट होना, जो कांग्रेस की जो मेन कैंडिडेट थे जैसे गौरव गोगोई जोरहाट से, वो कुछ ट्रेलिंग है, वो कुछ पीछे चल रहे हैं 16,000 वोटों से,
0: जबकि उन्होंने कहा था कि वो 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस।
1: हाँ, लेकिन वो खुद यहाँ पे आफ्टर 10 राउंड के बाद, जो 14 राउंड होंगे, 10 राउंड के बाद वो खुद 16,000 वोट से पीछे हैं। जो हितेंद्र नाथ वहाँ के जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए है, उनका घर माना जाता है, वहाँ पे गया गौरव गोगोई, वहां से लड़े, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि बातें भी चल रही थी गौरव गोगोई विल विन द सीट, बट द थिंग इज यहाँ पे थोड़े अलग ही जा रहे हैं।
0: राकेश जी, ये बताइए,
1: अखिल गोगोई की भी बात करें, अखिल गोगोई जो है, अखिल गोगोई जो एक लीडर जो है ऑपोजिशन के मेन वन ऑफ द लीडर, जो अखिल गोगोई वो मार्जिनली भी आगे हैं जो, बट इट इज इन द फिफ्थ राउंड में है। यहाँ पे 20 राउंड होंगे शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो मार्जिनली आगे हैं 900 वोट्स में, और वहाँ आगे जाना बाकी है। और जो बहुत डिस्कशन का जो था एक टॉपिक, दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ प्रद्युत बोर्दोलोई जो कांग्रेस के नेता थे, जस्ट इलेक्शन से पहले उन्होंने दिसपुर ज्वाइन, बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन करने में उनको टिकट दिए गए, बातें चल रही थी कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बात यहाँ पर देखा जाए तो ओवर 35,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं। मेरा बहुत
0: धन्यवाद राकेश
1: जी।
0: चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव डॉ. गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में 2 के परिणाम मिल गए हैं। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से भाजपा ने 2 सीटें जीत ली हैं और 2 पर बढ़त बनाए हुए है। धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जहर चक्रवर्ती विजयी रहे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 394 अंक बढ़कर 77,308 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की वृद्धि के साथ 24,118 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक प्रोग्राम हेल्पलाइन के साथ मैं कंचन। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पूरे परिवार के साथ जुड़े होंगे एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक। दोस्तों, स्कूली शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की भूमिका अग्रणी रही है और आज हम प्रोग्राम हेल्पलाइन में बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की क्या प्रक्रियाएं हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री सत्यनारायण, आप प्रिंसिपल हैं केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 2 आर के पुरम। सर, एफएम रेनबो पर आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद मैम, आपने आज मुझे इन्वाइट किया केंद्रीय विद्यालय पर एडमिशन प्रक्रिया पे बात करने के लिए। मैं सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। और केंद्रीय विद्यालय के निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बहुत अग्रणीय भूमिका रही है और है, और हमेशा हम बच्चों को वो मार्गदर्शन देते हैं जिससे वो देश के अव्वल नागरिक बने। और हमारी प्रक्रिया केंद्रीय विद्यालय एक ही बात पर ध्यान देता है, विशेषकर कि अभिवादन शिले से वर्धोपशेव ने चतवारी तसे वर्धनती आयुर्विद्या यशो बलम, यानी कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इनोवेशन के साथ हम काम करते हैं। बच्चों के साथ बच्चा, देश का बच्चा वैल्यू के साथ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि मेरा देश का बच्चा वैल्यू बेस्ड हो, इनोवेशन हो और उसके अंदर एक क्रिएटिव थिंकिंग की पावर हो
1: जी।
2: उसको जी
1: जी। तो दोस्तों, अगर आप भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया के बारे में सर से कुछ जानना चाहते हैं तो जुड़ जाइए ना एफएम रेनबो के साथ अपनी व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर आप सवाल सर तक सीधे पहुंचा सकते हैं। साथ ही फ़ोन लाइंस भी खुले हैं आपके लिए और हमारा नंबर है 2342104। दिल्ली के बाहर से अगर आप कॉल करेंगे तो 011 ज़रूर डायल कीजिए। सर से हम बहुत कुछ जानेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में किस तरह से आप एडमिशन अपने बच्चों की करा सकते हैं, तो जुड़िए एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक और सर की ही पसंद के बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही मीठे मीठे गीत हम सुनवाते रहेंगे एफएम रेनबो पर।

वाकई दोस्तों खो ना जाएं ये तारे ज़मीं पर। ये बच्चे जो होते हैं ना बड़े मासूम होते हैं, और हम सब की कोशिश होती है कि बच्चे जो हैं वो खुल कर जिएं ज़िंदगी को, हंसते खेलते ज़िंदगी के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। और जैसे ही बच्चों के स्कूल जाने की उम्र होती है तो हम सब चाहते हैं कि बच्चों का एडमिशन जो है वो केंद्रीय विद्यालय में बहुत ही आसानी से हो जाए। और आज प्रोग्राम हेल्पलाइन में हमारे साथ हैं श्री सत्यनारायण, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 2 आर के पुरम। और आज बात हो रही है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की क्या प्रक्रियाएं हैं। सर, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी

0: है तो क्या किस क्लास में एडमिशन दी जाती है?
1: देखिए मैम, केंद्रीय विद्यालय क्लास वन में फर्स्ट लोट में एडमिशन करते हैं हम, वो पोर्टल के माध्यम से करते हैं।
0: जी
1: पोर्टल में पेरेंट अपने बच्चे की एंट्री तीन स्कूल सेलेक्ट करता है, तो तीन विद्यालय जब सेलेक्ट करता है उसके बाद फिर हमारे नेशनल लेवल पे हेडक्वार्टर के द्वारा लॉटरी कंडक्ट की जाती है। सारे स्कूल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जितने लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उसके बाद लॉटरी सिस्टम के द्वारा हमारी लॉटरी के एक पैरामीटर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम आरटी को प्रिविलेज देते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी है और राइट टू एजुकेशन के तहत 25% बच्चे केंद्रीय विद्यालय में आरटी के तहत पढ़ते हैं। जो प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं उन बच्चों को सबसे पहले एडमिशन दिया जाता है। हम लॉटरी का बटन दबाते हैं, वो बच्चे 25% बच्चे सेलेक्ट होकर उनकी लिस्ट तैयार हो जाती है। और हर क्लास में जैसे हमारे 40 का एक सेक्शन होता है, उसमें 10 बच्चे आरटी के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। और वो 10 बच्चे जैसे ही सेलेक्ट होते हैं उसके बाद वेटिंग लिस्ट हम जनरेट करते हैं।
0: जी
1: और पहले उन 10 बच्चों को जो एडमिट हो गए हैं एक क्लास के अंदर उनका एडमिशन किया जाता है। अगर वो बच्चे टर्न अप नहीं होते हैं तो वेटिंग लिस्ट वाले को ऑटोमेटिक मैसेज आता है उनको भी, और स्कूल के द्वारा हमारी जो एडमिशन कमेटी होती है वो उनके साथ पेरेंट के नंबर होते हैं वो फ़ोन करते हैं, वेबसाइट पे भी अपडेट करते हैं, हमारे नोटिस बोर्ड पे भी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं और अगले बच्चों को भी हम बुलाते हैं उसके बाद।
0: जी
1: जी
0: जफर आटुक जी का सवाल आया है पूर्णिया बिहार से। वो कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के लिए निम्न और उच्च आयु जो है वो क्या
1: क्लास वन
0: चाहिए?
1: के लिए 6 साल की उम्र होनी चाहिए। 31 मार्च 2026 को जैसे इस साल एडमिशन चल रहे हैं,
0: जी
1: 1 अप्रैल के बच्चे को भी हम उसमें काउंट करते हैं। तो वहाँ तक अगर बच्चा 6 साल का है और मैक्सिमम 8 साल का बच्चा है क्लास वन के लिए, हम उसको एडमिशन के लिए वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और अगर बच्चा CWSN के अंदर आता है तो 2 साल की उसको एक्स्ट्रा छूट भी दी जाती है।
0: जी और अगर सर क्लास वन में किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया तो किन किन क्लासेस में एडमिशन के प्रावधान हैं?
1: जी बहुत अच्छे क्वेश्चन मैडम ये। अगर बच्चे ने क्लास वन में एडमिशन नहीं ले पाया तो क्लास 2 से लेकर ऑनवर्ड्स टू क्लास 12 तक अगर हमारे किसी भी सेक्शन में, एक सेक्शन की हमारी 40 की लिमिट होती है, 40 से अगर बच्चे कम होते हैं हमारे, तो हम उसके लिए एडवर्टाइज़ करते हैं अप्रैल के मंथ में कि अगर कोई बच्चा हमारे किसी भी क्लास के अंदर वैकेंसी है उसको हम वेबसाइट पे भी डालते हैं और अपने वेबसाइट के माध्यम से और अपने नोटिस बोर्ड के माध्यम से उन उन सभी पेरेंट्स को हम बताते हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसी है। फिर वो ऑफलाइन फॉर्म ला के और अप्लाई करते हैं स्कूल के अंदर, और ऑफलाइन फॉर्म को हमने अवेलेबिलिटी करवा रखी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हमारी वेबसाइट के ऊपर भी, तो वहाँ से भी वो डाउनलोड करके भर के लाते हैं, जमा करते हैं। फिर उनके लिए हम हमारी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से हम उनकी लिस्ट बनाते हैं, और प्रायोरिटीज़ में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5 आती है।
0: जी
1: तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले कैटेगरी 1 के अंदर आते हैं। अगर मैक्सिमम फार्म उसी कैटेगरी में आ गए हैं तो पहले उनका एडमिशन होता है एज पर द ट्रांसफर ऑर्डर।
0: जी और सर जब किसी भी स्कूल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जब फॉर्म भरे जाते हैं तो गलतियां जो है वो बहुत अधिक हो जाती है, तो किस तरह से सावधानी बरतें ताकि गलती ना हो?
1: देखिए मैं ये पेरेंट्स से एक मेरा रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि बच्चे के जीवन में एडमिशन सबसे बड़ा रोल होता है उसका, तो पेरेंट को उस टाइम अपना समय, जैसे जिसका बच्चा 31 मार्च 2027 को आने वाले टाइम में 6 साल का पूरा होता है, तो उससे पहले उसको अपने बच्चे के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। उसके डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट बनवा के रखें अपने पास। अगर बच्चा किसी भी प्रायोरिटी कैटेगरी में बिलोंग करता है, SC ST OBC या CWSN में, तो वो अपनी सर्टिफिकेट बनवा के रखें। और जैसे हमारा पोर्टल पे अवेलेबिलिटी होती है तो पूरा पूरा ध्यान दे के अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है किसी को तो नियर बाई केंद्रीय विद्यालय में जाके वो पता कर सकता है। हमारे टीचर, हमारी एडमिशन कमेटी उनकी मदद करती है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उससे पहले उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। उसके बाद भी फॉर्म भरने के बाद भी हमारे टीचर ऑनलाइन उन फॉर्म को देख के फ़ोन कॉल करते हैं टीचर्स के, उनके पेरेंट के पास, कि आपके बच्चे के फॉर्म में आपने जो एडमिशन की कैटेगरी भरी है वो ठीक नहीं भरी है, तो उसको ठीक करवाते हैं।
0: जी
1: तो ये सारे प्रोविजन हम रखते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी बच्चे को कोई नुकसान ना हो।
0: जी
1: लेकिन मेरा रिक्वेस्ट पेरेंट्स से है कि वो फॉर्म भरने से पहले उस फॉर्म की पूरी क्राइटेरिया देखे, कहीं प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करे, पूछे, तो निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं आएगी।
0: जी, किशनगंज से पैंथर तोमर जी लिख रहे हैं कि केवीएस में लॉटरी कैसे निकाली जाती है और वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, क्या केंद्रीय विद्यालयों में सिर्फ सरकारी नौकरियों जो पेरेंट्स कर रहे हैं उनके बच्चों को ही प्राथमिकता दी जाती है, या घर से स्कूल की दूरी एडमिशन को कैसे

0: प्रभावित करती है। आरटीई कोटा के तहत एडमिशन के क्या नियम हैं और इसमें कितनी सीटें आरक्षित होती हैं, साथ ही केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिलने के बाद अगर फादर का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो जाता है तो बच्चे का केवी टू केवी ट्रांसफ़र कैसे होगा? बहुत सारे सवाल हैं इनके।
1: बहुत सारे
0: जी
1: सवाल हैं और बहुत अच्छे सवाल
0: जी
1: हैं
0: बहुत ही अच्छे सवाल
1: जी।
0: हैं।
1: देखिए, केंद्रीय विद्यालय में पहला मैंने बताया कि पहले हमारी राइट टू एजुकेशन के तहत 25% बच्चे जो हम एडमिट करते हैं वो आरटी में ही करते हैं।
0: जी
1: और उन बच्चों का कि उनके घर की डिस्टेंस एक क्राइटेरिया होता है कि वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो। मेट्रो सिटी में 5 किलोमीटर और आउटर मेट्रो सिटी आउटर सिटीज़ के अंदर 8 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर आपका घर है तो उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आपका बच्चा फ्री एजुकेशन 8th क्लास तक पढ़ेगा केंद्रीय विद्यालय के अंदर, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसलिए अपने आरटी के अंदर जो कंडीशन हैं, जो जिसमें डिसएडवांटेज ग्रुप है, मैंने बताया कि एससी, एसटी, ओबीसी, सीडब्ल्यूएसएन और ईडब्ल्यूएस, इन सब के सर्टिफिकेट उसके लिए चाहिए। अगर कोई बिलोंग करता है वो सर्टिफिकेट बना के अपने अपलोड करके रखें, और जैसे ही आपके पास आपका नाम आता है स्कूल के द्वारा आपको इन्फॉर्म किया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट लेके आएँ, आपको एडमिट कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर किसी का ट्रांसफ़र होता है केंद्रीय विद्यालय में, जैसे ही पेरेंट का ट्रांसफ़र होता है टीसी के बेस के ऊपर नए स्थान पे जाता है, तो क्लास में 50 की स्ट्रेंथ तक प्रिंसिपल उन एम्पावर्ड होता है एडमिशन करने के लिए, सभी का एडमिशन हो जाता है। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा बचता है टीसी के बेस पे तो ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर को वो उनकी एप्लीकेशन को भेज दिया जाता है। नियर बाई केंद्रीय विद्यालय में जहाँ पर 50 से कम स्ट्रेंथ होती है उसको अलॉट कर दिया जाता है। एडमिशन होने के बाद ट्रांसफ़र के बेस पर एडमिशन होना बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें
0: जी। और सर, अगर किसी बच्चे ने 9th क्लास में एडमिशन के लिए पूछा है कि 9th क्लास में क्या एडमिशन आसानी से हो जाता है?
1: 9th क्लास में एडमिशन आसानी से नहीं हो पाता है क्योंकि 9th क्लास तक हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है
0: जी।
1: तो 9th क्लास में क्योंकि हमारा एडमिशन का क्राइटेरिया ही 40 बच्चों का होता है कि 40 बच्चे पर सेक्शन होने चाहिए, लेकिन 9th क्लास तक हमारे पास बच्चे क्योंकि केवीटीसी पे भी ट्रांसफ़र होके आते हैं तो लगभग हर क्लासेस के अंदर 45-47 इसके आसपास बच्चे होते हैं। अगर 40 से बच्चे कम होते हैं तो एडमिशन हो जाता है, और अगर 50 से ज़्यादा बच्चे होते हैं केवीटीसी के ऊपर तो उनका एडमिशन हमारे डिप्टी कमिश्नर की परमिशन से हो जाते हैं
0: जी। सुधीर जी का मैसेज आया है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन पाने के लिए क्या क्या कोटे जो हैं वो आरक्षित हैं, तो इस पर
1: अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अब केंद्रीय विद्यालय एक अग्रणी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे अगर मैं कहूँ तो अभी स्पेशल डिस्पेंशन के अंदर एडमिशन हमारे होते हैं, उसके लिए 10 क्राइटेरिया हैं। अगर बच्चा कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है, नेशनल लेवल पे उसने SGFI के अंदर पार्टिसिपेट किया है, CBSE में किया है, नेशनल स्टेट लेवल पे उसने गेम में 1st 2nd 3rd पोजीशन ली है तो उसको मौका मिलता है, या किसी के पेरेंट ने गैलेंट्री अवार्ड लिया है, महावीर चक्र लिया है, अशोका चक्र लिया है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है, सेवा मेडल है, सेना मेडल है, नौसेना मेडल है, उनको सभी को प्रायोरिटी के बेस पे उनको स्पेशल डिस्टेंस में एडमिशन होता है। या कि कोई बच्चा राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड में उसको मिला है, या नेशनल ब्रेवरी अवार्ड बच्चे को मिला है, या फाइन आर्ट्स में स्पेशल टैलेंट में उस बच्चे का रिकॉग्निशन है नेशनल लेवल पे, तो उन बच्चों को एडमिशन मिलता है। या फिर COVID-19 में जिनके पेरेंट दोनों पेरेंट नहीं रहे, PM केयर के तहत उनका एडमिशन किया जाता है केंद्रीय विद्यालय।
0: एक मैसेज आया है कि अगर पहली लिस्ट में नाम आने के बाद समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाए तो क्या एडमिशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा या कोई अतिरिक्त समय मिलता है?
1: केंद्रीय विद्यालय एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बच्चों को बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर पहली लिस्ट में नाम आता है तो उसके बाद हमारे टीचर उसको फ़ोन करके भी बताते हैं, लिस्ट भी डिस्प्ले करते हैं, फिर भी हम वेटिंग करते हैं उसके कि 5 दिन 2 दिन के अंदर हम उनको मेल डालते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं ताकि बच्चे का अधिकार छूटे ना। पहले पूरी कोशिश की जाती है कि जब तक हम ये हमारे टीचर इस बात को एडमिशन कमेटी इसको कन्फर्म ना कर ले कि वहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँची है नहीं पहुँची है। अगर पेरेंट वापस हमें कॉल करके बताता है और अपना मैसेज रिटर्न में भेजता है तो हम उसके बाद नेक्स्ट शीट के ऊपर जाते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत प्रक्रिया करते हैं हमारे टीचर और बहुत सावधानी से इस पर काम करते हैं।
0: जी, तो दोस्तों अगर आप भी सर से जानना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की क्या प्रक्रियाएं हैं, आपकी क्या उलझन है, तो आप जुड़ जाइए FM रेनबो के साथ। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868

1070070 पर आप मैसेज पहुंचा सकते हैं सीधे सर तक, और साथ ही कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 2342104। दिल्ली के बाहर से अगर आप कॉल करेंगे तो 0110 डायल कीजिए। सर की ही पसंद के बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही मीठे मीठे गीत हम सुनवाते रहेंगे FM रेनबो पर। जुड़े रहिए दिल से दिल तक।

0: आंखों में कई मासूम सपने सजाए बच्चे जाते हैं स्कूल की तरफ, और जब केंद्रीय विद्यालय की बात आती है तो वो एक ऐसी संस्था है जहां बच्चे हंसते खेलते पढ़ाई से जुड़ते और बहुत ही इत्मीनान से पढ़ाई करते हुए गुजरते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं ज़िंदगी को भी पढ़ाई को भी। और आज हमारे साथ हैं श्री सत्यनारायण जो कि प्रिंसिपल हैं केंद्रीय विद्यालय आर के पुरम के। और दोस्तों मेरा सौभाग्य है कि आज सर हमारे साथ हैं, क्योंकि सर जिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं उस स्कूल से मेरा खास बहुत बहुत खास जुड़ाव है, लगाव है। सर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की बात हो रही है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कुछ प्रावधान है केंद्रीय विद्यालय के लिए?
1: मैम बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में केंद्रीय विद्यालय को बहुत बड़ा रोल दिया गया है।
0: जी,
1: केंद्रीय विद्यालय की एजुकेशन में जो एजुकेशन है एनईपी के अकॉर्डिंग हमारे टीचर इंजॉय, जो आपने यूज किया था ना अभी, बच्चे इंजॉय करते हैं, वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमारे बच्चे यहाँ करते हैं और सारे टीचर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो लर्निंग है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन की लर्निंग है। बाकी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद वो सारे प्रोजेक्ट असाइनमेंट हम बच्चों को देते हैं और वो उसको परफॉर्म करते हैं। इनोवेशन की तरफ अभी इनोवेशन क्लब बनाए गए हैं केंद्रीय विद्यालय में, जिनके माध्यम से बच्चे इनोवेटिव आइडिया देते हैं अपने और आइडिया पे काम करते हैं। और अभी वोकेशनल एजुकेशन के लिए लैब्स बनाई गई केंद्रीय विद्यालय में, ताकि बच्चा स्किल एजुकेशन ले सके। भारत सरकार का जो प्रावधान है कि स्किल एजुकेशन पर विशेष फोकस किया गया है, और बच्चे स्किल के ऊपर, और अभी जो AI की भी हमारे केंद्रीय विद्यालय में बहुत, क्योंकि हम स्किल में AI को और PAT को बहुत महत्व दे रहे हैं कि फिजिकली बच्चा खेले भी और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखे भी बच्चा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक प्रावधान दिया गया कि बच्चा 6 साल का बच्चा ही क्लास 1 में एडमिट हो, उससे पहले भी एक विशेष प्रोग्राम बनाया गया है कि बालवाटिका का प्रोविजन दिया गया, बालवाटिका 1, 2 और 3। हमारे कुछ केंद्रीय विद्यालय में बालवाटिका 1, 2, 3 शुरू हो चुकी है, बाकी में कोशिश है कि इस साल और अगले साल तक ये हमारी बालवाटिकाएँ स्टार्ट हो जाएंगी, और उसके माध्यम से बच्चों को प्री नर्सरी जो एजुकेशन है वो भी दी जाती है, ताकि बच्चा फ्लरिश करे और सारी चीज़ें सीखे और आगे बढ़े।
0: जी, नेहा का मैसेज आया है नई दिल्ली से, और वो पूछ रही हैं कि उनका भतीजा क्लास 6 में है, वो चाहती हैं कि उनके भतीजे को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिल जाए, तो क्या ये पॉसिबल है?
1: हाँ, पॉसिबल तो हो सकता है, क्योंकि उसके नियर बाई केंद्रीय विद्यालय में अगर 40 से कम बच्चे की स्ट्रेंथ है और वहाँ पर एडवर्टाइज़ किया गया है, तो वहाँ जाके उनकी वेबसाइट पर आप सर्च कर सकते हैं कि अगर वैकेंसी है तो अप्लाई करें, और अगर वैकेंसी नहीं है तो अगले साल तक इंतज़ार करें कि वैकेंसी जिस एरिया में अवेलेबल होती है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में 40 से कम बच्चे बहुत कम संभावना है, लेकिन TC कहीं चली जाती हैं तो कहीं ना कहीं वैकेंसी क्रिएट होती हैं तो हम पब्लिश करते हैं उसको।
0: जी सर, दिल्ली में कई केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जो कि 2 शिफ्ट में चल रहे हैं, तो ये क्या अलग अलग शिफ्ट जो है वो क्या अलग अलग कोटे के बच्चों के लिए है, किस तरह से क्यों है अलग ये शिफ्ट?
1: ऐसा नहीं है, केंद्रीय विद्यालय एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे बच्चों को पढ़ने का मौका देती है। भारत सरकार के साथ उनके दिशा निर्देशन में शिफ्ट का आयोजन किया गया, क्योंकि दिल्ली मेट्रो जो सिटीज़ हैं वहाँ पे प्लेस की जगह कम होने के कारण से एक रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए हम दो जगह यूज़ करते हैं। Shift 1 और Shift 2 के बच्चों में कोई अंतर नहीं है, सारी प्रायोरिटीज़ वही, सेम एडमिशन होता है Shift 1 में और Shift 2 के अंदर। Category 1 से लेकर Category 5 तक के बच्चे Shift 2 में भी पढ़ते हैं, Shift 1 में भी वही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से, क्लासरूम कम होने की वजह से, और ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा होते हैं दिल्ली के अंदर या मेट्रो सिटीज़ में, तो उन सबको अकोमोडेट करने के लिए, उनको फैसिलिटी देने के लिए डबल शिफ्ट का प्रोविजन किया गया है, कि ताकि मैक्सिमम बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ सकें।
0: जी, और अगर कोई बच्चा शिफ्ट को चेंज कराना चाहता है, आफ्टरनून शिफ्ट से मॉर्निंग शिफ्ट में जाना चाहता है या मॉर्निंग शिफ्ट से आफ्टरनून शिफ्ट में आना चाहता है, तो क्या बहुत आसानी से शिफ्ट चेंज किया जा सकता है?
1: नहीं, हमारी एडमिशन गाइडलाइन में ना इसका प्रोविजन दे रखा है मैम
0: जी,
1: कि हमारा Para 7 के अंदर प्रोविजन है कि अगर किसी बच्चे का सिबलिंग, एक बच्चा इवनिंग शिफ्ट में पढ़ता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ता है, तो सिबलिंग के बेस के ऊपर पेरेंट अपना रिक्वेस्ट करता है, हम उसकी शिफ्ट चेंज कर देते हैं एज पर द चॉइस ऑफ द पेरेंट। ये सिबलिंग बेस ही एडमिशन

0: हमारा ट्रांसफर हो पाता है बच्चों का। दूसरा, अगर बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ता है, दूसरी शिफ्ट में पढ़ता है, एक बच्चा दूसरे स्कूल के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ता है, तो उसका एडमिशन हमारे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से उसका स्कूल भी चेंज होता है। लेकिन केस है सिबलिंग केसेस के बेस पे, और या एक्सट्रीम किसी बच्चे को कोई मेडिकल इश्यूज हो तो उसके परमिशन ली जाती है डिप्टी कमिश्नर रीजनल ऑफिस के द्वारा।
1: जी, और पैंथर तोमर जी का एक मैसेज फिर आया है और वो पूछ रहे हैं कि अगर एडमिशन के समय कोई दस्तावेज़ कोई सर्टिफिकेट तैयार नहीं है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या दिव्यांग है, अगर कोई बच्चा तैयार नहीं है तो क्या प्रोविजनल एडमिशन मिल सकता है? और केवी में विदेशी भाषाओं को लेकर क्या नियम है? ये किस कक्षा से पढ़ाई शुरू होती है, फ्रेंच या जर्मन?
0: जी देखिए, अगर पहला क्वेश्चन था आपका
1: कि अगर सर्टिफिकेट तैयार
0: सर्टिफिकेट
1: नहीं
0: है,
1: है,
0: हमारी
1: जी
0: एडमिशन गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि हम अगर बच्चे के पास कोई सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको उसके पेरेंट की सर्टिफिकेट को हम स्वीकार करते हैं।
1: जी
0: जैसे मान लीजिए SC ST OBC में है तो पेरेंट की सर्टिफिकेट को लेते हैं, और 3 महीने का टाइम दिया हुआ है कि 3 महीने के अंदर उसको बनवा के जमा करवा दीजिए।
1: जी
0: CWSN बच्चे के अंदर भी अगर सर्टिफिकेट नहीं है और वो विजुअली दिखता है तो भी हम उसको प्रोविजनल परमिशन देते हैं, लेकिन ये कोशिश की जाती है कि सर्टिफिकेट बच्चा प्रोवाइड कर दे। ये
1: जी
0: दोनों चीज़ों के साथ ही हम काम करते हैं।
1: जी
0: जी
1: और दूसरा सवाल है कि फ्रेंच और जर्मन
0: ये
1: क्लासेस,
0: फॉरेन लैंग्वेज है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत R1, R2 और R3 का फार्मूला दिया गया है कि अगर R3 में अगर कोई बच्चा अपनी चाहता है कि मेरी एक फॉरेन लैंग्वेज हो तो उसको प्रोविजन दिया जाएगा, और उसके ऊपर काम चल रहा है अभी केंद्रीय विद्यालयों में।
1: जी
0: जी
1: और सर किन बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है एडमिशन के समय में?
0: ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय स्पेशली जो जब इसकी नींव रखी गई थी, इन स्कूलों को बनाया गया था तो ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय के लिए बनाया गया था। कैटेगरी 1 के एम्प्लॉय जो ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफरेबल है, जो काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बच्चों को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए या अभी ये सभी सभी कैटेगरी के लिए एडमिशन पॉसिबल है, लेकिन प्रायोरिटीज के हिसाब से अगर कैटेगरी 1 एम्प्लॉयज़ का बच्चा पहले आएगा, उसके बाद कैटेगरी 2 का आएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन ऑटोनोमस बॉडी के अंदर आते हैं, कैटेगरी 3 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं, और कैटेगरी 4 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी आती है, और कैटेगरी 5 के अंदर जो जो सर्विस में नहीं है, जो बिजनेस क्लास हैं या अपना काम करते हैं, वो आते हैं। तो एडमिशन सभी कैटेगरी का पॉसिबल है, लेकिन प्रायोरिटीज़ के हिसाब से एडमिशन होते हैं। पहली पहली प्रायोरिटी हमारी कैटेगरी 1 एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ट्रांसफरेबल होते हैं।
1: जी सर फोन लाइन पर हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं और जानते हैं उनसे उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो
2: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्ते, आप अपना सवाल सर से कहें।
2: मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं सर को नमस्कार और आपको बहुत नमस्कार कहना चाहता हूँ।
1: जी नमस्ते।
2: मैम
1: जी
2: मेरा बेटा अभी अभी मतलब प्ले स्कूल था, अभी नर्सरी में है, तो अभी मैं स्कूल में एडमिशन के लिए अभी मैंने इसको अभी तो आसपास ही डाला है। तो मेरा अभी प्रोसीजर ये मैं पूछना चाह रहा था सर से कि अगर मैं इनिशियली उसको सेंट्रल स्कूल के लिए अगर डालना चाहता हूँ नर्सरी से, तो क्या ऐसा पॉसिबल है?
0: सर बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपके नियर बाई में केंद्रीय विद्यालय है और वहाँ विजिट करके आप पता करिएगा, अगर वहाँ बाल वाटिका है तो अभी अभी तो एडमिशन हो चुके हैं इस साल के, अगले साल जब एडमिशन होंगे तो पोर्टल पे जाके आप सर्च करेंगे कि बाल वाटिका कौन कौन से स्कूल के अंदर है, और वहाँ आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करिए, आपके बच्चे का एडमिशन एज पर द प्रायोरिटीज केंद्रीय विद्यालय की एडमिशन हो जाएगा।
2: ओके सर, जैसे अभी आप कह रहे थे कि अभी आपने, मैं सुन रहा था रेडियो स्टेशन पे, तो आपने बताया था कि जैसे 9th क्लास हो जाती है, 10th 11th मतलब 9th क्लास में मुश्किल हो जाता है एडमिशन, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ जाती है,
0: जी
2: मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, तो फिर पॉसिबल होता है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू या कैसे, या फिर जो प्रायोरिटी आपने बताए थे कि प्रायोरिटी बेस पे जो 10 पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप देते हैं
0: जी जी
2: एडमिशन,
0: जी जी जी
2: तो जो कंपैरेटिवली नर्सरी में हो गया या 2nd क्लास में हो गया, तो उसमें तो इजी हो जाता होगा एडमिशन।
0: सर एडमिशन क्लास 1 से या नर्सरी से लीजिए, जहाँ से भी एडमिशन लेंगे वो प्रायोरिटी बेस्ड एडमिशन है। अगर वैकेंसी आपके लिए है तो इजी है एडमिशन हो जाना, अगर वैकेंसी अवेलेबल नहीं है प्रायोरिटीज में तो मुश्किल हो जाता है। तो एडमिशन इजी और मुश्किल पे डिपेंड नहीं है, वैकेंसी पे डिपेंड है। अगर वैकेंसी अवेलेबल है तो एडमिशन हो जाएगा, नो इश्यू। हम
2: तो एनी
0: जी
2: नॉर्मल पर्सन कैन गो एंड ही कैन चेक एंड फिल द फॉर्म।
0: यस, वेबसाइट पे हम एडवर्टाइज करते हैं। केंद्रीय विद्यालय की पॉलिसी बहुत साफ है, वो नोटिस बोर्ड पे भी देते हैं, हर

0: की अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट पे वैकेंसी पोजीशन डाली जाती हैं और उसके माध्यम से आप जब जैसे एडवर्टाइज करते हैं तो कोई भी पेरेंट जाके अपने अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फिर उसमें मेरिट लिस्ट बनेगी अकॉर्डिंगली कैटेगरी वाइज, और कैटेगरी वाइज जिसका जहाँ नंबर आता है वो डिस्प्ले किया जाता है और बाकी को वेटिंग लिस्ट को शो कर दिया जाता है।
1: तो सर मेरा जो नियर बाय स्कूल है वहां जाके मुझे पता करना चाहिए।
0: जी जी जी जी
1: ओके सर, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
0: ओके ओके सर।
2: तो सर बहुत सारे पेरेंट्स की ये चिंता होती है कि बच्चों को अगर वो नहीं है सरकारी कर्मचारी तो उनके बच्चों को एडमिशन मिल ही नहीं पाएगा।
0: देखिए एडमिशन की पूरी एक एक क्लास में 40 की स्ट्रेंथ है,
2: जी
0: और 40 की स्ट्रेंथ के अंदर जैसे क्लास वन के अंदर आते हैं तो उसको हमने 25% कोटा हमने रिजर्व कर रखा है आरटी के लिए।
2: जी
0: उसके बाद 15% कोटा है एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए कोटा है, ओबीसी के लिए 27% कोटा है।
2: जी
0: अब इसके इस प्रोविजन के तहत जैसे जैसे जो जो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो अप्लाई करता है, फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज सबकी लिस्ट बनती है। पहली जो लिस्ट हमारी बनती है वो आरटी की बनती है, उसके बाद कैटेगरी वन की लिस्ट हम डिस्प्ले करते हैं। तो ये हमारे एक पूरा प्रोविजन है जिसके तहत हमारा एडमिशन की प्रक्रिया चलती है कि आरटी की लिस्ट बनेगी, फिर सीडब्ल्यूएसएन की लिस्ट बनेगी,
2: जी
0: फिर कैटेगरी वन की बनेगी, फिर कैटेगरी टू की बनेगी, फिर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी थ्री कैटेगरी फोर कैटेगरी फाइव कैटेगरी सिक्स अगर प्रोजेक्ट स्कूल है तो।
2: जी
0: तो ये सारी बातों के साथ सबकी लिस्ट डिस्प्ले करते हैं और जिस कैटेगरी के अंदर जैसे हमारे एडमिशन की प्रक्रिया क्लास वन के अंदर पहला काम क्या होता है कि आरटी के एडमिशन करने के बाद हम कैटेगरी सीडब्ल्यूएसएन के एडमिशन करते हैं और उसके बाद कैटेगरी वन के बच्चों के एडमिशन करते हैं जितनी वैकेंसी जिस स्कूल की होती है। अगर हम कहें कि 40 की स्ट्रेंथ है तो 10 10 सीटें हमारी रिजर्व हो गई हैं उधर, और उसके बाद 3% सीटें सीडब्ल्यूएसएन की चलेगी, रेस्ट ऑफ द सीट जो बची हैं उसमें कैटेगरी वन के एम्प्लॉय को एडमिशन दिया जाएगा और उसके बाद फिर हम उसका सिलेक्शन देखते हैं कि कितने कैटेगरी वाइज हमारे पास एडमिशन हो चुके हैं।
2: जी
0: जी
2: तो दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल रही होगी केंद्रीय विद्यालय के संदर्भ में। सर की ही पसंद का ये गीत सुनते हैं जिसे हम पूरा नहीं सुन पाए थे किसी वजह से, तो सुनिए FM रेनबो पर ये गीत दिल से दिल तक।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मंगल भवन मंगल हारी
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: बिल्कुल यही है आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल, दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन में। आपके साथ कंचन और हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे बहुत बहुत खास मेहमान आदरणीय श्री सत्यनारायण सर हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय प्रिंसिपल हैं, केंद्रीय विद्यालय आर के पुरम सेक्टर 2 के प्रिंसिपल हैं। और आज बात हो रही है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं जो है वो हैं और आप कैसे उनका पालन करके केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन पा सकते हैं। सर, केंद्रीय विद्यालय की जब बात होती है तो हर एक बच्चे की चाहत और हर एक पेरेंट्स की चाहत होती है कि उनका बच्चा जो है वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़े। तो केंद्रीय विद्यालय में ऐसी क्या कुछ खास बात है जो एक चाहत होती है, सबकी इच्छा होती है कि बच्चा वहाँ तक पहुँच सके?
8: कंसर्न मैम, मुझे भी केंद्रीय विद्यालय में काम करके बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि मैंने केंद्रीय विद्यालय को पिछले 24 साल से देखा है। इसको यहाँ पे जो हमारा एक IMNIS प्रवृत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरित नाम तो वसुधैव कुटुंबकम है, कि हम KV के टीचर इस फिलोसफी पे काम करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन, हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है हर एक्टिविटी के अंदर, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, इंटरेक्टिव क्लासरूम्स, और अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो सारे की सारी चीज़ें लागू हो चुकी हैं, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, और बच्चे टीचर के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो किसी भी बच्चे को कभी ऐसा लगता ही नहीं कि टीचर और मैं अलग अलग हैं
7: जी।
8: वो एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों जिस अंदाज से इंटरेक्ट करते हैं और वो बच्चा अपने प्रोजेक्ट को, अपनी बातों को सबमिट करता है, और मेरे स्कूल के अंदर मैं कहूँ तो 30 बच्चे हैं जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन कभी उनको बच्चों को ऐसे महसूस नहीं होता कि हम कैसे पढ़ाई करें। बच्चे कितनी शेयरिंग करते हैं, कितने, अभी हमारे स्कूल की बच्ची मानसी, अगर आपने देखा होगा, PPC प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने प्राइम मिनिस्टर जी के साथ गई थी और उस बच्ची को इतनी वायरल हुई है, उसने जो सॉन्ग गाया देश के और उस प्लेटफॉर्म पे, तो वो बच्चे मेरे स्कूल से बिलोंग करती है। तो हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है, हर बच्चे से हम इंटरेक्ट करते हैं, उसको वो पूरा चांस देते हैं कि वो ग्रो करे, वो खिले, वो सीखे, और कभी भी हम इस बात में बिलीव नहीं करते कि बच्चा अपनी बात को ना रखे। बच्चा रखता है, हम उसकी और पेरेंट के साथ, क्योंकि हमारी वेलकमिंग एजुकेशन पॉलिसी यही कहती है कि वेलकम टू ईच एंड एवरी चाइल्ड टू ग्रो इन ऑल सिनेरियो।
7: जी, जी। सर, एक सवाल ये भी है कि क्या केंद्रीय विद्यालयों में हॉस्टल की सुविधा है?
8: केंद्रीय विद्यालय में, कुछ केंद्रीय विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है, जैसे दिल्ली कैंट नंबर 1 के अंदर है, लेकिन सभी में नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने घर से आते हैं और घर ही चले जाते हैं, लेकिन कुछ जगह जो स्पेशल प्रोविजन में दी गई है वहाँ पर जगह है
7: जी। और सर, वक्त जो है ना वो तो बिल्कुल उड़ता चला जा रहा है, और चलते चलते

0: संदेश देंगे उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों का एडमिशन चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, कैसे किन सावधानियों का पालन करें और कैसे केंद्रीय विद्यालय की तरफ वो रुख करें?
1: मेरी सभी पेरेंट्स से एक सलाह है कि जिसका भी बच्चा 6 साल का होने वाला है नेक्स्ट ईयर में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर ले, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट की अपनी वैल्यू होती है। अपने डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं तो आपकी सर्विस सर्टिफिकेट की वैल्यू है कैटेगरी वन में, आपके ट्रांसफ़र लास्ट 7 ईयर्स के हैं वो अपने अपडेट करके रखें अपने साथ, अपने बच्चे का अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी सर्टिफिकेट बनवा के रखें, अगर बच्चा CWSN में कैटेगरी में आता है तो उसके भी सर्टिफिकेट बनवा के रखें, और साथ में फरवरी के महीने में कम से कम एक्टिव हो जाएं आप। अगर आप वेबसाइट पर देख पाएँ तो और अच्छी बात है, नियर बाय केंद्रीय विद्यालय में जाके आप पता कर सकते हैं कि पोर्टल पर एडमिशन कब शुरू होने वाले हैं, ताकि आप अपने बच्चे के फॉर्म भर सकें। क्योंकि आपके अवेयरनेस सबके अवेयरनेस है, क्योंकि उत्तिष्ठते जागृते प्रापे वरानि बोधते। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप जागोगे तो आपको सारे के सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, पूछना आपकी तरफ से शुरू होगा, जवाब जरूर मिलेगा। आज डिजिटल जमाना है, वेबसाइट पे AI के माध्यम से हर जगह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब नहीं कह सकता कोई कि मुझे इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, फिर भी हम सब आपकी मदद के लिए हैं। केंद्रीय विद्यालय में हमेशा हेल्प डेस्क बनी होती है, कहीं भी आप जाओगे बात रखोगे आपको पता लगेगा, पूछेंगे। डॉक्यूमेंट बनवाना आपका काम है, प्रक्रिया में हिस्सा जरूर लें। प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो लॉटरी तो यही कहती है ना, आपका नंबर भी तो उसमें है,
0: जी
1: आ ही सकता है।
0: जी तो बिल्कुल
1: जी
0: सकारात्मक रहें
1: हाँ
0: अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर। और सर सर चलते चलते हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको FM रेनबो के स्टूडियो में आकर आज कैसा लगा?
1: कंचन मैम, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे बुलाया, क्योंकि मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है अपनी बात
0: जी
1: रखने का कि इस प्लेटफॉर्म पे आया, और मैं अपने अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे अलाउ किया यहाँ आने के लिए, क्योंकि हर जगह एक प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, और इसके माध्यम से हम उन सब लोगों से जुड़ पाए, उन तक अपनी आवाज़ पहुँचा पाए, केंद्रीय विद्यालय की बात बता पाए कि केंद्रीय विद्यालय इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पेस सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन। निश्चिंत होकर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए, उस प्रक्रिया को फॉलो करिए, और हमेशा एक पेरेंट होने के नाते, एक प्रिंसिपल होने के नाते मैं कहता हूँ मैं कि पॉजिटिव वाइब्स अगर आप अपने बच्चों में देंगे और वैल्यू एजुकेशन की बात करेंगे, उन अपने बच्चों को अगर आप नमस्कार करना सिखाएंगे, क्योंकि संस्कृत का श्लोक ये मैंने नहीं लिखा, जो जहाँ से शुरू किया था उसी नोट पे मैं ख़त्म करता हूँ, अभिवादन से ले से वर्धो सेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों का सम्मान करें, और निश्चित रूप से आप सम्मान करेंगे, पॉजिटिव वाइब्स होंगी आपके अंदर तो आपकी आयु विद्या और यश और बल सब मिलेगा, और जीवन में यही आधार है आगे बढ़ने का कि आप अपने से कंपटीशन करें, दूसरे से कंपटीशन के बजाय जिस जिस कदम पे आप खड़े हैं उसे आगे बढ़ते जाएं। रोड नॉट टेकन एक लाइफ है अपनी, कि आप घबराइए मत, चलते रहिए, जीवन आपका साथ देगा, क्योंकि करेजियस तो आपको ही होना पड़ेगा।
0: जी
1: एक कदम आगे बढ़ाइए, जीतेंगे आप।
0: जी सर, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आपका आज साथ मिला। जब हम एक शिक्षक से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने बचपन में चले जाते हैं, और लगता है कि सीखना जो है वो तो जिंदगी भर लगा रहेगा, सीखते रहना है हम सबको।
1: ये जो आपने बोला, ये लाइन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी है, लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ,
0: जी
1: कि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है, हम सब सीखते हैं, सीखते रहें, आगे बढ़ें, इसी में हम सब का कल्याण है। जय हिंद। जी
0: जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें आपका साथ मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद मैम, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगा आज यहाँ के।
0: जी
1: जी
0: आज थे हमारे साथ प्रोग्राम हेल्पलाइन में श्री सत्यनारायण सर, केंद्रीय विद्यालय प्रिंसिपल, और बात हो रही थी कि केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चों का एडमिशन किस तरह से करा सकते हैं। मैं कंचन यहीं पर लेती हूँ विदा, जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक। आप सभी जुड़े FM रेनबो के साथ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए विदा मुझे, नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो 102.6 एफएम रेनबो और मैं हूं ज्योतिका आपके साथ। लेकर आई हूं आपका अपना शो आशियाना। आज शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहती हूं। आज मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, गला खराब है, तो आपको मेरी आवाज थोड़ी अजीब थोड़ी अलग लग सकती है, पर क्या करें, ये माइक और आप सबसे जो ये कनेक्शन है ना, वो इतना स्पेशल है कि ऑन एयर आना मुझे ज़रूरी लगा। सो प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि ये आवाज़ थोड़ी सी हैवी ज़रूर है, पर इसमें उतना ही प्यार है। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। शो का नाम है आशियाना। आशियाना ये वो जगह है जहाँ हम बात करते हैं घर की, रिश्तों की और उन छोटी छोटी फीलिंग्स की जो ज़िंदगी को ब्यूटिफुल बनाती हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सिंपल है लेकिन बहुत गहरा है। क्या हम अपने घर में सच में बात कर पा रहे हैं? सेम घर सेम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशंस कम हो गई हैं। आज इसी पर थोड़ी सी बात करते हैं, दिल से बिना किसी फिल्टर के।

ऐसे ही तो होता है, जब आप किसी को दिल से पसंद करते हैं तो उनकी एक हंसी, एक मुस्कुराहट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जब सामने वाला दिल से खुश होता है ना, तो वो खुशी आपके चेहरे पर झलकती है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आशियाना और मैं हूं ज्योतिका आपके साथ। आशियाना में हम घर की बात करते हैं और घर एक ऐसी जगह होती है जहां हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, जहां हम अपने रियल सेल्फ में होते हैं। लेकिन आजकल वही घर थोड़ा सा साइलेंट नहीं लगने लगा? हर किसी के हाथ में फोन होता है, हर किसी का अपना शेड्यूल होता है। मम्मी किचन में बिजी होती हैं, पापा काम में और बच्चे अपने अपने स्क्रीन्स पर। और हम सबसे, हम एक ही छत के नीचे होते हैं, लेकिन हम सबकी दुनिया एकदम अलग सी होती है। कभी ऐसा फील होता है कि पहले जैसे वो छोटी छोटी बातें, वो बिना रीजन वाली हंसी, वो रैंडम कॉन्वर्सेशंस धीरे धीरे कम सी हो गई हैं। या शायद इसी वजह से हम फिजिकली साथ तो होते हैं लेकिन इमोशनली थोड़े दूर से हो गए हैं। तो आज आशियाना पर बस इतना सा सवाल है, क्या हम सिर्फ एक घर शेयर कर रहे हैं या फिर एक दूसरे के साथ वक्त भी शेयर कर रहे हैं? सोचिए जरूर। मैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूं, आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक लाई हूं, सोचना जरूर इस बारे में।

जरा अपने आप से आज एक सवाल पूछिए, लास्ट टाइम आपने अपने घर पे किसी से दिल की बात जब की थी तो कब की थी? सिर्फ खाना खा लिया क्या या काम हो गया? इन सब से आगे बढ़कर किसी ने आपसे कभी पूछा है तुम ठीक हो और आपने ऑनेस्टली जवाब दिया हो? राह चलते हुए हम हर किसी से पूछ लेते हैं, हाउ आर यू, ऑल वेल, लेकिन जेन्युइनली तो हम अपने घर पर सवाल का जवाब दे ही सकते हैं ना। जब मम्मी या पापा हमसे पूछें क्या तुम ठीक हो, तो हम दिल खोल कर उस बात का जवाब दें, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि हम उनसे पूछें कि मम्मी आप ठीक हो, तो वो अपना दिल खोल कर जवाब दें। पर ऐसा होता नहीं है यूजुअली। आपने ऑनेस्टली कभी जवाब दिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनों की फीलिंग्स को अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये तो ठीक ही है। लेकिन रिश्तों को अजम्पशंस नहीं, कॉन्वर्सेशंस स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। एक दूसरे को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी रिश्ता स्ट्रॉन्ग कहलाता है।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो,

0: साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो पर आपका अपना शो आशियाना। मैं हूं ज्योतिका आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। क्या हम अपने घर में सच में बात कर पा रहे हैं? कई बार ना हम सोचते हैं कि वो समझ जाएंगे, बिना बोले ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इतने सालों का रिश्ता है भाई, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो शब्दों की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, सच तो यही है कि जो बातें हम दिल में रख लेते हैं वही धीरे धीरे दूरियां क्रिएट कर देती हैं। एक छोटा सा थैंक यू, एक सिंपल सा आई एम प्राउड ऑफ यू, या कभी कभी बस एक छोटा सा सवाल तुम ठीक हो, ये छोटी छोटी लाइन्स रिश्तों को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो आज का थॉट बस इतना सा है, फीलिंग्स को अज्यूम मत करिए, एक्सप्रेस करिए, क्योंकि जब बातें होती रहती है ना, तभी रिश्तों की वार्मथ बनी रहती है। चलिए इस थॉटफुल मूड के साथ आपको एक खूबसूरत सा गाना सुनाती हूं यहां पर।

तो चलिए आज आशियाना पर एक छोटा सा टास्क लेते हैं। आज घर जाके किसी एक इंसान को बस ये कहना है, आई अप्रिशिएट यू, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, सिबलिंग हो या आपका पार्टनर हो। जी हाँ, हम अप्रिसिएशन जो होता है ना, कभी कर ही नहीं पाते हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा, ये तो उसका फ़र्ज़ है, ये तो उसका काम है। हम घर पर जब थक हार के पहुँचते हैं, चाहे वो स्कूल से हों, चाहे ऑफिस से हों, अपने आप हमारे हाथ में कोई ना कोई आके पानी थमा देता है। वो भी तो प्यार है। बिना कहे रोज शाम को जब हम ऑफिस से जाते हैं तो हमारे सामने हमारी थाली सज के तैयार होती है, गरम गरम चपातियाँ, चावल और हमारे फेवरेट सब्जियाँ, पकवान, सब कुछ रेडी होता है। वो भी एक प्यार है। हम उसमें थैंक यू नहीं बोलते ऑफ कोर्स, क्योंकि अपनों को क्या ही थैंक यू बोले, लेकिन अप्रिसिएशन तो ज़रूरी होती है ना। वो भी सोचो कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी, किचन में लगे होते हैं, प्यार से खाना बनाते हैं, लेकिन हम बस खा के निकल जाते हैं। और कहते भी तो क्या है, आज मिर्ची तेज थी, नमक ज़्यादा पड़ गया, शायद नमक कम था। अगर हम ये कह दें आई अप्रिशिएट यू, तो सोचो उनके जो चेहरे पर स्माइल आएगी ना, वही आपके घर की रियल लग्जरी है। क्योंकि घर सिर्फ रहने की जगह थोड़ी होती है, फील करने की होती है। जैसे अभी आपको ये अगला ट्रैक थोड़ा फील कीजिए ना, बहुत इंजॉय करोगे आप।

आप सुन रहे हैं आशियाना और मैं हूं ज्योतिका आपके साथ। और आज हम बात कर रहे हैं घर के, घर के उन रिश्तों की जहां बातें ही सबसे बड़ा कनेक्शन होती हैं। जरा याद करिए बचपन के वो डिनर टेबल मोमेंट्स जहां सब एक साथ बैठते थे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। टीवी भी कभी कभी ऑफ होता था, फोन्स तो होते ही नहीं थे और बस होती थी हंसी, थोड़ी सी शरारत, मम्मी की डांट, पापा की स्टोरीज और बीच बीच में वो सिंपल सी बातें जो दिल को खुश कर देती थी। आज लाइफ थोड़ी फास्ट हो गई है, शेड्यूल्स टाइट हो गए हैं और वो मोमेंट्स थोड़े से रेयर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों सच ये है कि उन्हें वापस लाना इतना मुश्किल भी नहीं है। कभी कभी बस एक मील साथ में प्लान कर लीजिए या 10-15 मिनट बैठकर बिना किसी स्क्रीन के बात कर लीजिए, वही पुरानी वार्म्थ वापस आ जाती है। तो आज का आशियाना रिमाइंडर बस इतना सा है, परफेक्ट टाइम का वेट मत करिए, छोटे मोमेंट्स क्रिएट कीजिए, क्योंकि यही जो छोटी छोटी बातें कल की सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। चलिए इसी प्यार के एहसास को साथ सुनते हैं आगे एक फैमिली बॉन्डिंग ब्यूटिफुल ट्रैक।

ये बात तो एकदम सच है, अपने तो अपने होते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आशियाना विद मी ज्योतिका, और आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। घर में हम आपस में कितनी बातें करते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, सुनना भी होता है। कभी कभी हम इतने जल्दी में होते हैं एडवाइस देने के लिए या अपनी बात रखने के लिए कि हम सामने वाले को प्रॉपरली सुन ही नहीं पाते। लेकिन सच ये है फ्रेंड्स, हर इंसान को हर बार सोल्यूशन नहीं चाहिए होता। कभी कभी बस ये चाहिए होता है कि वो उन्हें बिना जज किए, बिना इंटरप्ट किए बस सुन ले, पूरी बात सुन ले। सोचिए, जब घर में ये स्पेस मिल जाए जहां आप अपनी बात बिना हेजिटेशन के कह पाओ और कोई आपको दिल से सुनने वाला हो, तो वही घर ऑटोमेटिकली एक सेफ स्पेस बन जाता है जहां रहना और भी सुकून देता है। और शायद इसीलिए एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, बल्कि अटेंशन और पेशेंस से बनती है। तभी कहते हैं ना, यू आर अ गुड लिसनर। आज ट्राई कीजिए, किसी अपने को बस पूरे ध्यान से सुनिए, बिना फोन उठाए, बिना बीच में रोके टोके। देखिए रिश्तों में कितनी गहराई सी आ जाएगी। दिस वन ओनली फॉर यू, माई पर्सनल फेवरेट रेखा भारद्वाज।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

फ्रॉम द मूवी धड़क टू, दर्शन रावल की आवाज प्रीत रे. वेलकम बैक आपका एक बार फिर से शो में. शो का नाम है आशियाना, मैं हूं ज्योतिका आपके साथ. दोस्तों, आज आशियाना का एक सिंपल सा मैसेज है. घर की दीवारें कितनी भी खूबसूरत हों, इंटीरियर्स कितने भी परफेक्ट हों, लेकिन अगर बातें ही नहीं होंगी तो वो घर कहीं ना कहीं अधूरा लगेगा. रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये आपके जो बड़े एफर्ट्स होते हैं ना, ये इन सब की जरूरत नहीं होती. कभी कभी बस एक कप चाय साथ में, एक छोटी सी वॉक या सिर्फ 10 मिनट की वो ऑनेस्ट वाली कॉन्वर्सेशन काफ़ी होती है. सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, परफेक्ट वर्ड्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. बस दिल से निकली हुई बात होनी चाहिए जो सामने वाले के दिल को छू जाए. अब ऐसा नहीं कह रही कि मैं आप उसको चीज़ी बना दो और कुछ भी बोलते चलो, बस आपकी जो बात होनी चाहिए ना, बस दिल से होनी चाहिए. आज जब आप घर लौटेंगे ना, तो ट्राई कीजिएगा किसी अपने के साथ थोड़ा वक्त बिताइएगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के. हो सकता है ना एक छोटी सी बात किसी का दिन बेटर बना दे, और शायद आपका ही दिन बन जाए. क्योंकि एंड ऑफ द डे घर वही होता है जहां हम सुने भी जाते हैं और समझे भी जाते हैं, है ना भाई. तो बस हमेशा अपनी बात दिल से कीजिए.

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोतो, हीमोफीलिया सामान्य भाषा में कहें तो रक्त स्त्राव यानी खून रुकने का नाम नहीं ले रहा हो तो

0: विषय पर हम चर्चा लेकर आए हैं वो आपने जान लिया है कि किस तरह से हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि कैसे होता है ये रोग?
1: ये हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त स्राव का रुकना नहीं हो पाता है। तो इसके लिए पहले सबसे पहले श्रोतागण को हम ये बताएं कि रक्तचाप रुकता कैसे है। मान लीजिए धमनियों में या कोई चोट लगती है और खून बहना शुरू हो जाता है
0: जी।
1: तो थक्का का बनना बड़ा आवश्यक है, जिसको हम ब्लड क्लॉट कहते हैं, और उसके लिए कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो तत्व हैं वो जरूरी हैं हमारे शरीर में। उनमें जो मुख्य रूप से फैक्टर 8 और फैक्टर 9 हैं, और यदि ये तत्व हैं तो वो फिर थक्का प्रॉपर जमता है, और अदरवाइज इसमें क्या होता है कि रक्तस्राव रुकता नहीं है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में है, और उसी प्रकार से रक्तस्राव ज़्यादा या कम होता है, लेकिन रक्तस्राव बढ़ जाता है, ये इसमें हीमोफीलिया में होता है।
0: इधर हम डॉक्टर साहब का स्वागत तो कर ही चुके हैं, आगे अभी एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद करेंगे आगे की चर्चा।

0: श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया के बारे में। तो डॉक्टर विजय सर, आपसे जानना चाहूंगी कि हीमोफीलिया के लक्षण क्या हो सकते हैं।
1: हीमोफीलिया के जो लक्षण हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि इसका सीवियरिटी कितना है। और इसमें उसके पहले मैं श्रोतागण को ये बता दूं कि सीवियरिटी जानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या ये हल्के किस्म का हीमोफीलिया है या मध्यम किस्म का या गंभीर किस्म का है
0: जी।
1: क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे थक्का जमाने वाले तत्व हैं फैक्टर 8 और फैक्टर 9, वो उसमें यदि कमी की मात्रा ज़्यादा हो तो लक्षण ज़्यादा उसमें होते हैं मरीज को। और इसमें जैसे हल्की चोट लगने के बाद किसी में खून का रक्तस्राव होता है, किसी में खुद से ही रक्तस्राव होने लगता है
0: जी।
1: तो ये इसी बात पर निर्भर करता है। जैसे दांतों में मान लो किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ है और उसका खून नहीं निकल रहा, रुक रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। उसके अलावा भी जैसे ज्वाइंट में, जैसे ये जितने जोड़ हैं हमारे, खास करके जो एड़ियों के जोड़ हैं या घुटनों के जोड़ हैं या फिर कोहनियों के हैं, जो एल्बो ज्वाइंट है, उसमें ये ज़्यादातर जो सीवियर किस्म के होते हैं, गंभीर किस्म के।

0: हीमोफीलिया वाले मरीज, उनमें ये वहाँ पे ब्लीडिंग होता है।
1: जी
0: और यही नहीं, ये मसल के अंदर भी, और मसल के बाद ये जैसे आंतों में भी आपके इस तरह के ब्लीडिंग हो सकते हैं। तो ये लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि गंभीरता कितनी है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपसे बहुत कुछ आगे जानेंगे। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो लाइन पर। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुभ नाम बताएं अपना।
2: हाँ जी, सलाउद्दीन बोल रहे हैं जी, कस्बा किठौर जिला मेरठ से।
1: जी सलाउद्दीन, स्वागत है आपका। बताएं क्या सवाल है आपका। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आज हमारे साथ दो दो विशेषज्ञ मौजूद हैं।
2: सर पहले तो ये जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये डॉक्टर साहब आए हैं यहाँ पर, बड़े बहुत अच्छा वक्त निकाल के, टाइम बहुत कीमती होता है इनका।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने।
2: हाँ सर, ये पित्ती जो उछल जाती है जी, खून में क्या परेशानी है, उसके बारे में पूछना था जी।
0: इसमें ऐसा है सलाउद्दीन जी, आपने जो सवाल पूछा है उसको मैं थोड़ा और सरल भाषा में समझाता हूँ। क्या
2: जी
0: होता है कि जो जैसे आप यदि ग्रामीण परिवेश से हैं या खेतों में देखा होगा, जो पाइप है, पानी फटता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पत्थर रखते हैं या कोशिश करते हैं कि खून उसमें पानी रुक जाए।
2: जी
0: उसके
2: जी
0: बाद नहीं रुकता है तो उसमें हम एक कोई सूती कपड़े लेके उसको बांध देते हैं। आप इसी चीज को आप शरीर के जो रक्त स्राव है उस पर आ जाएं, तो हमारे शरीर के अंदर एक प्लेटलेट है जो एक तरह से पत्थर जो आपने रखा वो शुरुआती पत्थर की तरह काम करते हैं। जब किसी धमनी में किसी प्रकार का कोई आपको डैमेज होता है, वो कोशिश करते हैं रोकने का, लेकिन जैसे पत्थर नहीं रोक पाते हैं, उसी प्रकार से ये भी प्लेटलेट उतने कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो एक तरह से आप समझें कि सूती कपड़े की तरह है, वो मेसवर की तरह, और वो पूरी तरह से उसे लपेट के पत्थर की तरह, पत्थर के ऊपर, और खून को रोक देता है। तो ये जो आप खून के स्राव के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो इस तरह के फैक्टर 1 से लेकर 13 तक की संख्या में होते हैं, उसमें ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो हीमोफीलिया के लिए जिम्मेवार हैं। इनकी कमी से ये थक्का जो मैंने आपको अभी बताया नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि खून का स्राव होता रहेगा।
2: बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत बहुत
1: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में फोन करने के लिए। डॉक्टर श्वेता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है हीमोफीलिया में।
3: देखिए, अगर फिजियोथेरेपी के बारे में बात करें तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हीमोफीलिया के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ज्वाइंट के अंदर, जोड़ों में ब्लीडिंग होती है, मांसपेशियों में भी ब्लीडिंग होती है। तो जब कभी भी इस तरह की ब्लीडिंग होती है तो उससे जो ज्वाइंट है वो इंटरनली डैमेज हो जाता है, उसके अंदर नुकसान पहुंचने लगता है। और बहुत सारे सिम्टम्स, अगर हम लक्षण की बात करें, तो जोड़ में और मांसपेशियों में वो लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, जिसके अंदर दर्द आना, सूजन होना, मांसपेशियों में थक्का बन जाना और अकड़ान या जकड़न आ जाना, इस तरह की परेशानियां हो जाती है। तो फिजियोथेरेपी का सबसे ज्यादा रोल इसके अंदर यही है कि जो जोड़ है हम उसको बचा के रखें। अगर इंटरनल इंजरी हो गई है तो आपको उसको किस तरीके से फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज या फिजियोथेरेपी के जो इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज हैं उसके आप उससे कैसे मदद ले सकते हैं, किस तरह से आपके दर्द को, सूजन को, अंदरूनी जो भी चोट पहुंची है उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन मरीजों में बार बार रिकरेंट ब्लीडिंग होती है उनके जोड़ इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, जैसे कि जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के घुटनों जैसे या कोनियों जैसे लगने लगते हैं, और एक तरह का डिफॉर्मिटी या कॉन्ट्रैक्चर भी बन जाता है जिन मरीजों में पूरी तरह से इलाज नहीं होता है, या जो इग्नोर करते हैं, या जिनको नहीं पता होता कि इलाज किस तरह से कर सकते हैं इसका, तो हम उन डिफॉर्मिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी बहुत सारे सवाल हैं अभी आपसे भी जानने को। फिलहाल अभी डॉक्टर विजय सर के पास मैं लौटना चाहूंगी कि सर हीमोफीलिया होने के क्या कारण हैं।
0: ऐसा है कि ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा अनुराधा जी, क्योंकि हीमोफीलिया अमूमन लोगों को ऐसा लगता है, ये एक मिथ है या भ्रांति है कि किसी के परिवार में हो गया और देखा कि 2-3 जनरेशन से हो रहा है तो कोई अभिशाप मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसमें क्या है कि इसमें एक आनुवंशिकता का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसमें होता यह है कि आप ऐसे समझें कि जो ये थक्का जमाने वाले तत्व को जो प्रभावी करते हैं उसको जीन कहते हैं, वो हमारे शरीर में जैसे महिलाओं में या लड़कियों में जिनका क्रोमोसोम एक्स और एक्स होता है, इसको मैं थोड़ा और सरल भाषा में समझाऊंगा कि आसानी से समझ पाएं हमारे श्रोता, तो उसमें एक्स पे ये फैक्टर 8 या 9 बनाने वाले जो तत्व हैं थक्के जमाने के लिए वो उस पे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक तरह से आपके पास डबल इंजन हो गई, एक्स और एक्स दो हो गए महिलाओं में या लड़कियों में। जो पुरुष हैं या जो बच्चे हैं उनमें सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि उनका जो आप देखेंगे एक्स और वाई होता है कॉम्पोजिशन, तो ये एक्स और वाई का मतलब है कि सिर्फ एक ही है। और मान लीजिए किसी वजह से वो यदि खराब हुआ, जीन में यदि कोई गड़बड़ी आई, तो उस वजह से यदि महिलाओं में होगा तो कम से कम एक है जो नॉर्मल बचा हुआ है। जिसकी वजह से महिलाओं में या लड़कियों में यह समस्या नहीं आती है, ना के बराबर आती है, जबकि बच्चों या

0: फिर पुरुषों में ये समस्या, जाहिर सी बात है कि एक है और ख़राब होगा तो हीमोफीलिया के इसमें शिकायत आएगी। और यही वजह है कि ये कहा जाता है कि मान लीजिए किसी में, किसी मेल ट्रांसमिट कर सकता है, वो हीमोफीलिया किसी को दे सकता है, तो लड़कियां जो हैं या जो महिलाएं हैं वो उसको कैरी करती हैं कैरियर की तरह, और वो अगले जनरेशन में पुरुषों को देती हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब भी लेते हैं इस तरह से, तो ये इसका आनुवंशिक कारण है जिसकी वजह से ये हीमोफीलिया होता है।
1: तो हीमोफीलिया क्या एक ही प्रकार का होता है डॉक्टर साहब, या कई प्रकार के होते हैं?
0: हाँ, इसमें बड़ा अच्छा सवाल है अनुराधा जी। इसमें हीमोफीलिया में दो प्रकार के होते हैं, एक फैक्टर 8 जो होता है जिसकी कमी से हीमोफीलिया ए कहलाता है, और फैक्टर 9 है जिसकी कमी को हम लोग हीमोफीलिया बी कहते हैं
1: जी।
0: और इसमें कमी भी आप ये मान के चलें, एक थोड़ा श्रोतागण को मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगा समझने के लिए कि हीमोफीलिया जो होता है ऐसा नहीं है कि फैक्टर थोड़ा भी कम हो जाए तो हीमोफीलिया हो जाएगा। इसमें यदि मान लो आपके फैक्टर होने चाहिए जितने, 100 होना चाहिए, और यदि 100 से घट के वो 1 से जब कम होगा तभी वो गंभीर प्रकार की हीमोफीलिया का सामना करेंगे। तो ये जो गंभीर किस्म है उसमें less than 1% यानी 1% से कम होना चाहिए, जो थक्के बनाने वाले तत्व हैं फैक्टर 8 या 9। उसी तरह से मध्य से जो गंभीर समस्या है सिर्फ वहीं पे रक्तस्राव की ज्यादा समस्या आती है।
1: डॉक्टर श्वेता जी के पास आना चाहूंगी। डॉक्टर श्वेता जी बताएं कि बार बार अगर हो रहा है हीमोफीलिया की जो समस्या, तो किस तरह से इसका निवारण किया जाए आपके अकॉर्डिंग?
2: जी, जैसे कि मैंने बताया था कि दो तरह के फेज रहते हैं, कभी भी चोट लगती है तो एक एक्यूट फेज होता है कि तुरंत आपको हुआ है, उसका असर लगभग 2 हफ्ते तक रहता है। तो एक्यूट फेज में जो हमारा फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट है वो एक अलग किस्म से होता है, जिसपे हम ज्यादातर मरीजों को बोलते हैं प्रोटेक्शन रखें, प्रिजर्व रखें अपने ज्वाइंट को, जिस भी ज्वाइंट पे असर आया है। इसके अलावा उस पर आप आइसिंग करें, उसको कंप्रेशन बैंडेज के साथ सपोर्ट दिया जाता है ताकि ज्वाइंट प्रोटेक्टेड फेज में रहे, और एलिवेशन यानी लिम को थोड़ा सा ऊंचाई पे रखा जाता है ताकि सूजन कम हो, क्योंकि अंदरूनी जो रक्त स्राव हो रहा है वो अंदर की मांसपेशियों पे, जोड़ पे, कार्टिलेज पे, हर चीज पे प्रेशर या असर दे रहा है। तो ऐसे केस में हमें रेस्ट सबसे ज्यादा मरीज को बोला जाता है कि वो आराम करे, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइजेस ऐसे फेज में नहीं की जाती। लेकिन अगर रिकरेंट है, बार बार हो रहा है, तो उनका वो आदि हो चुका है ना, और उनको पता है कि मेरे को ऑलरेडी पहले इस जोड़ में ये परेशानी हुई है, फिर से हुई है, उस कंडीशन में जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से अलग आते हैं। उसमें मरीज के अंदर जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज्यादा कमजोरी में चली जाती हैं एक पोजीशन में पैर रखने की वजह से, क्योंकि आपको ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, उस जोड़ को थोड़ा रेस्ट देना है, तो उस कंडीशन की वजह से भी वहां पर कुछ तरह की डिफॉर्मिटीज या ये आप समझ लें कि एक तरीके से अलग प्रकार से रखना, अंगों को रखने से थोड़ा सा वहां पर तनाव या कसाव महसूस होने लग जाता है। तो क्रॉनिक फेज की जो फिजियोथेरेपी है वो अलग किस्म से होती है, उसमें हम एक्सरसाइजेस करके मरीज को थोड़ा सा मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, जोड़ को मजबूत बनाने के लिए सलाह देते हैं। और एक चीज पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूंगी, श्रोतागण को बताना चाहूंगी कि कोई भी एक्सरसाइज हीमोफीलिया की कंडीशन में आप अपने आप से खुद से ना करें, ये बिल्कुल सलाह और परामर्श के सहारे से ही करनी है। अच्छे से आप सलाह लें किस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी है जोड़ के लिए, और वो किस प्रकार करनी है, कितनी करनी है दिन भर में, उसी तरीके से करें।
1: जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे मिली है। आगे हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
3: नमस्कार
1: जी। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं।
3: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: काजिम जी, क्या जानना चाहेंगे? हमारे दो दो विशेषज्ञ आपको सुन रहे हैं, बताएं क्या सवाल करना चाहेंगे?
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार काजिम जी।
3: डॉक्टर साहब, मुझे पूछना ये है कि जो हीमोफीलिया है इसका डायग्नोस किस तरह से किया जाता है, और फैक्टर जो 8 और 9 की आपने कमी बताई, मतलब कि दो तरह की हीमोफीलिया है, क्या दोनों के सिम्टम्स में कुछ फर्क है, दोनों में क्या अंतर है?
0: जी हाँ, ये बड़ा ही अच्छा सवाल किया है। पहले तो हम आते हैं आपके पहले सवाल पे कि ये इसमें कैसे डायग्नोसिस पे आए हम इसको, क्योंकि निवारण के लिए सबसे पहले डायग्नोसिस की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सबसे पहला तो है ये, जब मरीज में ये लक्षण आते हैं उसी से हमें ये शक पैदा होता है कि यदि किसी के परिवार में, मान लीजिए किसी जो मरीज है, छोटा बच्चा है, उसके ग्रैंड पेरेंट यानी नाना जी को ये ऐसी बीमारी थी, या और परिवार के किसी सदस्य को, उसके भाई को या किसी पीयर ग्रुप को, तो उससे हमें शक होता है कि कहीं ये खून रक्त स्राव अधिक हो रहा हो, तो उसमें हमें ये शक होता है कि ये बीमारी हो सकती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी है कि इस कंडीशन में हम कुछ जाँच करते हैं। सबसे जो है उसमें हम लोग कोगुलेशन प्रोफाइल कहते हैं, उसमें हम लोग एक प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, दो तरीके के होते हैं। मतलब थक्का, इसको मैं सरल भाषा में समझाऊं तो हम खून को जब हम लेते हैं तो ये देखते हैं कि थक्का जो है वो सही समय में जम रहा है या वो ज्यादा समय ले रहा है। इसी को साइंटिफिकली या मेडिकली हम दो टेस्ट का नाम दे रहे हैं, और यदि वो ज्यादा

0: में जम रहा है, जिसको हम पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम कहते हैं। इसका मतलब है कि संभावना हो सकती है कि ये थक्के बनाने वाले जो तत्व हैं वो उसकी कमी हो। अब इसमें कमी जो है उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, माप भी सकते हैं, और उसमें एग्जैक्ट हम परसेंटेज प्रतिशत बता सकते हैं कि वो कितनी मात्रा है। जैसे फैक्टर 8 है, वो कितनी मात्रा, अभी थोड़ी देर पहले यदि आपने अपना रेडियो ऑन किया होगा तो मैंने बताया था कि यदि 1% से नीचे है तो गंभीर किस्म का हीमोफीलिया होगा, 1 से 5 है तो मध्यम प्रकार का होगा, और यदि वो 6 से 40 है तो वो माइल्ड या हल्के किस्म का होगा। तो ये हो गया हीमोफीलिया के। अब हम इसमें डायग्नोसिस करने के बाद जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्या फैक्टर 8 और फैक्टर 9 का थोड़ा फर्क ये होता है कि उनमें लाक्षणिक दृष्टि से दोनों ही एक ही प्रकार के हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा फैक्टर 8 का जो नॉर्मली आप देखेंगे कि इनका जो है ज़्यादा, ये ज़्यादा सामान्य या ज़्यादा मतलब बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। यदि आप 100 मरीज देखें तो 70 से 80 अमूमन देखा गया है कि हीमोफीलिया ए प्रकार के होते हैं, जो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से या कमी से होता है। फैक्टर 9 वाले में यह अमूमन करीबन 20% के आसपास से होता है। तो ये लक्षण के हिसाब से सिमिलर है, लेकिन इनकी जो जो होने की जो दर है वो दोनों में अलग अलग है।
1: डॉक्टर साहब, इनके सवाल का जवाब आपने दे दिया। एक मैसेज हमारे पास आया हुआ है, मोहम्मद इम्तियाज जी जवाहर कैंप कीर्तिनगर नई दिल्ली से लिख रहे हैं कि मेरे लड़के की एज अभी 11 साल है, उसके नोज से ब्लड निकलता है। कुछ दिनों के बाद 2022 में ESI में दिखाया था, सारे टेस्ट हो गए थे, सब कुछ नॉर्मल निकलता है। डॉक्टर ने कहा कि नाक के टिश्यू कमजोर है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये फिर भी चिंतित हैं। डॉक्टर साहब, क्या इनके लिए विकल्प है?
0: ऐसा है कि इसमें जो आपने बताया कि ये पहला तो लड़का है, तो ये आप मान के चलें कि ये लड़के में यदि 11 साल के पहले, अब हमें ये नहीं पता है कि आप ये बता रहे हैं कि क्या इसको शुरू में 1 साल 2 साल या पहले कोई मतलब खून अधिक रिसाव की समस्या थी या नहीं, ये हमें आपके सवाल से पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन ये आप मान लें कि नाक से खून बहने के बहुत आयत कारण होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हीमोफीलिया ही है। और उसमें जो सबसे आम कारण है वो जैसे नोज पिकिंग, जैसे बार बार बच्चा यदि नाक को खुजा रहा है और उसमें यदि नाक में सूखापन है तो उससे भी खून कभी कभी आ सकता है। और भी आप ब्लीडिंग के या अधिक रक्त स्राव के प्लेटलेट काउंट को करना पड़ेगा, यदि हम देखेंगे क्या है उसका प्लेटलेट काउंट या क्या उसके किसी प्रकार के फंक्शन में कोई कमी आ गई है। तो ये जो रक्त स्राव है वो केवल थक्का जो जमाने वाले तत्व हैं क्लॉटिंग फैक्टर, सिर्फ उसी की कमी से नहीं होता है, बल्कि हमारे शरीर में 3 और चीज़ें हैं। जैसे प्लेटलेट जो मैंने आपको बताया होगा, यदि आपने सुना होगा कि जो पत्थर मैंने रखा था वो पत्थर प्लेटलेट को मैंने इंगित किया था, तो प्लेटलेट की कमी से या तो संख्या में कमी हो या उसके फंक्शन यानी कार्य में कमी हो, उससे भी रक्तस्राव अधिक हो सकता है। या कभी कभी छोटे छोटे जो धमनियां हैं, कैपिलरी चैनल्स हैं, वो ज़्यादा फ्रेजाइल यानी कि ज़्यादा जल्दी टूट जाती हैं, जिसकी वजह से भी जो आपको डॉक्टर साहब ने कहा है कि जल्दी कमज़ोर है, ब्रेक हो सकता है, तो उसकी वजह से भी होती हैं कैपिलरी फ्रेजिलिटी से भी।
1: ठीक, तो इनको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है?
0: नहीं, आप उसको जैसे डॉक्टर साहब ने जैसे आपको बताया है उनके फॉलोअप में रहें, और कोई ऐसी बात होगी तो ज़रूर डॉक्टर साहब उसका निदान करेंगे।
1: जी, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना शुभ नाम बताएं।
2: यस, मेरा नाम शगुफ्ता है।
1: जी शगुफ्ता, तो जी कहाँ से बोल रही हैं?
2: मैं न्यू दिल्ली आरकेपुरम से बोल रही हूँ।
1: जी बताएं।
2: तो मेरा ये सवाल है, जैसे सर ने अभी बताया कि महिलाएं जो है वो कैरियर होती हैं, तो क्या उनके अंदर भी कोई ऐसा सिम्टम दिखता है इस बीमारी की जो?
1: जी
0: नहीं, हाँ नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया है शगुफ्ता जी आपने। और इसमें जो कैरियर होते हैं उनमें यूजुअली लक्षण बहुत ही ना के बराबर और कम होते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान जरूर रखेंगे कि कभी कभार ये महिलाओं या लड़कियों में भी हीमोफीलिया के लक्षण हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो मैंने भी बताया था कि 2 X क्रोमोसोम पे थक्का जमाने वाले तत्व यानी कि जीन हैं, उसमें एक जो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है नेचर में, उसमें से एक क्रोमोसोम जो एक्स का होता है वो इनएक्टिवेट होता है, यानी कि वो यूजुअली नॉन फंक्शन होता है। मान लिया जाए कि जो 2 में से 1 ऐसा है जो कैरी कर रहा है हीमोफीलिया वाला जीन और दूसरा जो नॉर्मल होना चाहिए था वो इनएक्टिव हो जाए, तो उस केस में फिर वो लक्षण हो सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मली है लक्षण महिलाओं में कम होते हैं, जैसे अब आप लक्षण की बात करें तो जैसे माहवारी आती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है, या फिर मान लीजिए कि कोई किसी का सिजेरियन हुआ या प्रेगनेंसी के बाद की ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पोस्टपार्टम हेमरेज, तो ये लक्षण होते हैं। लेकिन अमूमन औरतें या लड़कियां इस बीमारी से कम ज़रूर इससे राहत है, और जैसे मैंने बताया एक बहुत ही रेयर केस में ही ऐसा होता है। लेकिन हाँ, लक्षण होते हैं तो यही जो कॉमन लक्षण है, और चाहे कोई नोच की ब्लीडिंग वगैरह हो या एपिस्टैक्सिस जिसको कहते हैं या माहवारी में, ज़्यादा ये वाले लक्षण ही होते हैं। ज़्यादा कोई ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग अमूमन नहीं होता है महिलाओं में, जब तक कि जैसे मैंने बताया कि एक्सेप्शन ऐसे हो।
1: तो इनके सवाल का जवाब दे दिया डॉक्टर साहब आपने। एक मैसेज हमारे पास आया हुआ है, जानवी जी मेरठ से लिख रही हैं कि मेरी उम्र 19 साल की है, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे हाथ में चोट लग गई थी करीब, इनको 7 सितंबर 2024 की बात ये बता रही हैं, और लिख रही हैं कि हाथ में क्या होता है कि जब ये कोई चीज उठाती हैं तो वो सुन्न है हाथ इनका और चीज गिर जाती है, क्या ये भी कहीं हीमोफीलिया के ही लक्षण हैं?
0: नहीं जानवी, ऐसा है, ये हीमोफीलिया के लक्षण इस तरह से नहीं हैं। आप इसको एक बार थोड़ा इवेलुएट करा लें, क्योंकि इसमें
1: एमसीबी जांच, ये लिख रहे हैं कि मैंने एमसीबी जांच भी कराई थी।
0: हाँ, उसका कुछ दिया है इन्होंने सीबीसी? मैं वही कहने वाला था।
1: नहीं, कोई जांच का डिटेल तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन
0: एनसीबी
3: एनसीबी
0: एनसीबी नर्व कंडक्शन
1: एमसीबी नर्व
0: वेलोसिटी,
1: कंडक्शन,
0: हाँ
1: ओके
0: हाँ
1: जी।
0: तो वो आप देख लें, उसमें मेरे समझ से कोई न्यूरोलॉजिकल कारण हो सकता है, लेकिन हीमोफीलिया के वजह से रक्त स्राव के अलावा और भी लक्षण होते हैं, बट जिस तरह का ये जिस तरह की समस्या ये बता रही हैं वो समस्या इसके अंदर नहीं आता है।
1: हीमोफीलिया की नहीं
0: हाँ,
1: है
0: लेकिन आप न्यूरोलॉजिस्ट से या फिर मेडिसिन से एक आप इसको करा लें दिखा करके, और कुछ जांचें करानी पड़ेंगी, और उसी के हिसाब से समस्या का समाधान होगा।
1: जी डॉक्टर श्वेता जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं कि किस तरह से इन्होंने जैसे कि लिखा है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं तो लोग चाहते हैं कि अगर डॉक्टर इलाज चल रहा है तो घर में भी कुछ ऐसा ट्रीटमेंट ले लिया जाए कि वो समस्या निदान हो जाए उसका।
3: जी, अगर आपको पता है कि आप हीमोफीलिया के पेशेंट हैं और आपको एक ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में आप चल रहे हैं, मेडिसिंस भी चल रही हैं, आपकी थेरेपीज भी चल रही हैं, तो अगर आपको बार बार इस तरह की शिकायत, जैसे कि इसके सिम्टम्स, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होंगे, आपको फिर से जोड़ में फिर से रक्तस्राव हो सकता है, उसकी वजह से आपको सिम्टम्स फिर से आ सकते हैं, फिर से आपको दर्द सूजन वाली परेशानियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को बताना चाहूंगी श्रोतागण को कि जब कभी भी जोड़ में सूजन आए हीमोफीलिया की वजह से, तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप उस पर गर्म सिकाई ना करें।
1: जी, बहुत
3: आम तौर पर ये एक है कि आस पड़ोस वाले या घर वाले बोल देते हैं कि जोड़ में सूजन है, दर्द हो रहा है, चलो गर्म पानी से सिकाई कर लो। तो आपने इस चीज़ का बिल्कुल परहेज रखना है कि इस कंडीशन में स्पेसिफिकली हीमोफीलिया के मरीजों को गर्म सिकाई या कोई भी ऐसी, जो हम भी थेरेपीज करते हैं तो हम कोई भी हीट मोडालिटी नहीं यूज करते हैं। ठंडी सिकाई आप कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे क्रायोथेरेपीज है जिससे ट्रीटमेंट होता है। घर में बेस्ट यही होगा कि मरीज ठंडी बर्फ का पैक लगा सकते हैं जिसको कोल्ड पैक बोलते हैं, या ठंडे पानी की पट्टी कर सकते हैं ताकि उनकी जो सूजन है वो कम हो जाए और अंदर खून का दौरा जो है वो उससे कंट्रोल रहता है। हीट जो है ये कंडीशन को बढ़ाएगा, तो ये चीज का बिल्कुल ख्याल रखना है कि ऐसे समय पे आप पे गर्म पानी की सिकाई बिल्कुल नहीं
1: बिल्कुल
3: करनी,
1: नहीं
3: है।
1: करनी जी। है जी, बहुत अच्छी सलाह आपने दी है, और श्रोताओं लगातार हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह की आपको अगर समस्या है तो आप अपने आप से ना उसका इलाज करें बल्कि डॉक्टरी परामर्श जरूर लें। और आज हम हीमोफीलिया पर चर्चा कर रहे हैं, आगे बहुत सारी चर्चा होगी। फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, एफएम रेनबो पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विजय जी और डॉक्टर श्वेता जी, जिनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं हीमोफीलिया के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आप दोनों से हमें मिल रही है। और अब अगला जो मेरा सवाल है वो ये है कि हीमोफीलिया पर बहुत सारी बातें आपसे जानी है, लक्षण जाने हैं और कारण क्या होते हैं। अब जानना चाहूंगी कि बचाव क्या हो सकता है इसके लिए।
2: ये ऐसा होता है कि हीमोफीलिया में जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि बड़े शुरुआती दिनों से ही गंभीर हीमोफीलिया में रक्तस्राव बढ़ जाता है। तो यदि हम शुरू से ही हीमोफीलिया को, जिसको हम प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, उस पर ध्यान दें तो ये रक्तस्राव की मात्रा और संख्या दोनों में ही कमी लाई जा सकती है। तो मैं श्रोतागण को बताना चाहूँगा कि इसमें जो प्रोफाइलैक्सिस होता है तीन किस्म का होता है। इसको हम एक कहते हैं प्रारंभिक या प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस। इसका ये लक्ष्य होता है कि बच्चे को जितनी जल्दी हो सकता है, 3 साल से पहले ही अमूमन, और एक ज्वाइंट, जो मान लीजिए नी ज्वाइंट है या एंकल है, एड़ी के पास है, उसमें ब्लीडिंग जो बड़े वाले किसी ज्वाइंट में हो उसमें हो, सेकेंड ब्लीडिंग के पहले यदि हम शुरू कर दें, ये जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 है उसका बच्चे को देना शुरू करें, तो इससे संभावना काफ़ी कम हो जाती है कि हम उसमें ब्लीडिंग हो। दूसरी चीज़ है जिसको हम सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस

0: कहते हैं, उसका उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग तो हो गई दो या दो से ज़्यादा भी ज्वाइंट में, लेकिन उसमें ज्वाइंट के डैमेज होने का जो संभावना है, अभी तक ज्वाइंट नहीं हुआ है डैमेज, लेकिन उसमें इस किसी प्रकार का कोई आगे कोई डैमेज ना हो, इसके लिए सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस करते हैं। और लास्ट में जो टर्सियरी इसको कहते हैं, तृतीयक प्रोफाइलेक्सिस, उसमें ये होता है कि ज्वाइंट भी थोड़ा सा डैमेज हो गया हो लेकिन उसमें फर्दर कोई डैमेज इतनी कम से कम मात्रा में, उसको हम टर्सियरी प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। तो ये तीन प्रकार से जब हम करें तो बच्चे को इससे फ़ायदा ये होता है कि आगे कोई ब्लीडिंग होती नहीं, या होती है तो ज्वाइंट बचा होता है, ये इसका फायदा है। जी
1: डॉक्टर साहब, ये बात भी सुनने में आती है कि अगर लगातार चिकित्सा चल रही है, कंटिन्यूसली अगर उसको चिकित्सा दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आके आगे चलकर ये प्रभावी नहीं भी होती है, इसकी क्या वजह है?
0: इसके पहले अनुराधा जी, मैं एक छोटा सा श्रोतागण को थोड़ा बताना चाहूँगा, जो चिकित्सा है वो उसमें हम ऐसा करते हैं, जब उस पर हम आएंगे इसके बाद वाले इसमें कि कैसे हम उसमें चिकित्सा कर रहे हैं और प्रभाव कम हो रहा है। पहले तो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 हम इसको डोज को कैलकुलेट किया जाता है, और कैलकुलेट करने के बाद यूजुअली 2 पर वीक दिया जाता है फैक्टर 8 वाले में, और एक बार से काम हो जाता है इनके फैक्टर 9 वाले, यानी कि हीमोफीलिया बी में। इसकी वजह है, अब ये आप कह सकते हैं ए और बी में अलग क्यों लग रहा है, क्योंकि ए में जो इनका हाफ लाइफ है फैक्टर 8 का वो 8 से 12 घंटे है, और इनका जो हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि किसी भी थक्का जमाने वाले तत्व का प्रभाव आधा कितने समय में हो रहा है, यानी कि जब वो 8 घंटे में हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा वो। और यदि फैक्टर 9 का प्रभाव 18 से 24 घंटे में कम हो रहा है तो कम संख्या में लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है जो इसका इलाज किया जाता है, एक तो बच्चे हैं और ऊपर से हमें इसमें आई भी देना पड़ता है, यानी कि नसों में देना पड़ता है, और बच्चे के लिए बड़ा पेनफुल होता है
1: जी।
0: तो इसीलिए ये चीज़ जो है हमें ध्यान रखें कि इस चीज़ को हम थोड़ा सा इलाज में जो है, अब नए प्रकार के जो आ रहे हैं फैक्टर 8 रिकॉम्बिनेंट वाले, उसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि उसमें हाफ लाइफ, हमने इसको हम एक्सटेंडेड हाफ लाइफ कहते हैं, ईएचएल टाइप के जो फैक्टर होते हैं उसमें जो हम देते हैं वो नंबर ऑफ टाइम्स कम देना पड़ रहा है पर वीक के हिसाब से, इससे बच्चों को सुविधा हो रही है, और बल्कि नए वाले में तो और भी सुविधा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं आपके सवाल पे कि फैक्टर 8 फैक्टर 9 किसी को दिया जा रहा है
1: जी,
0: लेकिन उसका प्रभाव देखा जा रहा है कि कम हो रहा है 4-6 महीने या 2-4 साल के बाद, तो उसकी वजह ये होती है कि श्रोतागण आपने सुना होगा कि जब हम कोई एंटीजन आता है तो हम शरीर में एंटीबॉडी बनता है, तो उसी प्रकार से फैक्टर 8 एक एंटीजन की तरह काम करता है, और वो एंटीजन जब शरीर के अंदर जाएगा तो वो एक एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, और वो एंटीबॉडी फैक्टर 8 के प्रभाव को, जो थक्का जमाने वाला फैक्टर है जिसको दिया जा रहा है बच्चे को, उसका प्रभाव कम करता जाएगा, इसी को हम कहते हैं इनहिबिटर्स। तो ये जो इनहिबिटर है उसकी वजह से जो आपने सवाल पूछा है वो मैं श्रोतागण को इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये वजह है कि कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों में भी कुछ लोगों में ये देखा गया है कि वो उसका प्रभाव कम है। उसको पता लगाने का सबसे बड़ा आसान तरीका है, और आम भाषा में मैं कहूँ कि मान लीजिए किसी को इलाज कर रहे थे और उसमें खून का स्राव बंद हो गया था, लेकिन अचानक देखा गया खून का स्राव अब थोड़ा सा नहीं रुक रहा है या ज़्यादा टाइम लग रहा है, कुछ नए जगह में खून का स्राव शुरू हो गया, तो ये एक संभावना है कि आपके जो इलाज चल रहे हैं वो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो गया है।
1: तो डॉक्टर साहब, इसको कैसे रोका जाए, ये आपसे जरूर जानेंगे, कैसे इस तरीके को रोका जाए?
0: हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि अब ये जाहिर सी बात है कि अब जब सवाल आया है कि तब ऐसा करें क्या, इनहिबिटर आ गया तो क्या अब इलाज में कोई परेशानी आ गई? कोई परेशानी नहीं है, उसके लिए अब हमारे पास नए तरीके के दवाएं हैं और उन दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब मैं इसको समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए आपको ये समझाऊं कि आप ये मान के चले जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं, एक बाईं तरफ के पलड़े में मान लीजिए फैक्टर 8 की कमी है या 9 की कमी है, तो जिसका इसके वजह से क्या हो गया कि दूसरा पलड़ा जो है, एक पलड़ा जो है फैक्टर 8 और 9 थक्का जमा रहा है
1: जी।
0: इसको आप ऐसे समझे श्रोतागण, और दूसरा जो पलड़ा है वो थक्के को रोकना, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी हैं, आपको जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले पाइप के उदाहरण में, तो जो मान लीजिए थक्का को रोक रहा है, एक थक्का जमा रहा है, थक्का जमाने वाला तत्व तो कम हो गया फैक्टर 8-9, तो 2 तरीके हैं, या तो हम फैक्टर 8 या 9 को दें बाहर से जो हम दे रहे थे अभी तक लेकिन बन गया इनहिबिटर, तो अब करें क्या? तो उसका एक तरीका ये होता है कि उसको हम लोग कहते हैं कि इसको हम बाईपास कर देते हैं, मतलब फैक्टर 8 की जगह पे कोई ऐसा तत्व हम दें जो कि बगैर फैक्टर 8 फैक्टर 9 के भी वो जाकर के थक्का जमाने की प्रक्रिया में सहायक हो जाए। तो ये जो बाईपासिंग एजेंट हैं कुछ इस तरह के होते हैं, उनको हम लोग

0: करते हैं इस्तेमाल। दूसरा ये है कि इनहिबिटर्स के केस में बहुत सारी नई दवाएं आ गई हैं, एमीसुजुमैब है, कॉन्सुजुमैब है, तो उनका जो तरीका होता है वो मैं आगे फिर से आम भाषा में ही बताऊंगा कि मैंने बताया आपको कि दूसरा पलड़ा, तो दूसरा पलड़ा काम क्या था, जो मैंने बताया कि वो थक्के को कम करने का काम कर रहा है। मान लीजिए इस जो थक्के को कम करने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर कहलाता है या एंटीथ्रोम्बिन है, इनको हम यदि कम कर दें तो एक तरह से जो तराजू का पलड़ा जो बाईं तरफ की वजह से थोड़ा सा ऊपर की चला गया था, और तो दाईं तरफ से हम बैलेंस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 को दे करके भी ठीक किया जा सकता है, उसको हम बाईपास करके भी ठीक कर सकते हैं, या उसके जो विपरीत दिशा वाले जो पदार्थ हैं जो उसको कंट्रोल करने हैं उसको हम बदलाव ला करके भी हम इसको इनहिबिटर वाले कंडीशन को ठीक कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मैसेज आया हुआ है हरियाणा से रामधारी अवाना जी का, लिख रहे हैं कि आई वांट टू नो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ हीमोफीलिया। मुझे लगता है कि इन्होंने थोड़ी देर से रेडियो सुनना शुरू किया है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस इफ वी अफेक्टेड द डिजीज, तो ये जानना चाहते हैं।
0: वैसे तो नहीं, ठीक है, इनका सवाल है, हमें जवाब देना ही है क्योंकि ये बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे हमने शुरू में इसकी बात करी थी, मैं इसको फिर से इसके की पॉइंट्स बता देता हूँ। रामधारी जी, इसमें दो तत्व होते हैं, एक माता एक पिता से आता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम। आपने शायद ही पूछा है कि होता कैसे है, तो इसमें जो तत्व हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया वाले जो फैक्टर बनाने वाले होते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि महिलाओं में दो हैं जीन जो ये तत्व बनाते हैं, और इसमें यदि एक की कमी हो गई तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन पुरुषों में एक भी कम हो गया, चूंकि पुरुषों का जो क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई होता है, तो हीमोफीलिया हो जाएगा। तो ये तो बात ये हो गई, और उनका दूसरा सवाल का हिस्सा क्या था, कैसे उसको
1: प्रिकॉशन।
0: ओके, हाँ, तो इसमें देखिए ऐसा है कि जब भी पता लगे कि हीमोफीलिया है तो आप तीन चार, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, कभी भी कोई भी प्रोसीजर हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जैसे मान लीजिए कि कोई डेंटल ही एक्सट्रैक्शन कराना है, निकालना है दांत, कोई भी प्रोसीजर करना है, तो उसके पहले एक विशेषज्ञ की राय लेनी जरूरी है। छोटी भी चोट है उसको इग्नोर नहीं करना है। कुछ प्रोसीजर होते हैं जो रिलीजियस होते हैं, जैसे सरकमसीजन वगैरह है, वो सबको भी ध्यान में रखना है कि ठीक से करें और प्रिकॉशन के साथ करें। छोटी छोटी चीज़ों को भी इग्नोर ना करें, ओरल हाइजीन को ठीक रखना होगा। और कभी भी ऐसे व्यक्ति जिनको हीमोफीलिया है, हम हमेशा कहते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट, कहने का मतलब ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें एक दूसरे के साथ टच ना हो, वैसे स्पोर्ट्स को खेलें, जैसे स्विमिंग करें, तैर सकते हैं वो, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, ये प्रिकॉशन लेना जरूरी होगा बच्चे को, क्योंकि कोई भी ऐसा जो खेल है जैसे कबड्डी है जिसमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा है, क्रिकेट है, उसमें थोड़ा सा उसको अवॉइड करें।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर बात करें कि हीमोफीलिया से ग्रस्त लोगों का खान पान कैसा होना चाहिए, कुछ खास सावधानियां खान पान में?
0: नहीं, ऐसा कोई इस बीमारी का खाने से किसी प्रकार का कोई मतलब ऐसा नहीं है, बल्कि एक चीज जरूर है कि आहार तो संतुलित सबको लेना है, इनको भी लेना चाहिए, और अमूमन चूंकि ब्लड लॉस होता है तो उसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि हीमोग्लोबिन कम हो जाए और रिप्लेनिश ना हो, तो आयरन की कमी हो सकती है, उस चीज का ध्यान रखना होगा।
1: जी बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर आपसे मिल रही है, आप दोनों विशेषज्ञों से। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, आगे की चर्चा इसके बाद।

0: श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया के बारे में और दो विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर विजय जी हैं और डॉक्टर श्वेता जी। श्वेता जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मेरा सवाल ये है कि हीमोफीलिया से ग्रस्त कोई है तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज होगी?
1: हीमोफीलिया अगर किसी भी मरीज को है और अगर उसके अंदर वो सिम्टम्स आ रहे हैं, पहले भी मैं इस बारे में बता चुकी हूँ कि किस तरह की हिदायतें हमें लेनी है घर में, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो अगर सपोज करें नी में किसी को हीमोफीलिया का असर आ रहा है, उसको दर्द सूजन की परेशानी है, तो जो एक्सरसाइज है इसके अंदर आपको आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि बिना मूवमेंट के मांसपेशियों को कसाव देना, इस तरह की एक्सरसाइज मरीज को बताई जाती है। मरीज ये एक्सरसाइज सीख सकता है किसी भी नज़दीक के अस्पताल में या क्लिनिक पे सेंटर पे जाके, फिर उस तरह की एक्सरसाइजेज आप घर में उसको करें। एक्सरसाइज की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लगभग 10 से 15 कॉन्ट्रैक्शन दिन में 2 बार या 3 बार आप कर सकते हो। इसमें हमें ज्यादा तेजी से नहीं चलना है क्योंकि एक इसका की यही है कि स्लो और स्टेडी, मतलब जितना आप ठहराव के साथ और आराम के साथ अपने जोड़ की मूवमेंट करें उतना जल्दी आपकी रिकवरी होगी, क्योंकि ज्यादा करने से अंदर की जो मांसपेशियां हैं या जो जॉइंट है उनके ऊपर स्ट्रेस आता है और परेशानी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और साथ साथ जो एक्सरसाइज की हम जैसे बात कर रहे हैं कि आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, और दूसरा ध्यान में रखना है कि जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, अगर आप घुटनों की, कोहनी की या एंकल की, टखनों की कोई भी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो पेन फ्री रेंज में, यानी कि दर्द के बिना वाले मूवमेंट के साथ होनी चाहिए। आमतौर पर यह थ्योरी होती है, हम कहते हैं ना कि कहीं जकड़न आ गई है या कहीं अकड़न आ गई है तो नो पेन नो गेन, लेकिन यहां पर कंडीशन बिल्कुल अलग है। यहां पर नो गेन विद पेन, अगर आपका पेन हो रहा है दैट मीन्स आप कंडीशन को खराब कर रहे हैं, आप उससे गेन नहीं करेंगे। तो बिल्कुल पेन फ्री मूवमेंट करना है, बहुत ही स्लो और स्टेडी करना है, आराम आराम से करना है, और साथ साथ जैसे बताया कि बर्फ की सिकाई जरूर करनी है।
0: अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाए
1: जी
0: तो कैसे क्योर होगा?
1: कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो ऐसे मरीजों में देखा गया है उसमें है कि जैसे हमने जॉइंट डैमेज की, कि जोड़ के डैमेज की हमने बात करी, कि तो जॉइंट डैमेज बहुत जल्दी हो जाता है, जो आर्थराइटिक चेंजेस हैं, जो गठिये की परेशानी है, ऐसे मरीजों में बहुत जल्दी आ जाती है। बोन के अंदर जो घनित्व है, कैल्शियम की जो डेंसिटी है बोन की, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो इस तरह की परेशानी है, कमजोरी, थकान भी

0: परहेज यही रखना है कि ये कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हो, और अगर किसी वजह से मरीज के अंदर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं तो हम सीरियल स्प्लिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक तरह का स्प्लिंट एक दिया जाता है मरीज को जो धीरे धीरे एंगल्ड होता है, यानी कि अगर हमारा घुटना जो है वो मुड़ा हुआ है और सीधा नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो हम उसको एक एंगल पर स्प्लिंट देंगे, कुछ समय उस पोजिशन में रखेंगे, फिर धीरे धीरे उसका रेंज हम बढ़ाते हैं ताकि घुटना सीधा हो सके, ताकि जोड़ पे असर भी ना आए, प्रेशर भी ना आए, और मरीज जो है अपना नॉर्मल मूवमेंट फिर से गेन कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम या रोल है कि मरीज एक नॉर्मल लाइफ जिए, अच्छी हेल्दी लाइफ जिए और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इम्प्रूव करे।
1: जी डॉक्टर विजय सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि जो चीजें होती हैं हम कहीं ना कहीं अंधविश्वास से ग्रसित हो जाते हैं, वैसे ही इस बीमारी को अगर माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं अभिशाप है, तो क्या ये सच है या कोई वैज्ञानिक कारण है?
2: नहीं नहीं एकदम, ये मैं सभी श्रोतागण को बताना चाहूंगा कि इसका कोई किसी अभिशाप से, किसी पूर्व जन्म के पाप या कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से भ्रांति है। यह एक बीमारी है जो आनुवंशिकता के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें आनुवंशिक कारण है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था पहले भी, और जिसको यदि हम सही ढंग से इसकी डायग्नोसिस जल्दी कर लें और उस पर हम कार्य करें कि इसमें प्रोफाइल एक्सिस दें और मैनेजमेंट सही ढंग से करें, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और मरीज आसानी से क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ, जिसमें जैसे मैंने बताया थोड़े से प्रिकॉशन लेके नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को कर सकता है, कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर सकता है स्पोर्ट्स वाले को, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और इसका किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। तो कृपया इस बात को दिमाग से निकाल दें, चाहे किसी भी परिवार में हो। कभी कभी लोग कहते हैं कि ऐसा इसी को क्यों हुआ, बाकी लोगों को क्यों नहीं हुआ, तो उसके कारण भी मैंने बता दिए हैं कि वजह जो है वो एक्स लिंक्ड होने की वजह से होता है, इसीलिए लड़कों में होता है, लड़कियों में ये कम होता है, तो ये इसका कोई ऐसा कारण नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, क्या ये इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है?
2: देखिए ऐसा है कि जड़ से खत्म करने वाली जो बात है उस पर कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। जीन थेरेपी, ये दरअसल एक जीन की बीमारी है, तो इस पर ट्रायल चल रहे हैं, जीन थेरेपी पे भी काम हो रहा है, लेकिन दरअसल अभी ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमारे जो अभी इलाज जो हो रहा है और जितने भी ये, जैसे मैं एक चीज़ विषय पर और बोलूँगा, प्रोफाइलेक्सिस के अलावा ऑन डिमांड ट्रीटमेंट जैसे हमारे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आरएमएल हॉस्पिटल में जी। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है यदि मरीज सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करे और जैसे उसको बताया जा रहा है वो करता है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। रेगुलर बेसिस पे उसको टच में रहना है, जीन थेरेपी एक पॉसिबिलिटी जरूर है, लेकिन अब उस पर काम थोड़ा होना बाकी है
1: जी। डॉक्टर साहब, बाकी सवाल एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद
2: जी।

0: डॉक्टर साहब, लगातार आपसे हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हीमोफीलिया से बचा जाए। हमारे पास मैसेज आया हुआ है, संजय जोशी जी पुणे से लिख रहे हैं कि माय फ्रस्टेड ऑपरेशन परफॉर्म्ड फ्यू डेज आफ्टर ब्लड क्लॉट्स डेवलप्ड इन ब्लैडर, यूरिन ब्लॉक्ड 7 आवर्स, डॉक्टर सेज ड्यू टू ब्लड थिनर टेबलेट्स डेवलपिंग क्लॉट्स, व्हाट रीजन?
1: ये तो दरअसल क्या है कि जितने भी, जैसे मैंने बताया था, क्लॉट बनने के लिए जैसे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उसी प्रकार से प्लेटलेट भी उतने ही जरूरी हैं। और ये एंटी प्लेटलेट्स जितने भी दवाएं हैं या ऐसी दवाएं जो इसी पूरे क्लॉटिंग सिस्टम पे प्रभाव डालती हैं, उसकी वजह से भी माइल्ड ब्लीडिंग या क्लॉट्स वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें इसका हीमोफीलिया से एज सच कोई लेना देना नहीं है। और एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा कि ये दोनों चीज़ें कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे कोविड वाले के समय में हुआ था कि कई बारी हमें दोनों चीज़ें देनी पड़ती हैं, कि एक तरफ तो क्लॉटिंग फैक्टर भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ एंटी क्लॉटिंग, फॉर एग्जांपल लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन भी, तो वो हम किसी एक्सपर्ट के प्रेजेंस में करते हैं। यहाँ पे हीमोफीलिया का इससे कोई लेना देना नहीं है, जो हुआ है उसको आप यूरोलॉजिस्ट से संपर्क में रहें और उसका वो सही उपाय बताएंगे।
0: जी डॉक्टर श्वेता जी, कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर?
2: इस विषय में सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी कि जागरूकता बहुत जरूरी है। आमतौर पर जैसे आपने पूछा कि एक तरीका अभिशाप कई बार माँ बाप अपने बच्चे के लिए समझते हैं, तो सही समय पर इसकी जांच कराएं। अगर किसी भी तरह के लक्षण बचपन से ही नजर आ रहे हैं तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज हो रहा है, आप अपने बच्चे को लेके जाएं, इलाज कराएं। सही समय पर इसका डायग्नोसिस अगर हो जाता है तो एक सही थेरेपी की तरफ आप जाएंगे। अगर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी कि 1960 में जहां इस कंडीशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो 11 साल के करीब ही थी, और अब देखें कि भारतवर्ष में बढ़ते बढ़ते, क्योंकि इतनी थेरेपीज, होलिस्टिक अप्रोचेज आ गई हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है, हमारी फिजियोथेरेपी है, और भी बहुत सारी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेज आ गई हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो 60 साल से ऊपर हो गई है। ऐसा मरीज बहुत अच्छे से अपनी लाइफ, जिंदगी बिल्कुल सही तरीके से, आमतौर पर जैसे हम लोग जी रहे हैं, इस तरीके से जी पा रहे हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: एकदम सही, जैसे डॉक्टर श्वेता ने बताया है, इसमें लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हम एक्चुअली जोर देते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मैं फिर से सारे श्रोतागण को बताना चाहूँगा कि यह कोई अभिशाप नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया, और इसमें किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी सरकारी अस्पतालों में या गैर सरकारी अस्पतालों में ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। NGOs अभी हैं काफ़ी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और हमें इसकी सबसे पहले, और यही थीम भी हमारे इस आज के कार्यक्रम का, कि डायग्नोसिस सबसे पहले होना जरूरी है, और डायग्नोसिस होने के बाद इस पे हमें सही काम करने की ज़रूरत है। और अर्ली फेज से यदि हम प्रोफाइलेक्सिस लेते रहें, मैनेजमेंट सही रहे, एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हो, तो और जितने भी प्रिकॉशंस बताए हैं सारे चिकित्सकों ने, खास करके कि नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, जैसे मैंने पहले बताया, ये सब चीज़ों का ध्यान रखने से पूरी आप क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रॉपर ढंग से एडल्ट लाइफ जी सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।
0: जी बहुत ही सुंदर। और श्रोताओं, मुझे लगता है कि अब कोई भी कोर कसर बाकी नहीं है। हमारे दोनों विशेषज्ञों ने आपको बिल्कुल सारी सटीक जानकारी दे दी है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप इस कॉल में जुड़ सकते हैं। हम निरंतर हर रोज हमारा रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम होता है और आपकी हर समस्या का समाधान लेकर हम हाजिर होते हैं। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ दोनों विशेषज्ञ जो थे वो थे डॉक्टर विजय कुमार जी, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड हीमोटोलॉजी यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी ABVIMS एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर श्वेता शर्मा जी, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर RML हॉस्पिटल नई दिल्ली। आप दोनों विशेषज्ञों ने इतनी खूबसूरत और इतनी महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, जितना अच्छा आपने इसको पूरी तरह से कोऑर्डिनेट किया, और सारे श्रोतागण को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बिल्कुल, नमस्कार। धन्यवाद, और श्रोताओं आपको हम तीनों की ओर से नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। असम और पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता बरकरार रहने के संकेत हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 148 सीटों के जादुई आंकड़े की आवश्यकता होगी। विधानसभा में 294 सीटों में से 292 के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 194 सीटों पर आगे चल रही है, एक पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस 91 सीटों पर आगे चल रही है और उसने एक सीट जीत ली है। भारतीय कांग्रेस पार्टी और AJUP दो-दो सीटों पर आगे है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा AISF को एक एक सीट पर बढ़त प्राप्त है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से 39 के परिणाम मिले हैं। भाजपा ने 31 सीटें जीती हैं, उसके सहयोगी AGP को दो और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 5 सीट मिली हैं। AIUDF एक सीट मिली है। शेष 87 सीटों पर मिले रुझानों के अनुसार भाजपा 50, AGP 6, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 5, कांग्रेस 21, AIUDF 1, रायजोर दल 2 और अन्य 2 सीट पर आगे हैं। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालू कबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को जोहार सीट पर हरा दिया है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और अब बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र से, जो इस समय भाजपा मुख्यालय में मौजूद हैं। जी दीपेंद्र, पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा का शानदार प्रदर्शन हो रहा है, कैसा माहौल है मुख्यालय में?
1: जी लवलीन, पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जो है जश्न का माहौल है और पार्टी कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। खासतौर पे बंगाल की जो झालमुड़ी है और वहाँ की रसगुल्ला जो बहुत ही फेमस है, एक दूसरे को खिलाकर जश्न मना रहे हैं। बता दूं कि BJP पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और वहीं लगातार तीसरी बार असम में भी सरकार बनेगी। शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुँचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके स्वागत के लिए जो है पार्टी मुख्यालय में तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के अलावा जो SPG की टीम है वो यहां पहुंच चुकी है और मुख्यालय में आसपास जो है सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त कड़ी कर दी गई है और पार्टी कार्यकर्ता खास तौर पे मुख्यालय के अंदर और बाहर काफी संख्या में यहां मौजूद हैं और वो जश्न मना रहे हैं। जी लवलीन,
0: धन्यवाद जानकारी के लिए दीपेंद्र। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वितरी कड़गम TVK के इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। TVK ने विधानसभा की 234 सीटों में से 101 पर बढ़त बना ली है और एक पर वो आगे है। राज्य में विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार है, कांग्रेस एक पे बढ़त है, चार उसने जीती है, AIADMK 50 बढ़त, PMK 5, DMDMK 2, IUML 2 और भाजपा 2। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 64 के परिणाम मिल गए हैं। कांग्रेस ने 28 सीटें जीती हैं, 36 पे वो आगे चल रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 14 सीटें जीती हैं, 11 पर आगे चल रही है। IUML ने अब तक 7 सीटें जीती हैं, 15 पर आगे चल रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 पर आगे चल रही है। केरल कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं और 3 पर आगे है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड में एक एक सीट जीती है और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में एक एक सीट पर आगे है। कांग्रेस ने कर्नाटक में एक सीट जीती है, जबकि महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP दूसरे उपचुनाव में आगे चल रही है। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 में से 21 सीटों के रुझान और परिणाम मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे है और 2 सीटें जीत ली हैं। AINRC ने 9 सीटें जीत ली हैं, एक पर बढ़त बनाई है। कांग्रेस ने एक सीट जीती है, DMK ने एक जीती है और एक पर आगे बढ़ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो 102.6 एफएम रेनबो और मैं हूं ज्योतिका, आपके साथ लेकर आई हूं एक फ्रेश एक एनर्जेटिक शो अल्फा जेन। ये शो है उन यंग माइंड्स के लिए जो सपने देखते हैं और उन्हें सच करने की हिम्मत भी रखते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में है एक यंग अचीवर परमजोत कौर, जो अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रही हैं। वेलकम टू द शो परमजोत।
2: थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। यू नो जब मैं यहाँ पे आ रही थी, इट फेल्ट लाइक सच अ वाओ मोमेंट ऑनेस्टली, सीइंग द बिल्डिंग एंड सीइंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। एंड यस, हेलो दिल्ली, आई एम परमजोत एंड आई एम हाइप्ड टू बी हेयर एट AIR FM रेनबो। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसके बारे में व्हेन आई वाज कमिंग आई रोट अबाउट इट इन माय जर्नल एंड एज आई एम सीइंग इट, इट इज ऑल मैनिफेस्टेशंस कमिंग ट्रू।
1: तो बस वही होता है ना, जब आप मैनिफेस्ट करते हो किसी चीज को और जब वो आपकी You can see this coming true, तो उसका कोई जवाब ही नहीं होता। आज हम बात करेंगे उनकी जर्नी की, सपनों की और उन चैलेंजेस की जो इस सफर का हिस्सा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक टू द शो. आप सुन रहे हैं अल्फा जैन. मैं हूं ज्योतिका आपके साथ, और आज मेरे साथ स्टूडियो में है बहुत ही क्यूट, बहुत ही एनर्जेटिक परमजोत कौर. परमजोत, सबसे पहले तो बहुत बहुत बहुत सारी बधाइयां आपको. ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है लाइफ का, तो मैं जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि ये क्या स्टेप है, और उसके बाद मेरा अगला सवाल आएगा आपकी तरफ.
1: अब्रॉड जाना एंड पूरा का पूरा मेरा जो बचपन से इट वॉज काइंड ऑफ अ ड्रीम फॉर मी. आई हैव बिन रेज्ड बाय अ सिंगल मदर एंड टू बी ऑनेस्ट इट ये मेरे ना कंधों पे एक इनविजिबल सा प्रेशर डाल देता है टू एस इन लाइफ, बट आई थिंक दैट इज समथिंग दैट मोटिवेट्स मी, मेरे को आगे बढ़ाता है. एंड मेरा बाहर

0: जाना इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एक चीज कि बाहर जाना है, बस बाहर जाना है. इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज, इट्स अबाउट कि मेरे को एक्सपोजर कितना मिलता है. तो मैंने वो बचपन से ही सोच लिया था एंड मेरी फील्ड इज गोइंग टू बी मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स और स्टैट्स साथ में.
1: वाओ,
0: या सो इट वाज नॉट इन द प्लान टू बी ऑनेस्ट. इफ यू वुड हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन 3-4 years बैक, मैं कहती मुझे कभी साइंस लेनी है, कभी मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी है. बट ऑनेस्टली मेरे से पूछोगे तो मुझे जितना ही स्टेम के सब्जेक्ट से प्यार है हमारे साइंस के मैथ्स के, उतना ही मुझे ह्यूमैनिटीज से है. मतलब आप नहीं निकाल सकते मेरे अंदर सोशल साइंस भी. अभी भी आते वक्त व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग बाय सीपी, आई वाज जस्ट रिकॉलिंग ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री एकदम से कि यहाँ इतना सब कुछ हो रखा है और किसी को पता भी नहीं है, हमारे डिस्कस भी नहीं होता.
1: दिल्ली के अंदर से दिल्ली भी तो नहीं निकलती.
0: वही एग्जैक्टली, यू नो अब मैं बाहर जा रही हूँ ना तो दिल्ली से एक अलग अटैचमेंट है. इवन मेरे फ्रेंड्स अभी अंडरग्रेड के लिए हाफ ऑफ देम आर गोइंग टू इधर पुणे, हाफ ऑफ देम going to south and it feels like ki wo ab delhi sare ghoom rahe hain. Matlab abhi bhi jaise main metro se aa rahi thi, I have my old delhi playlist jisko main sunte aati hu proper 2010-2012 vibe lene ke liye, so that main jab yahan se jaau ek bari delhi ki feel leke jaau. And ek aur cheez, delhi jaisi ho apni hi hai and delhi ka street food is unbeatable, that has to be there.
1: Wo to hai, desh ke bahar jaake jo hamara ye desh hai wo hamare dil se aur hamare taste se kabhi bhi idhar udhar nahi ho सकता. तो ये है परमजोत कौर मेरे साथ स्टूडियो में और हम इनकी कहानी आगे भी जारी रखेंगे. लेकिन इन्हीं की कहानी से जुड़ती हुई बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर आप अपनी स्टडीज कर रहे हैं और अपनी लाइफ में करियर ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज्ड हैं, सो जस्ट लाइक परमजोत ने कहा कि 2-3 साल पहले उनको खुद नहीं पता था कि उनको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, किस तरफ जाना है, करियर कौन सा रूट पकड़ेगा. सो कभी भी लेट नहीं होता है. टेक योर टाइम, आराम से सोचिए, आज नहीं तो कल. आप अपनी हॉबीज पे फोकस करिए, आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है और आपकी नैया देखो बड़े प्यार से पार हो जाएगी.

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
7: ठीक है।
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
5: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं अल्फा जेन विद मी ज्योतिका, और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परमजोत कौर. परमजोत, कभी भी कोई भी डिसीजन लेना आसान नहीं होता, और स्पेशली घर वालों को छोड़कर अब्रॉड जाके पढ़ाई करना. ऑफकोर्स एक एक्साइटमेंट होती है इस बात में, लेकिन थोड़ा सा कम्फर्ट जोन से बाहर जाना आसान नहीं होता. आपने जब डिसाइड किया कि आप अब्रॉड जाएंगी, उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके सामने?
1: Finances, without any doubt, finances was one of the biggest challenges. But अभी आपने कहा ना जैसे कि abroad जाना and everything. To be honest, अब आप मेरे से पूछोगे ना, मेरे को ऐसे आफत लग रही है कि मेरे को कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, मेरे को खाना नहीं मिलेगा, मेरे को मम्मा के बिना, मेरे को मम्मा के राजमा चावल नहीं मिलेंगे. तो these are the things that I'll miss. Of course,
0: mamma. कितना समय अभी आपके जाने में बाहर?
1: I'll probably head to Melbourne July 15 के आसपास.
0: तो अभी July आने में बहुत समय है, तो थोड़ी cooking सीख लो. बहुत
1: आती है कुकिंग, बट अगेन क्या कहते हैं वो, होता है ना, मम्मी के हाथ का खाना तो मम्मी के हाथ का खाना
0: है. इसमें तो कोई दो राय नहीं है, माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का होता है.
1: एग्जैक्टली. तो हाँ, एज फार एज हम चैलेंजेस की बात करें, फाइनेंसिस वॉज अगेन वन ऑफ द मतलब प्रोमिनेंट रीजन मेरे लिए रहा है. हर जगह, मतलब सारी कंट्रीज, अभी भी आई हैव गॉट ऑफर्स फ्रॉम US, बट आई हैव टू लीव इसीलिए क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट इज समथिंग जो मेरे परिवार वाले नहीं अफोर्ड कर सकते. बट आई एम वेरी प्राउड कि आई ट्राइड, ट्राई करना इज द बिगेस्ट.
0: एग्जैक्टली. जब सामने से ऑफर लेटर्स आते हैं, एक्सेप्टेंस आती है, तो यू हैव दैट प्राउड फीलिंग कि मेरा एटलीस्ट हो गया.
1: एग्जैक्टली. लास्ट ईयर मेरा एक येल यूनिवर्सिटी में से, येल यंग ग्लोबल स्कॉलर्स में से, आई ऑल्सो गॉट उधर फुल स्कॉलरशिप्स टू अटेंड एक विज्ञान का प्रोग्राम था वो पूरा का पूरा. एंड बट ट्रैवल कॉस्ट आपको पता है कितनी होती है US की, तो आई हैड टू लीव. देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज ऐसे, बट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड कि एटलीस्ट आई गॉट लेटर्स फ्रॉम देम. दैट इज समथिंग कि एफर्ट डालो हर जगह.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर आप भी प्लान करते हैं, सोचते हैं कि मुझे भी पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, कहीं भी बाहर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको देश छोड़कर बाहर जाना है. अगर आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पुणे जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं. ये तो दो जो जगहें मेरे दिमाग में आई मैंने आपसे शेयर करी. लेकिन जैसे अभी मैं परमजोत से कह रही थी कि आप कुकिंग सीख लो, तो मेरा ये मतलब नहीं है कि वो लड़की हैं तो आप कुकिंग सीखिए. अगर आप लड़के भी हैं तो आपको इतनी बेसिक कुकिंग तो आनी ही चाहिए कि आप अपना पेट अच्छे से भर सकें. हर बार नूडल्स बनाकर या सिर्फ क्या कहते हैं कुछ भी बॉयल कर और इंस्टेंट फूड खाने से थोड़ी काम चलेगा, क्योंकि पढ़ाई तो तभी हो पाएगी ना जब सेहत होगी और आपका दिमाग चलेगा.
1: एग्जैक्टली. एंड दिस ब्रिंग्स मी बैक टू एक चीज़ जो आपने बोली फेमिनिज्म वाली, जिसका मैंने स्टॉल रखा था मेरी फ्रेंड के साथ. हम दोनों ने मिलके बेसिकली जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन में एक फेमिनिज्म पे स्टॉल सेट किया था. बिकॉज आजकल ना हमारी 10th की पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में कुछ लोग फेमिनिज्म का मतलब अभी तक समझ नहीं पाए हैं. उसका मतलब होता है हर जेंडर के लिए इक्वल सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स, ना कि उसमें फेमिनिन वर्ड है तो वुमेन के लिए. एंड इट वॉज समथिंग really heartfelt to us, because I mean all of us women have been facing बहुत सारे issues we don't speak openly about. And yeah, it felt very I mean something जो मेरे दिल के काफी करीब है. And वो काफी successful रहा था. हमने एक sticky note, आई मीन आई एम पर्सनली एक इंट्रोवर्ट सी बच्ची जो अपनी जर्नल में लिखती रहती है, तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेट्रो पे इतने कम्यूटर्स आते हैं तो हम उनके लिए स्टिकी नोट वॉल क्यों ना सेट करें. तो हमने उनके लिए एक स्टिकी नोट वॉल बनाई थी, एक स्पिन द व्हील गेम बनाई थी, एंड इट वॉज सो एंगेजिंग. उसमें छोटे छोटे बच्चे भी अपनी मम्मी के साथ आ रहे थे एंड वो इनकरेज कर रहे थे. आई हर्ड सो मेनी ओपिनियंस फ्रॉम मदर्स, स्पेशली ग्रैंड मदर्स, एंड इट फेल्ट सच अ यूनिक एक्सपीरियंस टू नो इतना सब.
0: दैट्स सो नाइस. अगर आप कुछ करना चाहें, दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना चाहें, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे मैं करने वाली हूं अगले ट्रैक के साथ.

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अल्फा जैन और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परमजोत कौर। परमजोत, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, फैमिली का सपोर्ट इस जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट रहा? मतलब जैसे आपने डिसीजन लिया कि आप बाहर जाना चाहती हैं, पढ़ाई करना चाहती हैं, तो मम्मी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या था, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया?
1: मम्मी हैज़ ऑलवेज बिन सो सपोर्टिव। आई रिमेंबर 7th में ना, जब लॉकडाउन लगा था नया, कुछ भी नहीं आता था मेरे को, इतना पता भी नहीं था क्या करना है अभी लाइफ का आगे सब कुछ। बट बचपन से लेकर अब तक मम्मा ने ही बस सिखाया है कि अपनी लाइफ खुद बनानी है, अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी है, एंड उन्हीं की वजह से आई थिंक आई हैव मेड माई ओन आइडेंटिटी। इतने सारे मेरे अचीवमेंट्स, आई जस्ट ओ दिस क्रेडिट टू हर पर्सनली।
0: ऑफ कोर्स, मेरा अगला सवाल यही आ रहा था कि ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली, एंड यू राइटली सेड ये सिर्फ और सिर्फ सारा क्रेडिट आपकी मम्मा को जाता है, आपने उन्हें ही देखा मेहनत करते हुए, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाते हुए, एंड आई एम श्योर दैट्स हाउ यू ऑल्सो गॉट दिस कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ।
1: एग्जैक्टली। सो मम्मा बचपन से मेरे को कहती थी, मम्मा को ना जैसे अब होता है ना कि पेरेंट्स व्हेन दे कांट डू समथिंग दे ऑलवेज वांट देयर किड्स टू बी द बेस्ट टू, मतलब उनके लिए कमी नहीं छोड़ना। मैंने मम्मा को देखा है कभी कभी वो अपने कपड़े खुद छोड़ देती है, हमारे लिए पहले ले देती है। तो ऐसे ही मतलब 7th में जब मैं कॉम्पिटिशन्स में घुसी थी, मेरे को याद है पार्टिसिपेशन आए धीरे धीरे, देन एकदम से आगे बढ़ गई, पता भी नहीं चला, और आज यहाँ पहुँच गई। एंड इसके जितने कॉम्पिटिशन्स हुए, पैसे भी लगे कुछ में, कुछ सपोर्ट के लिए, मम्मा ने कभी मना नहीं किया। शी वॉज ऑलवेज लाइक तेरे को, बिकॉज एक स्टिग्मा है अभी, अगर आप आर्ट्स लोगे, लोग अभी भी कहते हैं कि आर्ट्स तो सिर्फ नलायक लोग लेते हैं, लेकिन मेरी मम्मी वॉज ऑलवेज सेड कि तूने जो लेना है तू ले, मैं तेरे साथ हूँ। तो अभी भी
0: कोई नालायक नहीं होता, ह्यूमैनिटीज हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, आपकी कॉमर्स हो, कोई भी फील्ड हो, दिल लगा के करिए, कोई नालायक नहीं होता, मतलब
1: स्टिग्मा
0: है। माय गॉड,
1: एग्जैक्टली।
0: तो अगर आपकी फैमिली की बात करी जाए, तो जैसे आपने बताया मुझे अभी थोड़ी देर पहले, आपका छोटा भाई भी है, उसको जब पता चला कि दीदी अब चली जाएंगी, तो क्या रिएक्शन था?
1: वो ऑनेस्टली ये 4 साल से बोलते बोलते ऐसे पता नहीं चलता ना, क्योंकि ऐसे लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है,
0: एंड बूम अचानक से वो टाइम आ जाता है।
1: नाउ इट्स जस्ट 1.5 मंथ्स लेफ्ट ऑलमोस्ट, एंड माई ब्रदर इज सेइंग कि 1 साल और रुक जा, गैप ईयर।

0: ले, कोई बात नहीं, मेरे साथ रहे. एंड आई एम गोइंग टू मिस हिम द मोस्ट, बिकॉज चाहे कितना लड़ ले, कितना झगड़ ले, इज ऑलवेज लाइक छोटा सा मेरा प्यारा सा भाई.
1: तो बस यही तो होती है भाई बहन की नोकझोंक, आप माने या ना माने, मम्मी भी अपना जो दिल और अपना जिगरा है ना बड़ा स्ट्रांग बना के आपको बाहर भेज रही हैं, क्योंकि वो आपको पढ़ देना चाहती हैं, आपको ग्रो करते हुए देखना चाहती हैं, जिस वजह से उनको दिल से और हमेशा गर्व होगा आपके ऊपर.
0: आई एम श्योर एंड आई एब्सोल्युटली मैं कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ूंगी टू बी माई बेस्ट वर्जन एंड टू गिव हर द बेस्ट लाइफ पॉसिबल.
1: आई एम प्रीटी मच श्योर.

0: से और आपने भी ये सपना कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा होगा कि पढ़ाई कर कर मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं और अपनी लाइफ में कुछ बन सकूं, कुछ कर सकूं। अल्फा जेन सुन रहे हैं आप विद मी ज्योतिका, और आज मेरे साथ मौजूद हैं परमजोत कौर, जो अभी फिलहाल दिल्ली से अपनी 12th करके और बाहर जा रही हैं, अब्रॉड जा रही हैं अपनी पढ़ाई करने। परमजोत, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे अभी हमारी बात चली रही थी कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, सपना रखते हैं, लेकिन उनको कोई प्रोसेस कभी कभी नहीं समझ आता कि कहाँ से शुरुआत करें, कितने सालों का ये प्रोसेस है, तो एक या दो टिप्स अगर आप देना चाहें तो क्या देंगी?
1: ओके, पहली बात तो आई थिंक खुद से ढूंढना सबसे बड़ी चीज़ है। यू सिल्वर स्पून कोई नहीं देगा आपको आके कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करेगा हाथ में। नहीं, मैंने भी खुद से शुरू किया था, एंड मोस्ट ऑफ़ द पीपल जिनको बाहर जाना है उनको भी खुद से ही करना पड़ेगा। गूगल पे जाओ, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो अपने फील्ड से रिलेटेड, नॉट पेड वंस। पेड वंस आर समथिंग कि लाइक आप खुद ही पैसे दे के खरीद रहे हो, दैट्स नॉट वर्थ इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे ऐसे कॉम्पिटिशन्स बहुत खुलते हैं, एंड अगर आप US टारगेट कर रहे हो पर्सनली, तो आपको ऐसेज पे बहुत फोकस करना पड़ता है, आपको अपनी स्टोरी पे कि हाउ आर यू एज अ पर्सन। आप एक इंटरव्यू एस्पेक्ट होता है ना, वो उनका एसे का एस्पेक्ट होता है कि बच्चा अपने आप को कितना मतलब जानता है, वो अपना लिख सके, वो अपनी पूरे बारे में अपने एनेक्डोट्स हो गए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो गए। तो हाँ, एक एसेस पे फोकस करना US के लिए, एंड देन सेकेंडली अगर फाइनेंशियल इज़ अ वेरी बिग कंसर्न, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल SAT एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना पड़ता है US जाने के लिए, एंड वो ना बाहर स्पेन हो गया, इटली हो गया, इवन NUS सिंगापुर हो गया, हर जगह, और इवन इंडिया में जो आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर एक्सेप्टिंग SATs, एंड बीइंग फ्रैंकली ऑनेस्ट, ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, 12,000 कॉस्ट करता है, बट फॉर द पीपल हु कैनॉट अफोर्ड दिस, हु आर फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड, बडी फॉर स्टडी नाम की एक स्कॉलरशिप आती है, जहाँ पे 90% और 50% वाउचर कोड्स है फॉर दैट पेपर। एंड अगर आपकी फैमिली 8 लाख से बिलो कमाती है तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, एंड नहीं तो गवर्नमेंट बहुत फंड्स निकालती है, यू कैन ऑलवेज कोल्ड ईमेल। कोल्ड ईमेलिंग इज़ द की विच लैंडेड मी हियर एज वेल।
0: दैट्स वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं जो चाहते हैं, क्योंकि कई बार प्रोसेस नहीं समझ आता, कंट्रीज नहीं समझ आती हैं, तो जैसे परमजोत ने कहा, आप अपना इंटरनेट खोलिए, आप अपनी पसंदीदा जगह के बारे में सर्च करिए, वहाँ क्या है क्या नहीं है, आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या क्या कॉलेजेस हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, आपको अपना होमवर्क तो करना पड़ेगा, तभी आप कहीं पर लैंड हो सकते हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी परम, व्हेन यू डिसाइड टू गो आउट, तो जैसे आपने बताया कि आप अपनी ह्यूमैनिटीज़ को भी बड़ा पसंद करती हैं, लेकिन आप जा साइंस की तरफ रहेंगे, तो ये दो बोर्ड्स में आप जाएंगी या क्या क्या स्टोरी है?
1: नहीं, मैं दो बोर्ड्स में 110% जाऊंगी, नॉट गोना लाई। सी, एक ना एस्पेक्ट होता है फाइनेंशियल वाला और एक होता है अपनी खुशी वाला। खुशी मेरी साइंस में भी है, उतनी ही खुशी है, बट इट्स लाइक मेरे को दुनिया के लिए भी कुछ करना है, एंड मैंने सोचा हुआ है, आप इतना पढ़ के जब रियल लाइफ में कुछ कर नहीं सकते तो वो पढ़ाई मेरे लिए बेकार है, दैट इज़ माई ओपिनियन। मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी भी आई हैव अप्लाइड टू फेलोशिप्स जो होती हैं, जैसे एक अभी है एशिया फाउंडेशन, गर्ल अप यूनाइटेड नेशंस, जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ पर्सनली, वो जैसे यूनिसेफ हो गया, यूनाइटेड नेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि ह्यूमन कनेक्टेडनेस ग्रो हो सके। इट्स समथिंग मेरा बिलीफ कि अगर आपको दो चीज़ें भी साथ में करनी है ना, आप टाइम बनाओ, लेकिन आप कर सकते हो। ये ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं कर सकते, वो आप पहले ही सोच रहे हो, आप करके तो देखो, हो तो सब जाएगा।
0: वेरी ट्रू, तो वही बात है, आप अपना करियर बिल्कुल बनाइए, किसी भी फील्ड में बनाइए, लेकिन अगर आपकी रुचि कहें, हॉबी कहें, अगर आपको लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है या कुछ भी और पसंद है, तो वो आप साइड बाय साइड कर सकते हैं, किसी ने मना नहीं करा।
1: एग्जैक्टली, एंड इट्स माय ड्रीम टू बी ऑनेस्ट कि मैं लिखते लिखते, साइंस तो करनी है, लेकिन मेरा एक बचपन से ड्रीम रहा है, मुझे एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बनना है और पुलित्जर प्राइज ज़रूर लेना है, आई होप हो जाए एक बार ही। एंड हाँ, तो कभी मत छोड़ो जो चाहते हो, इवन आर्ट कितनी बढ़िया चीज़ है। जो लोग कहते हैं आर्ट में पैसा नहीं है, जो आर्ट में ये नहीं है, अपने साथ अपने लिए करो, दैट इज समथिंग आप अपने आप को खुश करने के लिए कर सकते हो, कभी मत छोड़ो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: अल्फा जेन सुन रहे हैं आप विद मी ज्योतिका और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परमजोत कौर। परमजोत, हम आपसे बात कर रहे हैं आपकी जर्नी के बारे में, आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, लेकिन हर जर्नी में एक मोमेंट आता है जब सेल्फ डाउट होता है। आपके साथ भी आई एम श्योर ये मोमेंट आया होगा कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मुझे जाना चाहिए। उस वक्त आपने अपने आप को कैसे संभाला, कैसे हैंडल किया और वो क्या चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया दैट यस आई कैन डू इट?
1: ओके, आई थिंक मैं अपने 7th से शुरू करती हूँ, जब मेरे पास कुछ नहीं था बेसिकली। एंड टू बी ऑनेस्ट, शायद तब मेरे पास सबसे ज़्यादा सेल्फ बिलीव था, आई एम नॉट गोना लाइक, कि मैं कर सकती हूँ। एक तो ना, आई फील लाइक मेरे साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर सबसे पहले ढूंढो आप चाहते क्या हो। और लॉकडाउन वॉज अ फेज फॉर मी जिसमें मैंने अपने आप को ढूंढा। आई रियली कनेक्टेड विद थिंग्स दैट आई लव। आई फाउंड लव इन राइटिंग, आई फाउंड लव इन आर्ट, डांसिंग स्पेशली। तो मेरे लिए पर्सनली खुद से रिकनेक्ट करना वॉज द बिगेस्ट सेल्फ बिलीफ एंड मतलब सेल्फ डाउट को किल करने वाली चीज़। बट देन आई रिमेम्बर जब 9th में दोबारा स्कूल खुले, एक होता है ना कि बच्चे दिखते हैं कि मैं इनके जैसी नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं। ऑनेस्टली अभी मैं आप सब से बात कर पा रही हूँ पब्लिक स्पीकिंग पे, मैं एक ऐसी बच्ची थी जो ब्लैक कलर का मास्क लगा के 9th के पूरे साल, 10th के मिड तक, जिसने मास्क नहीं उतारा था, जिसने, मेरे को याद है मेरा इंग्लिश में देर यूज़ टू बी अ प्ले, मैकबेथ प्ले, एंड माई टीचर टोल्ड अस कि आप करो, जिसने मास्क हटा के इतनी मुश्किल से बोला था। एंड आई फील सो प्राउड ऑफ मी कि मैंने ट्राई किया अगेन, मेरे कम्फर्ट से बाहर आई मैं। आज मैं बोल नहीं पाती, मेरे को भी पता है, एंड इट टुक मी 4 years टू रीच हियर। सो हाँ, सेल्फ डाउट डस कम, इट विल ऑलवेज कम, अभी तक आता है। बट एक कोट होता है ना कि द बेस्ट वे टू कंपेयर योरसेल्फ इज विद योर यस्टरडे सेल्फ, तो वही करो।
0: वेल सेड, वेरी वेल सेड। अब जैसे परमजोत कह रही थी कि मैं कुछ समय पहले अगर आप मुझसे मिलते तो मैं हिचक रही थी, लेकिन ट्रस्ट मी, अभी ये जो मेरे सामने बैठी हैं ये नहीं हिचक रही हैं, इनके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल है और इनके दिल में जो आ रहा है बिंदास होकर ही आपसे बात कर रही हैं। एंड आई एम श्योर ये मोटिवेशन आप तक कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँच रही है।

0: इतने बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं, उनके लिए तैयारी करते हैं, तो एक्साइटमेंट तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ टंकर आती है नर्वसनेस, वो भी कूट कूट कर। आज इस मोमेंट पर मैं पूछना चाहूँगी मेरी गेस्ट परमजोत कौर से कि वो बाहर जा रही हैं, इतना बड़ा स्टेप ले रही हैं लाइफ में, अब्रॉड जाके पढ़ाई करना, इट्स अ वेरी बिग स्टेप इन योर लाइफ। इस मोमेंट पर आप कैसा फील कर रही हैं? अगर आपसे कोई छोटा है या आपके हम उम्र के लोग अभी आपको सुन रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी?
1: ऑनेस्टली मैं ना ऑनेस्टली डरी हुई हूँ, नॉट गोना लाइ। जितनी एक्साइटेड आज से 4 साल पहले थी, 5 साल पहले बाहर जाने के लिए, आई एम इक्वली स्केयर्ड। बिकॉज मेरे लिए ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द कंपनी दैट यू गेट और द फ्रेंड्स दैट यू मेक। बिकॉज अगर कंपनी गलत है देन सर्टेनली वो अफेक्ट करता है आप जितना बोलोगे। तो मेरे को एक बहुत डोमिनेंट गोल है मेरा कि वहाँ जाके आई हैव टू मेक फ्रेंड्स सिलेक्टिवली एंड जिनका गोल हो ग्रोथ। बिकॉज I can't risk अपने आप की पूरी लाइफ आगे based on this, and I'm fine alone to be honest as well. ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, but हाँ एक ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी फैक्टर है। एक्साइटेड जिसके लिए मैं हूँ वो है मेरा डॉर्म डेकोर, क्योंकि मेरे को ना इस बार ही अपना रूम मिल रहा है पहली बार, एंड
0: wow.
1: मैंने इतने पोस्टर्स सोचे हुए हैं। एक वो होता है ना जैसे 2000s के ज़माने में जब अपना रूम होता था, तो मैंने पूरी वैसी थीम रखी है सजाने के लिए, तो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
0: तो बस हमेशा अपने दिल की सुनते रहिए, और दिल ये भी कहता है परमजोत, जब आप बाहर जाएंगी तो जो दिल से दिल का कनेक्शन बनेगा वही आपका दोस्त बनेगा।

0: कॉलेज की बात हो, यारों की बात हो, और दिल चाहता है आपके जहन में ना आए, ऐसा हो थोड़ी सकता है ना भाई। वेलकम बैक टू द शो। परमजोत मेरे साथ हैं और वो हमसे बातें कर रही हैं अपने सपनों की, अपनी जर्नी की। परमजोत, आप जैसे यंग अचीवर्स बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं, आई एम रियली श्योर अबाउट इट। तो आज के लिसनर्स के लिए जो शायद अभी भी थोड़े कन्फ्यूज हों अपने गोल्स को लेकर, आप एक लाइन में वो मैसेज क्या है जो आप उनको देना चाहेंगी?
1: आई हैव दिस कोट, एकदम से याद आया आपने बोला एक लाइन में, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द नीडल इन द हेस्टैक, बर्न द हेस्टैक। सो
0: इसको सरल भाषा में अगर आप समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे?
1: अगर एक सुई है एक हेस्टैक में, तो हेस्टैक जला दो लेकिन सुई तो ढूंढ लो। तो जो हो सके अपना बेस्ट दो, बाकी भगवान पे छोड़ दो एंड ट्राई करना। आई मीन मेरा भी सर्टेन टारगेट वाज नॉट ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे मैं जा रही हूँ, इट वाज सम डिफरेंट कंट्री, सम डिफरेंट यूनिवर्सिटी, सम डिफरेंट ड्रीम आई हैव ऑलवेज लिव्ड फॉर 4 ईयर्स। बट एक वो होता है ना कि आप, मैंने ट्राई किया, मैं यहाँ तक खुद से पहुँची, मेरे को अपना अप्रिसिएशन तो लेना चाहिए उसके लिए। तो ट्राई करो, बाकी सब छोड़ दो भगवान पे, एंड ट्रस्ट मी, ट्राई करना विल लीड यू टू सो मेनी थिंग्स, जैसे कि अगेन आज के
0: नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुँचेंगे, है ना भाई?

0: जैसे हम बात कर रहे थे अभी आपसे कि अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। जैसे परमजोत अभी आप क्या कह रही थी हमें कि मैंने सोचा तो था कि मैं कहीं और जाऊंगी, तो अगर आप कहीं और के लिए ट्राई करते हैं लेकिन वहां आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो यू शुड नेवर बी डिसहार्टेड। व्हाई? बिकॉज लाइफ ने, गॉड ने आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर रखा हुआ है।
1: एग्जैक्टली।

0: दोस्तों ये थी परमजोत कौर की इंस्पायरिंग जर्नी, एक यंग माइंड जो सपने देखता भी है और उन्हें सच करने की हिम्मत भी रखता है। आज का अल्फा जैन का मैसेज सिंपल है, ड्रीम बिग, स्टे फोकस्ड एंड ट्रस्ट योर जर्नी। मैं हूँ ज्योतिका, लेती हूँ आपसे इजाजत। थैंक यू सो मच परमजोत फॉर कमिंग ऑन द शो। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी आप?
1: थैंक यू सो मच पहली बार तो मुझे इनवाइट करने के लिए, बिकॉज मैं मेरे को पता है जब मेरे पास कॉल आया था आई वाज इक्वली ग्रेटफुल एंड मैं कूद रही थी टू बी ऑनेस्ट अपने कमरे में। एंड आज की जो बात करी ना, इट काइंड ऑफ मेड मी फील कि मैंने मतलब कुछ चीज़ें मेरे को भी नहीं पता थी अपने बारे में एंड आज बात करते करते इतनी सारी चीज़ें खुद ही पता चल गई। एंड बिग थैंक्स टू यू एंड होल टीम।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें करी हमने, ऐसी ही इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशंस के साथ। एक बार हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप ग्रोइंग। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। असम और पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता बरकरार रहने के संकेत हैं। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के इतिहास रचने की ओर है और केरलम में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता के बाद पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 15 साल से सत्ता में मौजूद तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा की 294 सीटों में से 293 के रुझान मिल गए हैं। भाजपा 192 सीटों पर आगे है और 6 सीट पर जीत कर निर्णायक बढ़त बना ली है। तृणमूल कांग्रेस 88 सीटों पर आगे चल रही है, 1 सीट जीत ली है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीट जीत ली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य दलों को 4 सीटों पर बढ़त प्राप्त है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं। असम में सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 126 सीटों में से भाजपा और सहयोगी दलों ने 70 सीटें जीती हैं और 30 पर आगे हैं। कांग्रेस और सहयोगी दलों को 2 सीटें मिली हैं, 20 पर वो आगे हैं। अन्य को 2 सीटों पर जीत मिली है और 2 पर आगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को जोरहाट सीट पर हरा दिया है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस समय भाजपा मुख्यालय में हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा मौजूद हैं। अनुपम, पश्चिम बंगाल और असम में पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है, पार्टी मुख्यालय में कैसा माहौल है?
1: जी लवलीन, पार्टी मुख्यालय में आनंद और उत्साह का माहौल है और जहां पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रंग लगाकर और सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहां उत्साह का माहौल है। और प्रधानमंत्री 6:30 बजे यहाँ, प्रधानमंत्री जी का यहाँ 6:30 बजे पहुंचने का अनुमान है और उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्रीगण और भाजपा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहेंगे।
0: धन्यवाद अनुपम इस जानकारी के लिए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। टीवी के ने 234 सीटों में से 108 पर आगे है और 7 सीट जीत ली हैं। डीएमके और सहयोगी दलों को 7 सीटें मिली हैं, 64 पर आगे है। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 3 सीट जीत चुके हैं और 51 पर आगे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा IUML सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चे को करारी शिकस्त देने की ओर अग्रसर

है। 140 सीटों में से कांग्रेस ने 40 सीटें जीती हैं और 23 सीटों पर आगे है। कांग्रेस के सहयोगी आईयूएमएल ने 9 सीटें जीती हैं और वो 13 सीटों पर आगे है। सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अब तक 20 सीटें जीती हैं, 6 सीटों पर आगे है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं, 3 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं केरल कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं, 1 सीट पर आगे है। भाजपा ने 1 सीट जीती है, 2 पर आगे है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन धर्मदम ने 11,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की सभी 30 सीटों के रुझान उपलब्ध हैं। एनडीए गठबंधन ने 12 सीटें जीत ली हैं, 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। एआईएनआरसी ने 9 सीटें जीत ली हैं, 2 पर उसकी बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीतनी है और 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस ने 1 सीट जीती है, डीएमके ने 1 सीट हासिल की है और 4 सीटों पर उसकी बढ़त है। निर्दलीय और अन्य उम्मीदवारों ने 3 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात, त्रिपुरा और नागालैंड में 1-1 सीट जीत ली है और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में 1-1 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक में 1 सीट जीती है, जबकि महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दूसरे उपचुनाव में आगे चल रही है। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मुंबई अंक तालिका में 9वें और लखनऊ 10वें स्थान पर है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए मुकाबला प्रतियोगिता में बने रहने की नजर से महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बहुत सारे मन में सवाल हैं इस शाम को लेकर। एक्चुअली हुआ यूं कि आज बहुत प्यारी पंक्तियां पढ़ी और जब पढ़ी तो मन किया कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं और उस पंक्तियों में सवाल है। तो सुनिए सवाल, और किससे है ये सवाल? श्याम से। श्याम, एक बात बताओ, रंग सारे कैसे पहन लेती हो तुम एक साथ एक ही लिबास में? खुशबू सारे फूलों की कैसे महका देती हो तुम एक साथ एक ही गहरी सांस में? गीत सारे पंछियों के कैसे गुनगुना देती हो तुम एक साथ एक ही मुस्कुराहट में? है ना, कितने प्यारे सवाल। और वाकई कई बार हम पूछना चाहते हैं ना कि शाम तुम ऐसी कैसी हो, संध्या क्या सोचकर तुम आती हो और क्या सोचकर तुम जाती हो। तो भाई, इसी प्यारी संध्या में आप सबका स्वागत है आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, कार्यक्रम सिटी लाइट्स। मैं हूँ मिस ब्राइट, नाम है मीना जैन और मैं हूँ अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन। और हाँ, जिन्होंने भी ये पंक्तियां लिखी उनको दिल से धन्यवाद।

तो क्यों ना इस शायराना अंदाज को बरकरार रखें और चले इंडिया हैबिटेट सेंटर, क्योंकि वहां लगी है मदरली स्नोज, एक फोटोग्राफिक मेडिटेशन एग्जीबिशन ऑन नंदा देवी एंड अन्नपूर्णा। ओ माय गॉड, स्नो कैप माउंटेन्स क्या लगेंगे कमाल के। भाई आज से शुरू हुई है और 8 मई तक चलने वाली है कन्वेंशन सेंटर फॉर इंडिया हैबिटेट सेंटर। देखने का समय है सुबह 10:30 बजे से 7:30 बजे तक शाम को। गॉड, सोच के ठंडक सी महसूस हो रही है। और अगर थोड़ा सा चेंज चाहते हैं तो उसी के बगल में है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, वहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिंदु डॉट सीरीज की एग्जीबिशन लगी है सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। भाई वाह, कमाल की बात है। और फिर अगर लगे कि आज एग्जीबिशंस तो हो चुकी हैं, हम देख चुके, तो क्यों ना फिर चले लोदी गार्डन या फिर सुंदर नर्सरी पार्क, वैसे डियर पार्क भी जा सकते हैं, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस भी हैं, नेहरू पार्क, स्वर्ण जयंती पार्क या फिर तालकटोरा गार्डन, क्योंकि शाम बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे मौके मिस नहीं करने चाहिए अगर पॉसिबल हो तो।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: FM रेनबो पर कार्यक्रम चल रहा है सिटी लाइट्स। ये होता है जब एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाती है आपसे मिलने की, तो जल्दबाजी में फिर कुछ भी निकल जाता है। एनीवेज, आकाशवाणी FM रेनबो पर कार्यक्रम है सिटी लाइट्स और सिटी में लाइट्स थोड़ी ही देर में ऑन हो जाएंगी, लेकिन अभी एक बात है जो बहुत अच्छी है और वो ये है कि मौसम विभाग का कहना है कि आज शाम कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो सकती है, ठंडी हवाएं भी चल सकती है। अभी ठंडी हवाएं तो वैसे कल से चल रही हैं और कहीं कहीं आई एम श्योर बूंदाबांदी भी हुई होगी। फिर ऐसे मौसम में तो कहीं घूमना तो बनता ही है ना, तो जैसे कहा था वैसा फिर आज कर ही लीजिए। देखिए, माना 6 तारीख के बाद फिर गर्मी भीषण हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, तो तब की तब देखेंगे ना। आज अभी इस वक्त जो मिल रहा है, लेट अस बी थैंकफुल फॉर दैट।

ए भाई जरा देख के चलो आगे ही नहीं, हाँ फिलहाल तो आगे ही देखना है, और वो भी क्या चीज कि आपने अपना गाड़ी का जो फास्ट टैग का जो स्टिकर है वो कहाँ लगाया है। अगर सही जगह नहीं लगाया तो फिर आप तो गए। कहने का अर्थ ये है कि अगर टोल टैक्स काउंटर पे आपका जो सेंसर है वो ये फास्ट टैग का स्टिकर नहीं पढ़ पाया तो फिर दो बातें हो सकती हैं आपके साथ। पहली ये कि आपका फास्ट टैग कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो सकता है, यस। एंड नंबर टू, और अगर ऐसा हो गया तो फिर आपको टोल टैक्स डबल देना पड़ेगा। जी हाँ, ये तो आप जानते ही हैं कि जिनके पास भी फास्टैग नहीं है उन्हें टोल डबल देना पड़ता है। आप क्या लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो है ना टैक्स का जो स्टिकर है फास्टैग का वो हाथ में दिखा के निकल जाते हैं, या फिर कई बार तो डैशबोर्ड में रख के ही निकल जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा मालूम नहीं, टैक्स से कैसे बच सकते हो। और फिर एक अलग अलग गाड़ियों में एक ही फास्टैग भी चला लेते हैं कि चलो उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब ये सब नहीं चल पाएगा। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं NHI के, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स टू बी फॉलोड, यस, कि आपको अपना फास्टैग का स्टिकर बिल्कुल सही जगह गाड़ी के अंदर ऐसे चिपकाना है कि जब आप टोल टैक्स पर पहुंचे तो वहां लगा सेंसर तुरंत उसको पढ़ ले और अपने आप पैसे कट जाए और आप आगे चले। ऐसा करने पर जो पीछे आपके ड्राइवर्स हैं उन्हें भी आसानी होती है, जो अंदर खिड़की पर बैठे हैं उन्हें भी आसानी होती है, और सबसे बड़ी आसानी आपको होती है कि बिना किसी देर के आप तुरंत अपने रास्ते पर आगे जा सकते हैं। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कितने लोगों को परेशानी होती है, और सबसे ज्यादा तो आपको। इसलिए ध्यान रखिए एंड रूल्स टू बी फॉलोड प्रॉपरली, नहीं तो फिर वाकई जिंदगी एक पहेली बन जाएगी। सोचते रहेंगे कि ये हुआ क्या।

जी हाँ, समय आ गया है पहेलियां सॉल्व करने का, क्योंकि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही तरीके से नहीं मान रहे हैं। अगर हम मान ले तो फिर हमारे गाड़ी का चालान होगा ही नहीं, और जब चालान ही नहीं होगा तो फिर 75 दिन में भरने वाली स्थिति आएगी ही नहीं। तो भाई ऐसा है, आप ज़रा संभल जाइए। अब जो नए सिस्टम्स हैं वो पूरी तरह से डिजिटल है, समयबद्ध है और जवाबदेही वाले हैं। तो फिर अगर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया और चालान हो गया तो फिर मैक्सिमम 75 डेज के अंदर अंदर आपको चालान भरना ही होगा, और अगर अदालत में क्वेश्चन करना है इस चालान को तो भी आपको चालान की आधी राशि तो जमा करनी ही पड़ेगी। एक बात और, अगर एक साल में 5 या उससे ऊपर चालान हो गए तो फिर आप गंभीर श्रेणी में आ जाएंगे, और फिर हो सकता है ऐसे में डिपेंडिंग कि आपके किस किस बात के लिए चालान हुए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। सो एक एडवाइस दी जा रही है सारे ही ड्राइवर्स को कि बहुत ज़रूरी है अपने लाइसेंस और RC पर मोबाइल नंबर और घर का पता बिल्कुल सही सही दर्ज करवा ले, नहीं तो फिर आगे जाके परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सिस्टम ये होगा कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से मैसेज और नोटिस के ज़रिए आपको उल्लंघन का चालान भेजा जाएगा। ऑनलाइन चालान 3 दिन के अंदर और फिजिकल नोटिस 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा। चालान मिलने के बाद 45 डेज के अंदर इसे जमा करें, या फिर आपके पास जो भी साक्ष्य है उसके साथ शिकायत निवारण अधिकारी के सामने आप क्वेश्चन कर सकते हैं या चुनौती दे सकते हैं। अगर 45 डेज के अंदर ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है तो ये माना जाएगा कि आपने चालान को एक्सेप्ट कर लिया है, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपना चालान भर लेंगे, कंपल्सरी होगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन किया है और

और आपकी जो उसकी वो जो क्वेश्चन है चुनौती, उसको खारिज कर दिया गया, तो भी आपको 30 दिनों के अंदर अंदर चालान भरना है। और अगर मान लीजिए कि आपकी जो चुनौती है उसको खारिज कर दिया और आप संतुष्ट नहीं और आप कोर्ट जाना चाहते हैं, तो भी आपको पहले 50% चालान की जो राशि है, जो फाइन का अमाउंट है, वो आपको जमा करना है। उसके बाद ही आप ये मामला कोर्ट तक लेकर जा सकते हैं। सारी घूम फिर के बात ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, हमारे दोस्त हैं, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। तो अगर हम इनको फॉलो कर लेंगे तो इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल गोल गोल जलेबी की तरह ये सारी बातें लगती हैं। तो बस बहुत ज़रूरी है, सिंपल सी बात, जस्ट फॉलो द रूल्स, है ना, वेरी सिंपल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: FM रेनबो पर कार्यक्रम सिटी लाइट्स, मैं हूं मिस ब्राइट, नाम है मीना जैन और मैं हूं अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन। और जाते जाते एक गाना बजाते बजाते कुछ कहना चाहती हूं, तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी।

दोस्तों आज है 4 मई और 4 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। जी हाँ, इंटरनेशनल फायर फाइटर डेज हर साल 4 मई को अग्निशामकों की बहादुरी और बलिदान को सम्मानित करता है। इसकी शुरुआत 1999 में शुरू हुई थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 5 अग्निशामकों की मृत्यु के बाद उनकी याद में इसे शुरू किया गया था। और आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में 1944 में बॉम्बे बंदरगाह पर 66 अग्निशामकों की याद में 14 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। वैसे आज है 4 मई और आज का दिन समर्पित है फायर फाइटर्स के लिए, तो उन बहादुर अग्निशामकों के सम्मान में जो हमारी जान और संपत्ति की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, हमारा फर्ज है उन्हें धन्यवाद देना और उनके योगदान को सराहना, याद करना और उन सबको श्रद्धांजलि देना जिनका कार्य करते हुए उनकी मृत्यु हुई।

दोस्तों, भारत में हर साल 4 मई को कोयला खनिक दिवस यानी कि कोल माइनर्स डे भी मनाया जाता है। ये राष्ट्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले खनिकों के अथक प्रयासों और बलिदानों को सम्मानित करने का दिन है। ये दिन स्पेशली उनकी क्या बोलूँ ना, कठिन परिश्रम को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। उनके समर्पण, उनके जोखिम भरी परिस्थितियों और उनके बहुमूल्य योगदान को हम सलाम करते हैं। हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो इतनी खतरनाक परिस्थितियों में भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं। ये दिन और भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि खनिकों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट मिले, सेफ एनवायरनमेंट में सेफली किस तरह काम करना है, ये भी एक जागरूकता बढ़ाने का दिन है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये दिन हमें याद दिलाता है कि विकास के पहिए को घुमाने में कोयला खनिकों का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। तो दिल से हम सब की तरफ से उन सभी कोल माइनर्स को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।

दोस्तों, आप और हम मिलकर ये क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल भी अलर्ट नहीं हो रहे हैं, केयरफुल नहीं हो रहे हैं। आप सोचिए, जनवरी में आग लगने की कुल 1300 घटनाएं हुई, उसके बाद फरवरी में कुछ 2000 से ऊपर, मार्च में 1500 के आसपास, और फिर अप्रैल में फिर 2000 से ऊपर। बताइए, ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? हम कहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम कहाँ क्या गलत कर रहे हैं? बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, प्लीज़ उनकी गैस चेक कराइए। रेफ्रिजरेटर है, एसी है, कोई भी इस तरह का अप्लायंस जो आप यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट, प्लीज़ उसका ध्यान रखिए। जब गैस लीक होती है तो कंप्रेसर पर दबाव पड़ता है और ऐसे में गर्म होकर वो फट सकता है। दूसरी बात, अगर घर में एयर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं तो 14-15 घंटे लगातार मत कीजिए। प्लीज़ बीच में उसको ब्रेक्स दीजिए, उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर भी मशीन गर्म हो जाती है और फिर आग लगने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वायरिंग, अगर वायरिंग में हल्की सी भी ब्रेकेज हो रही है तो प्लीज़ काली और लाल टेप लगा के उसको जोड़ के ना करें, प्लीज़ प्लीज़। और अगर लग रहा है आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर थोड़ा फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, तो प्लीज़ स्टेबलाइज़र का जो है आप इंतज़ाम कीजिए और उसके साथ ही आप लगाइए, नहीं तो वोल्टेज के उतार चढ़ाव से भी शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं और फिर कितनी मुसीबत प्रॉब्लम हो सकती है ये मुझे आपको बताने की आज तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीज़न एकदम पीक पर है, अगर अब तक अब नहीं करवाया है तो प्लीज़ एक अच्छे से बिजली वाले को बुलाकर अपने घर की वायरिंग और जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको चेक कराइए। अगर हाँ वोल्टेज का इशू है, बात कीजिए बिजली वाले से और फिर स्टेबलाइज़र लगवाइए। और बहुत बहुत कोशिश करें कि जो भी प्लग्स और सॉकेट हैं उनकी समय समय पर आप जांच पड़ताल करते रहें। और हाँ, एसी को बिल्कुल बहुत लंबे समय तक, कई घंटों तक नहीं चलाना है। लोकल और सस्ते स्पेयर पार्ट्स लगाने की और गैस रिफिल कराने से प्लीज़ बचें, प्लीज़ प्लीज़ बहुत ध्यान रखें। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कूलिंग कम हो रही है या फिर किसी भी इक्विपमेंट से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है, उसको यूज़ करना तुरंत बंद कर दें और बिजली वाले को बुला के उसका चेक कराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए दोस्तों, हर कोई मेरा दोस्त नहीं है, ध्यान दीजिए दोस्तों, हर कोई मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन हर कोई मेरे दोस्त जैसा भी नहीं है। तो आप क्या है हमारे लिए, हम अपने शब्दों में किस तरह से बयां करें? तो प्लीज़ आप अपना ध्यान, बहुत बहुत विशेष कर ध्यान रखें और इन बातों का पूरा पूरा केयरफुल होके घर में

0: समय है अब आपसे विदा लेने का। सो पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मुक्ति आ चुकी है अपना पिटारा लेकर। देखते हैं यार उसकी पिटारे में क्या है। सो प्लीज बी रेडी।
1: मंगल भवन मंगल हारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत के साथ पहली बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं असम और पुदुचेरी में सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवी के इतिहास रचने की ओर है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 3 सीट जीत ली है और 2 पर आगे है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 202 सीटों पर बढ़त मिली है। इनमें से वो 20 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 8 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1, कांग्रेस 2 और अन्य 3 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही है। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से अब तक 52 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा को 42 सीटें मिली हैं, जबकि उसके सहयोगी एजीपी को 3 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें मिली हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1-1 सीट मिली है। उपलब्ध रुझानों के अनुसार भाजपा 40, एजीपी 7 और बीपीएफ 5 सीट पर आगे है। कांग्रेस ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। AIUDF रायजोर दल को 2 और टीएमसी 1 सीट पर आगे है। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत हर कार्यकर्ता के लिए भावुक क्षण है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने सुशासन के लिए भाजपा को वोट दिया है।
1: वेस्ट बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी आशीर्वाद मिला है। अगेंस्ट दिस वेस्ट बंगाल पीपल हैव गिवन ए वेरी वेरी क्लियर मैंडेट फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुशासन के लिए एक मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व में दिया है एंड पूरा कम्युनिस्ट मुक्त देश हो गया है।
0: केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम और रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को शानदार जीत मिली है। कांग्रेस को 56 सीट मिली है और वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। उसके सहयोगी IUML ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 पर आगे है। सत्तारूढ़ CPM को 24 सीटें मिली हैं, 2 पर आगे है। उसके सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे है। केरल कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है और 1 पर आगे है। भाजपा ने 3 सीट जीती हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने के लिए तैयार।

0: टीवी के 87 सीटों पर आगे है और 22 सीटों पर उसे जीत मिल चुकी है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके को अब तक 8 सीटें मिली हैं और 51 पर आगे है। एआईएडीएमके को 4 सीट मिली हैं, 41 पर आगे है। पीएम के 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार एन रंगास्वामी की एआईएनआरएस पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली है, 2 पर आगे है। भाजपा 2 सीटें जीत चुकी है, 2 पर आगे है। एआईएडीएमके और कांग्रेस 1-1 और डीएमके को 2 सीट मिली है, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए हैं। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 पर दर्ज हुआ। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मुंबई अंक तालिका में 9वें और लखनऊ 10वें स्थान पर है। दोनों टीमों के लिए मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजी दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। तो बिल्कुल बेशक हमें इंतजार है आपके मैसेजेस का। तो मैसेजेस की बरसात होने वाली है। वैसे बरसात कब हो रही है कब नहीं हो रही कुछ मौसम का अता पता नहीं है, लेकिन हाँ आपके मैसेजेस की बरसात बिल्कुल जरूरी है क्योंकि प्रोग्राम ही है सिर्फ आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स। फिलहाल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से गीत के साथ, उसके बाद बातों का सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे 9868107070 पर।

चलिए हम और आप भी आपके इश्क में डूब जाते हैं और इसी डूबे इश्क में कुछ बातें और भी आसान हो जाएंगी। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कहते हैं ना जिंदगी है तो सब कुछ है, अगर जिंदगी ही नहीं तो फिर क्या कुछ है। वैसे आपको क्या लगता है, किसी की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें होती हैं, किसी की जिंदगी बहुत ही आसान होती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में क्या सब कुछ आसान है या बेहद मुश्किल है? जी हाँ, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में सबसे आसान क्या चीज है? क्या आपको मालूम है या नहीं, बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। कहाँ पर? जी हाँ, 9868107070 पर मुक्ति को रहेगा आपके मैसेजेस का इंतजार। तो आप भी बता सकते हैं हमें कि आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में सबसे आसान चीज क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आने वाले यकीनन मुझे, और इसी उम्मीद के साथ एक ब्यूटीफुल ट्रैक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

से आप मिल गए तो इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। आपके साथ के साथ हमारा साथ और भी पूरा हो जाता है, क्योंकि म्यूजिकल योर्स दिल से दिल तक हम पहुंचते रहते हैं सीधा आप तक। और मैं हूं आपके साथ आपकी अर्जु दोस्त मुक्ति सैनी। मैसेज मसाला मिक्स का पूरा भंडारा यहां पर हो चुका है और मैंने बहुत ही आसान सी बात पर एक चर्चा करने की सोची है कि आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा आसान क्या है, क्या पता है या सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें ही गिनते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके क्या जो जवाब हैं हम तक पहुंचे हैं। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था, इस तरह बरसात का मौसम अभी आया ना था, बरस रही थी बारिश बाहर और वो भीग रहा था मुझ में। मोहम्मद सरफराज आलम का ये मैसेज हम तक पहुँचा है और साथ ही हाँ हम आपको सुन रहे हैं। भाई सुन रहे हैं तो फिर आप हमें बताइए कि हमने आपसे क्या जानने की इच्छा प्रकट की है। ये है मेरी लाइफ तो अप एंड डाउन में सबके जैसी ही है, सबसे हार्ड चीज़ अभी तक मेरे लिए सीए बनना है जो मैं अपनी मेहनत से बन गई, सबसे आसान चीज़। देखिए ना, आज हम यहाँ बात करें सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे मुश्किल लड़ाई झगड़ा बहुत मशक्कत संघर्ष ये नहीं जानना है, आसान क्या है सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना है, ठीक है। रिया का देहरादून से मैसेज है, सबसे आसान चीज़ मेरी लाइफ में है किसी को भी किसी का भी प्यार पाना। मेरे नेचर ऐसा है कि सब मुझे आसानी से प्यार करते हैं और मैं खुश होती हूँ। किसी को मैनिपुलेट करना अपनी बात मनवाने के लिए आसानी से करती हूँ। वाह क्या बात है। तो ये काफ़ी वैसे मुश्किल चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में आसान है रिया, तो भाई बेहद खुश होंगे आप इस बात को लेकर। और ये है, वी आर इन हॉस्टल एंड प्रिपेयरिंग फॉर सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम, तो टू स्टडी फॉर एन एग्ज़ाम इज़ वेरी ईजी फॉर अस। रोहित कोटकर का, उदय भारती का, विकास का, सौरभ का, पुणे से ये मैसेज आया है। वेरी नाइस nice, देखिए कितनी अच्छी चीज़ है ना कि पढ़ाई करो तो एग्ज़ाम्स आपके लिए ईजी हैं। और ये मैसेज है हमारे यहाँ, तो यही कहना है कि ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, हर चीज़ मुश्किल से हासिल होती है और उसके लिए दिल में एक जज्बा होना ज़रूरी है। हमेशा अपना कर्म ईमानदारी से करते रहिए, क्योंकि किसी ने कहा है ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है और मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। देखिए नीलम स्वाति और किशोर रेलवे कॉलोनी अनव्यार से जो मैसेज आपके पास है, हम बात करें ना कर को, मैं कहती हूँ ठीक है मुश्किल है, आसान कुछ भी नहीं है मुश्किल है, लेकिन आप मुश्किल पे जा क्यों रहे हैं? आप ये बोलिए ना कि आपको क्या आसानी से मिल जाए या आपको क्या आसान चीज़ आ जाए कि आपको लगे वाह ये है ना असली ज़िंदगी। मैं मेरी ज़िंदगी में सबसे आसान सपने देखना है पर उसके लिए मेहनत करना मुश्किल है। सूरज का दिल्ली से मैसेज, वाह क्या बात है सूरज, बहुत ही प्यारी बात लिखी है। ठीक है ना, सपने देखना सबसे आसान है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमारी ज़िंदगी में बेहद आसान होंगी। मेरी ज़िंदगी में सबसे आसान है जल्द उठकर सैर करने की आदत, वही ज़िंदगी में सबसे

बुढ़ापे बिना काम क्यों हम मुश्किल चीज को गिन रहे हैं भाई, जब मैं यहाँ से आपको बोल रही हूँ कि सबसे आसान चीज क्या है उस पर फोकस करते ना। तो अब जो सबसे आसान चीज है ना, मैं सिर्फ उसी को लूंगी, बाकी चीजों को मैं नहीं लूंगी। हाँ, मैंने काव्य लेखन का शौक अपनाया है, उससे कुछ घंटे व्यस्त रहने से खाली समय का पता ही नहीं लगता। इस शौक के लिए ईश्वर को आभार करता हूँ, यदि ये इल्म नहीं होता तो बुढ़ापे में समय कैसे करता। अनिल शर्मा का सरिता विहार से ये मैसेज है। मैं मुझे अपने परिवार और जान पहचान की सच्ची मुस्कान में सुकून मिलता है। भीड़ भरी इस दुनिया में थोड़ी सी पहचान में सुकून मिलता है। मोबाइल की स्क्रीन से हटकर जब दिल से बात होती है तभी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में असली सुकून मिलता है। और ये है गौतम कुमार का औरंगाबाद से मैसेज। भाई बहुत ही सुंदर बात आपने लिखी है। तो चलिए, आप जितने श्रोतागणों के पास अब तक 102.6 के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं या लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमें सुन रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि आपको सुकून तो मिलता ही है, लेकिन सुकून कहीं ना कहीं चीज़ें आसान हो तब ज़्यादा मिलता है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे आसान चीज़ क्या है, सबसे ईजी सबसे आसान चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्या है, वो आप हमें बताइए, व्हाट्सएप पे लिखिए। सोचिए, थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं और मेहनत करनी भी होगी। सोचिए कि आसान क्या है, हमने हर चीज़ को मुश्किल बना दिया है तो आसान चीज़ पर फोकस करना ही भूल गया। 9868107070 पर बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए।

यहाँ ख्वाब मत सजाइए, बस यहाँ पर ये सोचिए कि आसान चीज़ें जो हैं वो क्या हैं जिंदगी में। तो यहाँ पे मैसेज आया है, सबसे आसान रेनबो सुनना है जय टेक्नोलॉजी की, विश्वास का ये मैसेज आया। ये बात तो है, एक क्लिक और बस जुड़ जाइए आप रेनबो के साथ में। जिंदगी में आसान और मुश्किल का फासला बहुत बारीक है, ये अक्सर हमारे नज़रिए, सोच और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आसान यही है कि कभी मेरा किसी से भी मन मुटाव नहीं होता है और सभी के साथ आसानी से घुल मिल जाता हूँ। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से ये मैसेज आया अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक का। ये है किसका मैसेज, मेरी जिंदगी में सबसे आसान है मेरी इच्छाएं जो बहुत कम है और इसलिए जिंदगी में टेंशन कम है, मैं स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। शमशुल कमर राही का ये मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मैसेज। और ये है रजनी शर्मा का, वो लिखती हैं बागपत से, एक ड्रीम ऐसा जो हम देखते हैं और सपनों में जो भी चाहिए वो आसानी से मिल भी जाता है। देखिए कितना आसान है ना, ऐसा लगता है कि मुश्किल है, बस पता नहीं जिंदगी में क्या सारी मुश्किलें हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हमें ही मिली है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। सोचिए जिंदगी में बहुत चीज़ें आसान है। वैसे तो मेरी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन जब लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी आसान होने वाली है तो जगह परिवर्तन हो जाता है, फिर से वही मुश्किल। रंजीत कुमार का ये मैसेज आया अररिया बिहार से, मेरी ज़िंदगी की सबसे आसान चीज़ किताबें पढ़ना है। देखिए आ गए ना पॉइंट पे, पहले मुश्किल चीज़ के बारे में ज़रूर बताना, मतलब आसान चीज़ तो दिमाग में आ ही नहीं सकती ना, मतलब अपने आप से खुद से बना रखा है कि भाई ज़िंदगी मुश्किल है आसान नहीं है। नहीं जी नहीं, थोड़ा बदल कर देखिए सब कुछ आसान हो जाएगा। सागर सिंह रावत का पौड़ी गढ़वाल से मैसेज है, मेरे लिए लेंथी डॉक्यूमेंट्स पढ़ना इजी है एंड इफ इट इज अबाउट पॉलिसी टेक्नोलॉजी एनी हिस्टोरिकल इवेंट आई लाइक नोइंग मोर एंड मोर इन अलोन। ये भी अच्छी चीज़ है। सबसे आसान चीज़ मेरी ज़िंदगी में मुस्कुराना है, क्योंकि रोना तो हालात सिखा देते हैं लेकिन हंसना खुद से सीखना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज, बहुत ही प्यार, देखिए ना कितना अच्छा मैसेज है ना, कम शब्दों में पूरी बात लिख दी है। मोहम्मद सरफराज आलम का दर्शना बाजार से ये मैसेज आया, मुस्कुराना ये तो हम कर सकते हैं ना, बाकी कुछ करें या फिर ना किया जाए ज़िंदगी में, मुझे मुश्किल कुछ नहीं लगता। हमने तो पूछा भी नहीं है, हमने पूछा है कि क्या आसान लगता है। मुझे सब आसान लगता है, मुझे चैलेंजेस को फेस करना आसान लगता है, मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसान लगता है। अनुभव का मैसेज आया है नालंदा बिहार से, और ये मैसेज है, मेरे लिए सबसे आसान है मुस्कुराते रहना और दूसरों को भी प्रेरित करना। रवि जोशी का मेरठ से ये मैसेज, वाह क्या बात है, मतलब आप सभी जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई सही ट्रैक पर इस समय आप पहुंच चुके हैं, कि इतना भी मुश्किल नहीं है। जो ज़िंदगी की भाग दौड़ में आपाधापी में हम कहीं ना कहीं अपने आप को गुम सा पाते हैं ना, कि कहीं से खो गए हैं, कहाँ जाएं, यहाँ ट्रैफिक है, वो क्या खाएं, इतनी महंगाई बढ़ गई है, ये क्या करें, यहाँ पर ये हो गया है, बच्चे नहीं सुनते हैं स्कूल में, टीचर नहीं सुनता है, बॉस नहीं सुनता है, एम्प्लॉय नहीं सुनते हैं, सैलरी नहीं बढ़ रही है, पैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आसान होगा ना। बस वही जानना चाहते हैं, उसी की बात हम आपसे कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हम तक पहुँचा रहे हैं, तो भी पहुँचाइए ना। अगर आप जुड़ गए हैं आप थोड़ा सा ट्रैफिक में, तो आप सोचिए ना कि आप ट्रैफिक में रहकर भी आपको वो समय मिल रहा है कि आप रेनबो के साथ जुड़ सकते हैं, आप अपनी व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं और यहाँ पर कितने सारे लोगों को कहीं ना कोई नई सोच, नया विचार सामने आ सकता है, शायद कहीं उनके लिए मुश्किल हो तो वो आसानी आप बन सकते हैं, आप किसी के जीवन में बेहतरीन परिवर्तन ला सकते हैं। वाह वाह वाह क्या बात है, तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ में और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्योंकि आप हैं रेनबो के साथ। जब रेनबो के साथ जुड़ जाते हैं, सात रंगों का जो सुनहरा प्रोग्राम है, सुनहरा रेनबो है ना आपके लिए, ये हर चीज़ हर तरह से आपको बेहतरीन रंगों में परिवर्तित कर देता है और बेहतरीन एक मुकाम पर पहचान दिलवा ही देता है। तो चलिए आपको भी पहचान मिलने वाली, बस थोड़ा सा मुस्कुराइए और फिर देखिए जिंदगी में चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। नाइन एट सिक्स एट वन जीरो सेवन जीरो सेवन जीरो पर आप बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच

0: तक।
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

जी हाँ, कौन सा पिन कोड आपका हो चुका है? वैसे आपका जो पिन कोड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको पता है ना कि ज़िंदगी में आसान क्या है, उसी पे बात कर रहे हैं, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजू दोस्त मुक्ति सैनी, और बेहतरीन गीत आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरे लिए सबसे आसान है मुस्कुराते रहना और दूसरों को भी प्रेरित करना। यहाँ पे मैसेज है, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। ज़िंदगी में तो आसान कुछ नहीं है भाई, मैं आसान जानना चाहती हूँ। मुश्किलें मुझे भी पता है और यकीनन हम सबको पता है, लेकिन आसान भी तो कुछ होगा ना, वो जानना चाहते हैं। और क्या है भाई जो आसान है ना, मैं वही पढ़ने वाली हूँ अभी। यहाँ पे मैं एकदम स्ट्रिक्ट हो गई हूँ। भुवनेश का मैसेज है अशोक विहार से, हाउ आर यू? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ। आई वुड लाइक टू से दैट देयर आर टू थिंग्स विच आर वेरी इजी फॉर मी इन लाइफ। फर्स्ट, टू बी एबल टू गिव टाइम टू माय हॉबीज आफ्टर माय ऑफिस, एंड सेकंड, टू मेक फ्रेंड्स एंड मेक एवरीवन स्माइल अराउंड मी। देखिए कितना खूबसूरत मैसेज है, इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम और आपने समझ लिया है। सुनीता नागर का, रॉबी नागर का चंडीगढ़ से है, मेरी जिंदगी में सबसे आसान ये है कि मैं सबके दिलों में जल्दी जगह बना लेता हूँ, इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। इकबाल सिंह छाबड़ा का छत्तीसगढ़ से मैसेज आया, मैं रोज़ सुबह 3-4 लोगों की तारीफ करता हूँ और उन्हें खुश कर देता हूँ, यही मुझे बहुत आसान लगता है। वही देखिए, ये सबसे मुश्किल काम है, अगर आप ये कर पा रहे हैं तो फिर तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मुझे काम करना आसान लगता है, विपुल का दिल्ली से मैसेज है। भाई बहुत अच्छी बात है, काम ही तो है जिसके लिए सुबह जगना और ये सब चीज़ें बेहतरीन मुश्किल होती हैं, बट फिर भी करना है तो फिर करना है। मेरे को अपनी ज़िंदगी में सबसे आसान काम करना लगता है, दिल्ली से सुल्तानपुरी से राजेश कुमार का ये मैसेज है। बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा। ज़िंदगी में आसान यही है कि हमारा किसी से भी मनमुटाव नहीं होता है, सभी आसानी से हमारे साथ घुल मिल जाते हैं। और ये मैसेज, ज़िंदगी में कुछ नहीं आसान, एक आग का दरिया और हमें रोज़ डूब के जाना है, जिसकी चाह करते हैं वही सबसे पहले दूर हो जाती है। अब दिल से समझा लिया है, कुछ नहीं है आसान, बस चलते रहो। बस यही मैसेज हमें नहीं लेना है, और इसी किसने भेजा ये मैसेज, हम बिल्कुल आपसे बात नहीं करेंगे। हमें ये जानना है कि आसान क्या है, कुछ ना कुछ ज़रूर आसान है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, फिर आपको दिखाई देगा कि हाँ आसान बहुत सी चीज़ें हैं। गुड्डू धाकड़ का मध्य प्रदेश उज्जैन से मैसेज आया है, गाँव में मेरे लिए सबसे आसान काम है नींद निकालना पसार के सोना। भाई ये बात तो है। और ये है, बीटेक फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, और अभी अंधेरा आंध्र प्रदेश में पढ़ रहा हूँ। सबसे आसान मेरी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य की ओर निरंतर काम करना और बढ़ते रहना है, क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य पता है। और रेडियो सुनते हुए हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान लगता है। गौतम कुमार का अररिया बिहार से ये मैसेज है। भाई बहुत ही खूबसूरत मैसेज। अब देखिए ना कितनी चीज़ें, जहां लोगों को इंजीनियरिंग करना एकदम मुश्किल लगता है कि नहीं हमसे हो ही नहीं पाएगा, बहुत से गलत स्टेप ले लेते हैं, वहीं पर वो कह रहे हैं कि भाई रेडियो सुनते सुनते या पढ़ाई करते करते चीज़ें सॉल्व होती रहती हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, बस यही उन्हें करना है। तो ज़िंदगी में आसान बहुत सी चीज़ें, बस नजरिया बदलने की जरूरत है, वही नहीं बदल पा रही है। तो सोचिए, आसान तो हम को दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देगा, मुश्किलें खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। तो भाई मुश्किलें हटाइए, मुश्किलें हट सकती हैं, बस यहां पर छोटा सा नजरिया बदलने की ही तो देर है। और फिर देर किस बात की है, देर किसी भी बात की नहीं है। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक एक मेरे पास है जो मैं चाहती हूं कि आप तक पहुंचे, तो फिर देर किस बात की है। मेरे लिए सब कुछ आसान है, मेरे लिए यहाँ पे आपके लिए सॉन्ग

देखिए जिंदगी में सब कुछ आसान है, रास्ते ढूंढना आसान है, लोगों को ढूंढना आसान है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लाना भी आसान है। आपको लगना मैं यहाँ पे बोलने वाली मुश्किल है, नहीं जी नहीं, वो भी आसान है। और आपके मैसेजेस के माध्यम से ही मुझे ये पता चल रहा है और बेहद दिल से खुशी हो रही है कि आप ऐसा मानते हैं कि जिंदगी में बेहद ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर हम गिनने बैठे तो चीज़ें आसान है, मुश्किल हमने खुद ब खुद बना रखी हैं। वही ना कि मुश्किलें तुमसे हैं या फिर तुम ही मुश्किल हो, तो वही हमने मुश्किलें खुद बना नहीं रखी, हम खुद ही मुश्किल हो गए कि हमें हर चीज़ मुश्किल लग रही है। मेरी ज़िंदगी बहुत आसान गुजरी है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं होती है। आदिल कमर का गुन्नौर से ये मैसेज आया, भाई बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ देखिए, हर रोज़ लड़ाई होती है। आज से तेरा बिजली का बिल मेरा हो गया, गाने के बोल जीवन को जीवन आसान हो जाती है। राजेश भल्ला एडवोकेट का कंकड़खेड़ा मेरठ से ये मैसेज आया है, द ईजिएस्ट थिंग टू ईट दी पील वाटरमेलन। राहुल का रुड़की से ये मैसेज आया, ये बात तो है, कोई चाहे वो तरबूज हो चाहे वो खरबूजा हो, कोई भी काट के दे देना, बस ठंडा ठंडा मज़ा आ जाता है, मेरे मैसेज आसान हैं। भाई अच्छी बात है, तो फिर मैसेज कीजिए आपकी चीज़ें क्या आसान है। मुश्किल कुछ नहीं है, सब आसान है, वो हम ज़्यादा सोच कर मुश्किल बनाते हैं, कन्फ्यूजन में रह कर मुश्किल बनाते हैं, टेंशन लेकर मुश्किल बनाते हैं। लाइफ इज़ ईजी, अनुभव का ये मैसेज हम तक पहुँचा है। आपकी लाइफ में क्या ईजी है? सबसे आसान ज़िंदगी में माँ बाप का आशीर्वाद और खुद का खुश रखना कोशिश करता हूँ, खुद को खुश रखना कोशिश करते हैं। आपने हमारा ये संदेश तो शामिल किया लेकिन हमारे नाम नहीं शामिल किया। ज़िंदगी में आसान यही है कि कभी हमारा किसी से भी मनमुटाव नहीं होता है। जी हाँ, आपने दो दो बार मैसेज भेजे, मैंने एक बार आपका नाम ले लिया था। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल कुमार, अनिल मोहन और उषा मोहन का ये मैसेज आया है। देखिए, आसान शिकायतें करना आसान है, यहाँ पर आप ये बात बोल सकते हैं। एक ही मैसेज को दो दो बार भेजेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? जिन्होंने इतने देर से मैसेज भेजा उनका मैसेज लेना भी तो ज़रूरी है ना। ज़िंदगी सबसे ईजी है, रेनबो सुनना और एंजॉय करना, तो बस जुड़ जाइए हमारे साथ में। और ये है, वैसे सबसे आसान है कि अगर मीठा ना खाने की कसम खाएं और काला गुलाब जामुन गर्मा गर्म सामने आ जाए तो उसे बहुत आसानी से खाना। वीजी का मैसेज आया दिल्ली से, भाई काले गुलाब जामुन की जो बात आपने यहाँ की है ना, उसमें क्या बोलो, इतना फेवरेट ना मेरा, इतना फेवरेट है कि बस सामने देखते कंट्रोल उसे नहीं होता है। तो सबसे आसान है दूसरों के दिल में अपने लिए जगह बनाना, और मैं सबके दिल में जगह बहुत जल्दी बना लेती हूँ और सबके साथ घुल मिल जाती हूँ। मोनिका का उत्तराखंड से ये मैसेज, वाह भाई इतना आसान है, ये बात सुनकर मुझे खुशी हो रही है कि दूसरों के दिल में जगह बनाना आसान है, वरना लोग तो अपना जो दिल एकदम पैक्ड करके बैठे हुए हैं। रेनबो सुनते हुए काम करती हूँ और हर काम मस्ती में करती हूँ, आसानी से हो जाता है। मीरा सिंह का सिलचर आसाम से ये मैसेज आया, इस जीवन में कुछ भी करना आसान है, अपने आप को हेल्दी फुल रखो और अपने आप को फिट रखो तो आपको भी काम करने में कठिनाई नहीं होगी। सोनू का बिजनौर से ये मैसेज आया, भाई बहुत ही सुंदर बात आपने यहाँ पे कही है। वही ना कि अपने आप को हेल्दी नहीं रखना तो फिर सारी चीज़ें मुश्किलें कहीं, आलस आएगा, नींद आएगी, थकान होगी ना, सीढ़ियाँ चढ़ी जाएंगी ना उतरी जाएगी ना ज़्यादा दूर वॉक कर सकते हैं, और हर चीज़ में पसीना आएगा, थकान महसूस होगी, तो ज़िंदगी खुद ब खुद मुश्किल हो ही जाएगी। और ये है, मन के हारे हार है मन के जीते जी, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। भाई हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ आसान है, आप क्या मानते हैं, हम वो जानना चाहते हैं। भाई देखिए, कहावतें, मुहावरे और कोटेशन ये सब तो आप भेज सकते हैं बहुत ही आसानी से, पर आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आसान क्या है? मैंने पूछा कि आपकी ज़िंदगी में आपको सबसे आसान क्या लगता है, तो आपको हमें ये बताना है और हमारे साथ जुड़ जाना। अगर आपके पास है सही बात सही जवाब तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। मुझे भी यही लगता है कि ज़िंदगी में सबसे आसान है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई वो हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो सकती है। कोई ना कोई सॉल्यूशन हर किसी चीज़ का होता है, बस थोड़ा सा उस समय संयम से काम लेना है, वो चीज़ें आसान है। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आ रही वो सब आसान है, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है और चीज़ खुद ब खुद जो है वो सही राह हमें दिखाई ही देगी। तो मेरा मानना ये है, आप बोलते ना कि आप तो नहीं बताते कि क्या मानना है, तो 9868107070 पर आप बता सकते हैं। अगर अभी भी आप कुछ कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपके सबसे आसान क्या है, बताइए। तब तक ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए।

देखिए, धीरे धीरे प्यार को ही बढ़ाना है, फिर देखिए चीजें कितनी आसान हो जाती हैं जिंदगी में। और एक बहुत ही प्यारा मैसेज आया, क्या पैदा की है वर्तमान तो आसान ही है, शिव शंकर का, कीर्ति नगर न्यू मार्केट से हमको ये मैसेज आया। तो भाई सब कुछ आसान है सोचा जाए तो, और ना सोचे तो फिर बेहद चीजें हैं जिंदगी में मुश्किलें पैदा करने के। तो फिर मुश्किलों पर फोकस नहीं करना है हमें,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुदुचेरी में वो सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने इतिहास रच दिया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम अब तक मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 204 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 70 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 27 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है, जबकि वाम दल 2 सीटों पर आगे हैं। अन्य को 3 सीटें मिली हैं और 1 पर आगे हैं। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही हैं। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। उधर असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इनमें से वो 90 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 11 सीटें जीत चुके हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर एक नया इतिहास रच चुकी है। टीवी के 108 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 61 सीटें जीत चुकी है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 75 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 22 सीटें जीत चुके हैं। AIADMK और उसके सहयोगी दल 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और इनमें से 18 सीटें जीत चुके हैं। PMK 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और भाजपा 1 सीट पर आगे चल रही है। केरल में विधानसभा की 140 सीटों में से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने 99 सीटों पर शानदार विजय हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीती हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 25 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे चल रही है। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भाजपा ने 3 सीटें जीत ली हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार की वापसी हुई है। एन रंगास्वामी की AINRC ने 9 सीटें जीते हैं और 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीत ली हैं और 1 सीट पर वो आगे चल रही है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और नागालैंड में 4 सीट जीत ली हैं। महाराष्ट्र के बारामती में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। श्री मोदी कुछ ही देर में पार्टी की शानदार जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा NDA की जीत गठबंधन के विकास और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के संकल्प के प्रति अटूट समर्थन को

दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, उनके संघर्ष और उनकी शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जी हाँ, जैसे आपको नाचना है वैसे नाचिए, पागलों की तरह नाचिए, लोग तो वो आपको घोषित कर ही देंगे। वैसे जब अपनी मस्ती में नाचते हैं ना, तो लोग कुछ ना कुछ नाम तो दे ही देते हैं। पागलों की तरह नाच रहा है, ऐसे नाचना भी आता है, ये कैसे नाच रहा है, ये तरीका थोड़ी ना होता, थोड़ा ढंग से नाचना चाहिए, तमीज से नाचना चाहिए। अरे भाई, नाचने का भी कोई ढंग होता है क्या वाकई में? जब हम खुशी में होते हैं ना, जब हम मस्ती में होते हैं, या किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, या फिर दोस्तों के साथ कहते हैं ना धूम धड़ाका करने का मन करता है ना, तो भाई फिर हम नहीं सोचते कि क्या करना है क्या नहीं करना। भाई चाहे हमें डांस आता हो या ना, तो चाहे हमें किसी गाने के सिग्नेचर स्टेप आते हों या ना आते हों, लेकिन हम डांस ऐसा करते हैं कि सब कुछ हिला के रख देते हैं। बस वही है हमारी और आपकी म्यूजिक मस्ती की, सब कुछ हिला के रख देना। बहुत ही मिक्स मैसे गाने आज आपके लेकर आई हूँ, खास मज़ा आने वाला है। जैसा आप सोचेंगे वैसे ट्रैक बिल्कुल भी आप तक नहीं पहुंचने वाले हैं। आप कहेंगे अरे ये क्या बात है, यहाँ तो ये होना चाहिए जैसे हम सोच रहे वैसे ही गाने आने वाले। आप सोचिए ना, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ना होके कुछ अलग होता है, तो वो भी हमें ज्यादा प्यारा लगता है या ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में। तो ये मस्ती शुरू हो चुकी है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।
1: जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा, हु इज ही?

वैसे ना सबसे अच्छा यही रहता है कि सरेंडर कर दिया जाए. सरेंडर कर दिया जाए ना तो फिर अपने दिमाग से ना अपने सर पे से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो उतर जाती हैं, और फिर होता है कि होगा तो होगा, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, हमने कोशिश तो की है, हमने मेहनत तो की है, फिर होना ना होना तो फिर कहते हैं ना कि ऊपर वाले के हाथ में. सबसे आसान होता है अपने से चीज़ें हटा कर दूसरों पर डाल देना, चाहे वो भगवान हो चाहे फिर कुछ और हो, बस अपनी चीज़ें जब हम साइड कर देते हैं तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं ज़िंदगी में. आपको क्या लगता है, बस थोड़ा सा संयम, थोड़े से नियम अगर बना लिए जाए ना, मुश्किल है लेकिन आसान चीज़ों पर फोकस करना ना, नियम कानून बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस आप लिख दीजिए कि हमें ये करना है और धीरे धीरे कभी ना कभी ये चीज़ें फॉलो जो है वो ज़रूर हो जाती है. भाई मुझे तो ये लगता है, मेरा मानना ये, आपका मानना क्या है वो भी आप हमें बता सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं. कहाँ पर? आकाशवाणी 102.6 में. साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी हम आप तक पहुँच जाएंगे, आप तक जुड़े रहेंगे, बहुत ही कुछ चीज़ें प्यारी प्यारी आप तक पहुंचाते रहेंगे. तो फिर कहीं और क्यों जाना है, मुक्ति है आपके साथ में. प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में, तो मस्ती तो बनती है और मस्ती शुरू हो चुकी है, मतलब हो चुकी है.

0: अब यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं आपके साथ म्यूजिक मस्ती के कुछ और तड़कते भड़कते गीत जो आपको बैठने पे नहीं उठने पे मजबूर कर ही देंगे। मुझे पता है अपनी हेल्थ की और आप कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बस सोचते हैं खाएं पिए और बस लेट जाएं, और दिन प्रतिदिन मौसम भी जो है वो बदलता रहता है, कभी बारिश कभी ठंडक जो हो जाती है, अच्छी अच्छी हवा चलने लगती है ठंडी वाली लू की जगह, तो बस मौसम जो है वो खाने का कट जाता है, फिर चाहे समोसे हो, पकौड़े हो, चाय हो, पैटीज हो, सब कुछ दिल खोल कर खाया जाता है और एक्सरसाइज को टाटा बाय बाय किया जाता है। चलिए अगर एक्सरसाइज को टाटा बाय बाय करते ना, तो ये जो हर रोज का जो एक घंटा है ना म्यूजिक मस्ती का, इसके साथ जुड़ जाइए, और फिर इसके साथ जुड़कर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका मन ना करे इस पर झूमने का, डांस करने का, गाना गाने का। तो सिर्फ इतना भी आप करेंगे ना तो भी हो जाएगा, और शायद ये ना कर पाए, डांस ना कर पाए, हम डांस नहीं आता, तो भाई इसके साथ कम से कम ईयरफोन हेडफोन्स लगा के आप वॉक भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जो अपने आप को हेल्दी रखा जा सकता है, लेकिन कोशिश तो आपको ही करनी होगी ना, कदम तो आपको उठाना होगा। चलिए कदम भी बाद की बात है, पहले ट्यून इन तो कर लीजिए 102.6 और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हम पहुंच रहे हैं सीधा आप तक।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों

0: का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

देखिए वेडिंग सीजन चल रहे हैं तो अगर ये गाने ना होने तो फिर किसी भी पार्टी में मजा नहीं आ सकता। और मैंने उन सभी चीजों का ख्याल रखा है। मैंने कहा था ना कि आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाएंगे कि नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा आने वाला है। तो कुछ सरप्राइजेस अच्छे होते हैं, वैसे सभी सरप्राइजेस पसंद नहीं आते, लेकिन अगर उसमें से कुछ सरप्राइज अगर हमें मिल जाए तो दिल को तसल्ली मिल जाती है, दिल को खुशी मिल जाती है। तो चलिए ये खुशी बरकरार रहनी चाहिए, बाकी कुछ जीवन में हो या ना हो, कितना छोटी छोटी खुशियों में ही भाई कोई ना कोई खुशी है, कोई ना कोई माध्यम ऐसा हो जाता है कि एक बड़ी खुशी की जो बड़ी खुशी जो है वो सामने आ जाती है। तो आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर होता होगा कि छोटी छोटी खुशियों के चलते आपको बड़ी खुशी आपके सामने आ जाती है। मुझे बताया आपने नज़र खोलकर बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, नज़रिया ही चेंज नहीं किया होगा। नज़रिया तो चेंज कीजिए, फिर देखिए जिंदगी में कितने परिवर्तन हो जाते हैं। यहाँ मौसम बदल जाते हैं, आप सोचिए जिंदगी भी बदल सकती हैं। देखिए ज्ञानवर्धक बातों का सिलसिला प्रोग्राम में मुक्ति हो और ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए इम्प्लीमेंट कीजिए या ना कीजिए, लेकिन मेरा काम कह सकते हैं या मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो मेरे में बात है, जो मुझ में बात है, जो मैं कहना चाहती हूँ आपसे वो मैं कह ही देती हूँ। जैसे आप भी व्हाट्सएप पे बहुत सारी बातें हमको लेकर भेज देते हैं, बहुत सारे सुझाव भेजते हैं, सजेशन भेजते हैं, शिकायतें तो भर भर कर भेजते हैं, वो सभी हमको एक्सेप्टेबल है, उन सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। इसलिए जब कोई ज्ञानवर्धक बातें आती हैं, मुझे लगता है कोई काम की बात है, तो मैं बेशक आप तक पहुँचा देती हूँ। लेकिन हाँ, ब्यूटीफुल ट्रैक्स का सिलसिला यहाँ पर जारी रहने वाला है, क्योंकि बेहद ब्यूटीफुल ट्रैक मेरे पास है। अभी एक जो और सॉन्ग आने वाला है ना, इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है कि बस डीजे पे बज जाए ना तो जो भी डांस नहीं भी करना चाहता ना वो भी इसे सुनकर डीजे पे आ ही जाता है।

वाकई में ये सॉन्ग सुन के मेरा तो दिल धड़क चुका है, आपका भी जरूर धड़का होगा। धड़का लीजिए थोड़ी, ये जो आपकी जो सांस है ना, थोड़ा सा चलने पे ही, थोड़ी सी स्टेयर चलने पे ही जो फूलने लगता है ना, ये नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। इसलिए म्यूजिक मस्ती के साथ जुड़ जाइए और फिर ढेर सारी एक्सरसाइज जो है ना आपका काम बन जाएगा, आप एकदम रिफ्रेशिंग हो जाएंगे और बाकी अगले दिन के लिए आप बहुत ही तंदुरुस्त हो जाएंगे। फिलहाल मेरे जाने का वक्त हो चला है, मुक्ति कहेगी आपसे इतना ही। 9 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम आपकी याद आती रही गीतांजलि शर्मा के साथ। 10 बजे का समय रहेगा शालू के साथ, रेनबो शोकेश में रहेंगे वो आपके साथ। और फिर 11 बजे का समय रहेगा रंगे महफिल गीतांजलि शर्मा के साथ। तो फिलहाल अपनी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी को दीजिए इजाजत, मैं चलती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्यार की इज्जत कीजिए। आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, वेलकम ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ यानी आकाशवाणी रेनबो, जिसका इंतजार आप हर रोज करते हैं, वही शोज आप हर रोज सुन रहे हैं। और उन्हीं शोज में से एक शो है जिसका नाम है आपकी याद आती रही, और ये शो लेकर आई हूं मैं, आपकी दोस्त गीतांजलि। तो आपकी याद आती रही में आज हम यादों की बात करेंगे, उन बातों की बात करेंगे जो आज भी हमारे साथ साथ चलती हैं। कहते हैं कि वक्त तो बीत जाता है लेकिन बातें खड़ी रहती हैं, ऐसा अक्सर हमने सुना है। जी हाँ, ये वही बातें होती हैं जो खूबसूरत सी यादें बनकर हमारे जहन में रहती हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि यादें चाहे हंसती मुस्कुराती हों या गमजदा एहसासों से जुड़ी हों, लेकिन मायने बहुत रखती हैं। आइए इन यादों के सफर पर हम चल रहे हैं साथ साथ और सुन रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे से खूबसूरत से ट्रैक्स जिन्हें लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, आपकी दोस्त गीतांजलि। तो बने रहिए अगले एक घंटे तक हमारे साथ और सुनते रहिए आपकी याद आती रही, ओनली ऑन आकाशवाणी।

जी हाँ, प्यार इश्क मोहब्बत में तो ऐसा लगता है कि महबूब के साथ साथ ही रहें। और जैसा इस सॉन्ग में भी कहा गया कि लगने लगा है मुझे आजकल कि मैं हर पल साथ रहूं, ये साथ ही तो है जो खूबसूरत सी यादें बनाता है। देखिए, शो भी तो हमारी उन यादों से ही जुड़ा है ना, जो हमारे साथ रहती हैं, हमारे साथ साथ चलती हैं। इन यादों का सफ़र बहुत ही खूबसूरत सा होता है। जब हम इन यादों के साथ होते हैं तो हम तन्हा नहीं होते हैं, और तन्हाई में ये यादें हमें तन्हा करती भी नहीं हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि खूबसूरत सी यादों को बनने का मौका दीजिए, और ये यादें हमारी ज़िंदगी को बहुत कुछ दे जाती हैं। कभी आपने महसूस किया है कि बैठे बैठे आप कुछ वक्त पीछे चले गए हैं? वो खूबसूरत सा वक्त, खूबसूरत सी हंसी आपके होंठों पर दे देता है, और आपको लगता है कि काश वो दिन एक बार फिर से आ जाए। लेकिन बीता हुआ वक्त वापस भी तो नहीं आता, ये भी तो हम जानते हैं ना। चलिए, बीता हुआ वक्त तो वापस नहीं आता है, लेकिन खूबसूरत सी यादें रहती है ना हमारे साथ पे। इन यादों में डूबते हैं और अगला ट्रैक एंजॉय करिए। ये ट्रैक मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ और आपसे ये कह रही हूँ कि आगे भी हमारी बातचीत यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल एंजॉय दिस ट्रैक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, आपकी याद आती रही ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो।

जी हाँ, मैं ये बिल्कुल जानती हूँ कि जो इस वक्त इस शो को सुन रहे हैं ना, वो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मैसेज रिक्वेस्ट का शो नहीं है, इसलिए आपके मैसेजेस को तो मैं नहीं ले पाऊंगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर देख रही हूँ कि कितने लोग अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई उन पिछली बातों को याद कर रहे हैं इस वक्त, इस दौर में हैं, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं पिछले दौर में, क्योंकि बहुत ही अच्छी सी यादें हैं। वैसे यादों में कुछ यहाँ जो मैसेजेस हैं उसके हिसाब से कुछ लोग थोड़ा परेशान भी हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि परेशान मत होइए। जिंदगी का वो कोई भी वक्त, कोई भी दौर ऐसा नहीं है जो रुका सा रहता है। हर दौर आता है और फिर चला जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ऐसा हम अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुनते आए हैं कि अगर ये वक्त पिछला वक्त नहीं रहा है तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। तो बहुत ज़्यादा जिंदगी को टिपिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से जीते रहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ ना कि ज़िंदगी का फलसफा सिर्फ इतना है कि इसे जीते जाइए। जी हाँ, हमेशा ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिव होकर लें और ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करें। मैं जानती हूँ कि आज की ज़िंदगी में इतनी उधेड़बुन है ना, इतनी भागदौड़ भरी हम लोगों की ज़िंदगी है कि हमारे पास सुकून के दो पल नहीं है। लेकिन इन सुकून के दो पलों के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, वो हमें सोचना चाहिए। अगर मन है कहीं घूमने जाने का, बिल्कुल घूमने जाएं, अपने आप को ना रोकें। अगर मन है किसी से बात करने का, तो बिल्कुल बात करें। और बात करने से याद आया कि एक बात मुझे करनी है, लेकिन इस ट्रैक के बाद। इस ट्रैक को एंजॉय करिए, हमारे साथ यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए। आपकी याद आती रही ऑनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, आपकी दोस्त गीतांजलि के साथ।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही, आकाशवाणी रेनबो पर आपकी दोस्त गीतांजलि के साथ बात यादों की हो रही है, जज्बातों की हो रही है, जो हमारी ज़िंदगी में कभी कभी रुक से जाते हैं, ठहर से जाते हैं, लेकिन हम इन्हीं के साथ साथ आगे बढ़ते जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वक्त पीछे बीत चुका होता है लेकिन आज भी हमारे साथ होता है। हम जब उस दौर में, उस वक्त में चले जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और लगता है कि वहाँ से वापस भी ना आए। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेनफुल जो बीता वक्त होता है ना, वो भी अच्छा लगने लगता है आने वाले वक्त में, क्योंकि उससे हम बहुत कुछ सीख कर आते हैं और कहकर भी आते हैं कि जिंदगी चलने का नाम है, रुकने का नहीं। इसलिए जिंदगी को जिंदगी के साथ साथ हम चलते रहें तो ज़्यादा अच्छा है, और जिंदगी के साथ साथ ट्रैक्स का ये सिलसिला भी चलता रहे, थमे ना, यही तो रेनबो है। तो चलिए, एंजॉय दिस ट्रैक, बने रहिए हमारे साथ।

आने के लिए आपको मुलाकातें करनी होंगी। मुलाकातें करते रहिए, किसी से नाराजगी है दूर कर लीजिए, गिले शिकवे सब हटा दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही हसीन और बहुत खूबसूरत है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन ये भी याद रखिए कि ज़िंदगी में जरा सी भी, जो कहते हैं ना हम, कि मन में कोई गुरेज रखना या फिर किसी से नाराज़गी रखना, उससे बेहतर है कि हम उस व्यक्ति से बैठकर बात कर लें, उस इंसान से बैठकर बात करें, अपने दिल की बात उसे कहें, उसके दिल की बात सुनने। हो सकता है जब दो दिलों की बात आपस में हो तो शायद कोई रास्ता निकले, और हो सकता है कि आगे रास्ता बंद हो तो कम से कम ये पता हो कि रास्ते अलग अलग हैं और अब हमें आगे बढ़ना है। ज़िंदगी का फलसफा इतना है कि इसे जीते जाइए। बहुत कम शब्दों में मैंने एक बहुत ही अच्छी और मेरे ख्याल से थोड़ी समझदारी की बात की है, तो आप इसे ध्यान ज़रूर रखिएगा। और मैं यही कहूँगी कि आप कोशिश करें जिंदगी में बहुत नाराजगी ना रखें, बहुत मनमुटाव ना रखें। छोटी सी तो जिंदगी है, इसे खूबसूरत बनाएं, अच्छी बनाइए, हमारे अपने हाथ में। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, आपकी याद आती रही, ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो पर, आपकी दोस्त गीतांजलि के साथ।

जी हाँ, बातें मुलाकातें तो होती ही रहती हैं और हमारी बातों का कहाँ सिलसिला ख़त्म होता है। फिलहाल आपसे इजाज़त लेने का वक्त ज़रूर हो गया है क्योंकि अब घड़ी की सुइयाँ इजाज़त नहीं दे रही हैं कि और ज़्यादा हम कंटिन्यू रहें, लेकिन आपकी याद आती रही। ये शो आप सुन रहे थे और हर रोज़ ये शो आता है आपके लिए, आप इसे सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल आपकी दोस्त गीतांजलि को दीजिए इजाज़त, क्योंकि आपके लिए जाते हुए एक अच्छा सा ट्रैक मैं प्ले करके जा रही हूँ। इसे सुनिएगा, इंजॉय करते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। इंजॉय दिस ट्रैक। Take care and bye-bye.

0: पुडुचेरी के चुनाव नतीजों पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीटों पर बढ़त बना ली है और इनमें से 170 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 61 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 2 सीटें मिली हैं, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी

0: आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबाई निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलागा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 96 सीटें जीत चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके 50 सीटें जीत चुकी है। एआईएडीएमके 42 सीटें जीत चुकी है। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और दवेड़ मुन्नेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलागा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं। उधर पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कांग्रेस 30 सीटों में से 29 सीटों पर परिणाम आ चुके हैं। एन रंगास्वामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है और DMK को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों और की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड की कोरिडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर इमचेन विजयी रहे। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक के बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलपमेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगिरी दक्षिण से कांग्रेस के समर्थ समनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 64 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज मिष्ठी एंड दिस इज 102.6 आकाशवाणी रेनबो। यू आर वेलकम टू रेनबो शोकेस। टुनाइट ऑन रेनबो शोकेस वी आर टर्निंग अप द रिदम एंड सेलिब्रेटिंग एब्सोल्यूट पॉप रॉयल्टी जैनेट जैक्सन। सिंस वी आर ऑफिशियली इन हर बर्थडे मंथ, वी आर डेडिकेटिंग द नाइट टू

0: That's the way love goes. Stay put, everyone. We're going to take a short breather and be right back with China Love by Janet Jackson.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: Our artist tonight was the youngest of 10 children. Her brothers, they made up the famous Jackson 5. However, her and her sisters, they weren't initially part of that, but they did perform with them for the first time when she was just 7. Even though she didn't have any initial plans to pursue music and wanted to be a horse racing jockey or an entertainment lawyer, destiny clearly had different plans for her. And we're so glad that it did, because we did not want to lose such a wonderful voice to entertainment, to some profession of a lawyer. We're having so much fun, aren't we? But time for a small break, and we'll be back shortly with someone to call my lover.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 197 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी

0: निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। एआईएडीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है। कांग्रेस को 1 सीट मिली है। DMK को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड में कोरिडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर इमचेन विजयी रहे हैं। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक में बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलप्पा मेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगेरे दक्षिण सीट से कांग्रेस के समर्थ सामनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। IPL क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।

नमस्कार, वेलकम ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ यानी आकाशवाणी रेनबो। और जैसा मैंने किया था आपसे वादा कि जल्द जा रही हूँ और लौटूंगी फौरन, लीजिए आ गई हूँ मैं आपके फेवरेट शो के साथ जिसका नाम है रंगे महफिल। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी का सुकून अगर चाहिए तो आ जाइए गजलों के इस सफर में हमारे साथ। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। और इस प्रोग्राम की पहली गजल मैं प्ले कर रही हूँ जगजीत सिंह जी की आवाज में, कोई फरियाद। इतनी खूबसूरत सी गजल है, इसे जितना सुने उतनी ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। और कहते हैं कि कोई भी म्यूजिक, संगीत, गायकी ज्यादा बेहतर, खूबसूरत या फिर खास तब हो जाती है जब सुनने वाला उसे दिल से सुन रहा हो। तो आइए इस गजल को हम सुनते हैं बहुत ही दिल से, क्योंकि मेरी बहुत ही फेवरेट ये गजल है, इसलिए मैंने प्ले की है आपके लिए। इसे सुनिएगा, एंजॉय करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप रंगी महफिल, आपकी दोस्त गीतांजलि के साथ।

थे उमराव जान मूवी से, क्या मूवी थी, क्या अदाकारी थी, रेखा जी ने तो क्या कमाल की एक्टिंग की थी, और म्यूजिक और गायकी, मतलब पूरी फिल्म ही 100 में से 1000 नंबर दिए जाएं तो शायद, तो मैं तो वो भी दे दूं, लेकिन ये गणित के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, लेकिन वाकई बहुत ही खूबसूरत मूवी और बहुत खूबसूरत अदाकारी, और गज़लों की तो बात ही क्या है। और मैं कहती हूँ, मैं तो ये भी मानती हूँ कि गज़लों की जो एक परिभाषा फिल्मों में बदली, या जो मुखर होकर गज़लें इस तरह से आई गाई गई, तो वो उमराव जान मूवी से कहीं ना कहीं बहुत हद तक शुरू हुई। बहरहाल अब जो वक्त है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, और कहते हैं कि वक्त के साथ साथ चलना इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है, तो हम भी वक्त के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते ये खूबसूरत सी गज़लें कैसे छोड़ दें। इन्जॉय दिस ट्रैक और गज़ल जगजीत जी की आवाज़ में आप।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगीन महफिल, जिसमें हम गज़लों की बात कर रहे हैं, गज़लों को सुन रहे हैं। गज़लों की दुनिया ही बहुत अलग होती है। इसका म्यूज़िक, इसका वक्त ऐसा होता है कि हम खुद में बहुत ही गुम हो जाते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं। और रात का वक्त हमारा अपना, हमारी तन्हाई से हमें जोड़ता। तन्हाई हमेशा दुखदाई नहीं होती है, तन्हाई कभी कभी खुद को रिचार्ज करने के लिए भी होती है। जी हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो बहुत चुप रहने का मन करता है, और या फिर हम बहुत सुकून ढूंढते हैं तो चुप रहने का मन करता है। भागदौड़ भरी ये ज़िंदगी, इसमें थोड़ा सा वक्त अगर हमें मिल जाए रंगी महफिल प्रोग्राम के ज़रिए, तो फिर कहने ही क्या है। सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगी महफिल आकाशवाणी रेनबो पर।

जी हाँ, वक्त हालात ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी के हर वक्त को हम तब आसानी से निकाल लेते हैं जब हम मजबूत होते हैं। तो ख़ुद को थोड़ा सा मजबूत ज़रूर रखिए, ज़िंदगी के हर उतार और चढ़ाव से लड़ने के लिए तैयार रहिए। और कहते हैं कि ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आसान है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। फिलहाल अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है, क्योंकि घड़ी की सुइयां टिक टिक कर मुझे बता रही हैं कि चलिए अब इजाज़त ले लीजिए। तो आपसे इजाज़त लेने के साथ साथ ये ज़रूर कहूँगी कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सिर्फ इतना है, इसे जीते जाइए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये जाते जाते एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए, इसे सुनिएगा। और इस गज़ल में सुष्मिता सेन की खूबसूरत सी आवाज़ भी है और बहुत ही ख़ास ये गज़ल लगती है सुनने में भी और देखने में भी। तो जाते जाते इस गज़ल को मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए, इसे सुनिएगा, इंजॉय करते रहिएगा और आकाशवाणी रेनबो के साथ यूं ही बने रहिएगा। अपनी दोस्त गीतांजलि को दीजिए इजाज़त। गुड नाइट।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 203 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 72 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 105 सीटें जीत ली हैं। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। AIADMK ने 46 सीट जीते हैं। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट

जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को BJP की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई ने 19वें ओवर में 229 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लखनऊ ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:05 और 38 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आर शो। मैं हूं एसएम शरीफ, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

बात का जवाब हाथ से, बात का जवाब बात से, प्रीत का जवाब प्रीत से, और गीत का जवाब गीत से।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 78 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में

0: उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 106 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वैत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। डीएमके ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। रयान रिकल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:05 हुए हैं, शुरू करते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 106 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों

पर जीत दर्ज की। पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मानों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। केरलम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में हुए हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि वे प्रभावित भारतीय नागरिकों की उचित चिकित्सा देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:05 और 43 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो नाना, सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई। कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मुकेश जी का नाम आते ही बहुत सी यादें भर आती हैं। मुकेश जी के साथ मेरे बहुत प्रोफेशनल रिलेशंस बहुत देर से नहीं थे, लेकिन इमोशनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा थे। मुझे सिर्फ एक दुख है कि मैं उनको बहुत देर से मिला। इतने बड़े सिंगर, इतने महान कलाकार होते हुए उनमें कोई किस्म का ईगो, कोई किस्म की ये बात मैं यहाँ ये ना करूँ, वहाँ वो ना करूँ। जब वो किसी से प्यार करते थे तो दिल खोल के करते थे, और उसको जब किसी को भाई बोल दिया तो भाई समझते थे। जितने लोगों की मदद जिंदगी में उन्होंने की है, बहुत कम

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतनी हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी 30 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। केरलम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन से अनुरोध किया।

है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई। ये बढ़ोतरी ईरान द्वारा पिछले 24 घंटों में संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिम एशिया के खाड़ी क्षेत्र में जहाजों पर हमले तेज करने के बाद हुई है। इसे अप्रैल की शुरुआत में अमरीका और ईरान के बीच लागू हुए युद्ध विराम के बाद सबसे गंभीर स्थिति माना जा रहा है। दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि कश्मीरी गेट, इंडिया गेट, अक्षरधाम, सफदरजंग, नेहरू स्टेडियम, डिफेंस कॉलोनी और लाजपत नगर सहित दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही बिजली गिरने के साथ तूफान आने की भी प्रबल संभावना है, जिसमें हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मैं दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त रात के हो रहे हैं 3:05 और अब वक्त है हमारे कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। जी हाँ, नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूज़िक हम आपको सुनवाएंगे हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की फिल्म हीरो नंबर 1 से।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी

आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। डीएमके ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। केरलम में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार को हराकर जीत हासिल की है। दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, और इस वक्त सुबह के 4:05 हुए हैं और अब वक्त है हमारे कार्यक्रम सारे कामों का। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम का, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप गीत।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समीप हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दलों को एक सीट मिली। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जाकुलबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम TVK सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। TVK ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। TVK के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में DMK ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। AIADMK 47 सीट जीत चुकी है और कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और DMK उम्मीदवार MK स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के VS बाबू ने हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उनकी निर्णायक वापसी का संकेत है, जबकि कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1 सीट मिली है, जबकि DMK ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और मैं दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी सुबह के 5:05 हुए हैं और आज दिन है मंगलवार। मंगलवार यानी हमारे पूजनीय देवता हनुमान जी का दिन, जिन्हें भगवान शिव के अवतार और भगवान राम के परम भक्त माना जाता है। तो आइए सुनते हैं इन चिरंजीवी कहे जाने वाले हमारे हनुमान जी के कुछ भजन और बनाते हैं आज का ये दिन शुभ।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।